ओ मन पवन सुख बनिया किस जोग प्राप्त गनिया रहाउ गुर दिखलाई मोरी जित मिर्ग पड़त है चोरी मूंदलिए दरवाजे बाजी अले अनहद बाजे कुंभ कमल जल भरिया जल मेत्या उभा करिया कहो कबीर जन जानिया जो जानिया तो मन मानिया।

हर जानिया राग सूरत बाणी भगत नाम दे ही की। कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जब देखा तब गावा तो जन तीर्थ पा।

मिल पारस कंचन होया, मुख मन सारतन परोया, निज पाओ पया ब्रह्म भागा, गुर पूछे मन पति आगा, जल पीतर

व्यास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अनल अगम जैसे लहर मैं उदद, जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा रहा। नरपत एक संघासन सोया, सुपने पया पेखारी। अच्छत राज बिसरत दुख पाया, सो गत पई हमारी। राज पोयंग प्रसंग जैसे है, अब कछ मर्म जनाया। अनक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहन ना आया। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब कट भोग वै सोई। कह रविदास हाथ पै नीरे, सहजे हुए सो होई। जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बाधे। अपने छूटन को जतन करो,

सब जगत व्यापियो भगत नहीं संतापा कह रविदास भगत एक बाडी अब एह का स्यो कही है जा कारण हम तुम आराधी सो दुख अजबू सही है दलभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब बिकै राजे इंद्र समसर ग्रह आसन बिन हर भगत कहो के लेख ना बिचारियो राजा राम को रस यह रस अनरस बीसर जाही रहाओ जान अजान पय हम बावर सोच असोच दिवस जाही इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं कहियत ज्ञान अचरियत अनकश समझना पर अपर माया कह रविदास उदास दास मत पर हर कोप करहु जी दया सुख सागर सुरतर चिंता मन काम तेन बस जाके चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नवनिध कर तल ताके हर हर हरना जपह रसना अवर सब त्याग वचन रचना रहाओ नाना ख्यान प्राण बेद बिद चौतीस अखर माही व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरनाही सहज समाद उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागी कह रविदास प्रगास हृदय धर जन्म मरण पै भागी जो तुम गिरवर तो हम मोरा जो तुम चंद तो हम पये है चकोरा माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरह तुम स्यो तोर कमन स्यो जो रह रहाओ जो तुम दीवरा तो हम बाती जो तुम तीरथ तो हम जाती साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी तुम स्यो जोर अवर संग तो।

वेदन उपज खरी पई वाकाय औखद नाही हर का नाम अमृत जल निर्मल एहो औखद जग सारा गुर प्रसाद कह।

किश पाई पुरब लिखे का लहना नाम खसम का चेतना किया कपटी कपट कमाना जम द्वार जा पकड़ चलाया।

नहीं कोई। तनासरी महला पहला नदर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रह लिवलाई, आत्मा प्रात्मा एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए, हर स्यो चित लागे फिर का न खाई रहाउ, सच सिमरिया हुए परगास, ताते बिख्या।

काती कूड़ बोल मल खाए ब्राह्मण नावे जिया काए जोगी जुगत ना जाने अंध तीने उजाड़े का बंद सो जोगी जो जुगत पछाने गुर प्रसादी एको जाने काजी सो जो उल्टी करे गुर प्रसादी जीवत मरे सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे आप तरे सगले कुल तारे दान संबंध सोई दिल तोवे मुसलमान सोई मल खोवे पढ़िया बूझे सो परवान जिस सिर दरगाह का निशान तनासरी महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद काल नाही जोग नाही नाही सत का टप था नष्ट जग प्रित होए डूबता इव जग कल मह राम नाम सार अखी ता मीट है नाक पकड़ है ठगण को संसार रहाओ आंट सेती नाक पकड़ है सूझते तिन लो मगर पाचे कछ ना सूझे एहो पदम अलो खतरिया ता धर्म छोड़िया मलेस भाख्या गही श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई धर्म की गत रही अष्ट साज साज प्राण सोदह करह वेद अभ्यास बिन नाम हर के मुक्त नाही कह नानक दास तनासरी महला पहला आरती एक ओंकार सतगुर प्रसाद गगन में थाल रवचंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आलो पवन चवरो करे सगल बनराए फूलंत ज्योति ऐसी आरती होए भाव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत।

गुरमति घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया। तनासरी महला तीजा, हर नाम तन निर्मल अत अपारा, गुर कै शब्द परे भंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोहे जले अभमान, गुरमुख हर रस चाखै कोई।

बिन सतगुर सब मुई बिल लाई, अन दिन दाजह शांत ना पाई। सतगुर मिले सब त्रिशन बुझाई, नानक नाम शांत सुख पाए। तनासरी महला तीजा, सदा धन अंतर नाम संभाले। जी जंत जिन्हें प्रतपाली,

कमल हुए, अंतर नाम बस पात उत्तम हुए। रहाओ गुरमुख उबरे हर सरनाई, राम नाम राते भगत दिरड़ाई। भगत करे जन वड्याई पाए, काच रखे सुख सहज समाए।

सत तृष्णा यज्ञ बुझाए अंतर शांत सहज सुख पाए गुर कै भाणे चले ता आप जाए साच महल पाए हर गुण गाए।

क्या पावा तनासरी महला तीजा। मन मरे तात मर जाए, बिन मन बुए कैसे हर पाए। यो मन मरे दारू जाने कोई, मन शब्द मरे।

समावे ताए इस मन की सोजी पावे। मन मैं मत मैं गिल मिकदारा गुरु अंकस मार जवानन हारा। मन असाध साध जन कोई अचार चरै ता निर्मल होई। गुरमुख एहो मन लया सुवा।

तन संचह मूर्ख गवार, मनमुख भूले अंध गवार। बिख्या कै तन सदा दुख होए, ना साथ जाए ना प्राप्त होए। साचा तन गुरमति पाए, काचा तन हुनिया वै जाए। रहाउ मनमुख भूले सब मरह गवार, भवजल डूबे ना उरवार ना पार। सतगुर भेटे पूरै भाग, साच रखे अहनस बैराग। चहो जुग मह अमृत।

क्या है सोई, उत्तम ब्रह्म पछाण है कोई, सच साचा सच आप दिरड़ाई, नानक आपे वेख आपे सच लाए। तनासरी महला तीजा, नावे की कीमत मित कही ना जाए, से जन तन जिन एक नाम लिवलाए, गुरमत साची साचा विचार, आपे बख्शे दे विचार, हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए, कली काल विच गुरमुख पाए, रहाओ हम मूरख मूरख मन माहे, हम मैं विच सबकार कमाहे, गुर प्रसादी हम मैं जाए, आपे बख्शे लहे मलाए, भिख्या का तन बहुत अभमान, अहंकार डूबे ना पावे मान, आप छोड़ सदा सुख होई, गुरमत सालाही सच सोई, आपे साजे करता सोए, तिस बिन दूजा अवर ना कोए, जिस सच लाए सोई लागे, नानक नाम सदा सुख आगे। राग तनासरी महला तीजा, कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हम भीखक पे खारी तेरे, तू निज पत है दाता, ओ दयाल नाम देहो मंगत जन को, सदा रहो रंग राता, हम बलिहार है।

ले गुर परसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुर सिंह मन मानिया तनासरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेव है संत भगत तिनके सब पाप निवारी।

हर उरतारी, हर हर हर औखद जग पूरा, जप हर हर हौ मैं मारी, हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरखे अपारी, जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पैज सुवारी, तनासरी महला चौथा, हर के संत जना हर जप्यो, तिनका दुख परम पौ भागी।

हम क्यों कर मिलह अभागी, हर प्रभु स्वामी कृपा धारु, हम हर हर सेवा लागी, नानक दासन दास करो प्रभु, हम हर कथा कथागी, तनासरी महला चौथा, हर का संत सतगुर सतपुरखा, जो बोले हर हर बानी, जो जो कह सुने सो मुक्ता, हम तिस कह सद कुर्बानी, हर के संत सुनो जस कानी, हर हर कथा सुनो एक निमख पल, सब के लिख पाप लह जानी रहाव, ऐसा संत साध जिन पाया, तेवड पुरख वडानी, तिनकी तूर मंगह प्रभ स्वामी, हम हर लोच लुचानी, हर हर सफले हो बिरख प्रभ स्वामी, जिन जपे हो से त्रिपतानी, हर हर अमृत पी त्रिपता से, सब लाथी भूख भुखानी, जिनके वड्डे भाग वाडी विचे, तिन हर जपे हो जपानी, तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी, जन नानक दास दसानी, तना श्री महला।

हर जपना, हर संत चले हर नाली, जिन हर जपया से हर हुए, हर मिलया केल के लाली, हर हर जपन जप लोच लुचानी, हर कृपा कर बनवाली, जन नानक संगत साध हर मेलो, हम साध जना पगराली, तनासरी महला चौथा, हर हर बूंद पए हर स्वामी, हम चात्रिक बिलल बिल लाती, हर हर कृपा करो प्रभ अपनी, मुख देव हो हर निमखाती, हर बिन रह ना सको एक राती, ज्यों बिन अमले अमली मर जाई है, त्यों हर बिन हम मर जाती रहा, तुम हर सरवर आते अगाह, हम लह ना सक है अंत माती, तू परे परे अपरंपर स्वामी, मित जानो आपन गाती, हर के संत जना हर जपेओ, गुर रंग चलो लहराती, हर हर भगत बनी अत सुबा, हर जपेओ उत्तम पाती, आपे ठाकुर आपे सेवक, आप बनावे पाती, नानक जन तुमरी सरनाई, हर राखो लाज पगाती, तनासरी महला चौथा, कर युग का धर्म कहो तुम पाई, के विशुट है हम छुटका की, हर हर जप बेड़ी हर तुलहा, हर जपे हो तरे तरा की, हर जी लाज रखो हर जन की, हर हर जपन जपावो हो अपना, हम मांगी भगत एकाकी रहाओ, हर के सेवक से हर प्यारे, जिन जपियो हर बचना की, लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया, सब छूटी जम की बाकी, हर के संत जपियो मन हर हर, लग संगत साध जना की, दिनियर सूर तृष्णा अग्न बुझानी, शिव चरयो चंद चंदा की, तुम वड पुरख वड अगम अगोचर, तुम आपे आप अपाकी, जन नानक कहो प्रभ कृपा की जय, कर दासन दास दसा की, तनासरी महला चौथा, कर पंजवा दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, उरतार बीचार मरार रमो रम, मन मोहन नाम जपीने, अदृष्ट

अगोचर अपरंपर स्वामी गुरपुरै प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम काष्ट लोस हर संग हरि सतसंग भये हर कंचन चंदन कीने रहाओ नव से खत बोल है मुख आगर मेरा हर प्रभ इव नाप कीने जन नानक हर हिरदय सद त्याव हो इउ हर प्रभ मेरा पीने तनासरी महला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम त्याई हर दरगह पावह फिर जन्म ना आवह हर हर हर ज्योत समाई जप मन नाम हरी हो हे सर्व सुखी।

गुर भगत हर दीनी तब हर स्यो प्रीत बन आई बहु चिंत वसारी हर नाम उर तारी नानक हर पये है सखाई तनासरी महला चौथा हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ हर भौजल पार उतारी मन बचन हृदय त्याए हर हुए संतुष्ट इव भण हर नाम मरारी मन जपिए हर जगदीश मिल संगत साधु मीत सदा आनंद होए दिन राती हर कीरत कर बनवारी रहाओ हर हर करी दृष्ट तब पयो मन उत्तम हर हर नाम जपियो गत पई हमारी जन नानक की पात राख मेरे स्वामी हर आए परयो है संत मारी तनासरी महला चौथा चौरासी सिद्ध बुद्ध तेतीस कोट मुन जन सब चाह हर जियो तेरो नाओ गुर प्रसाद को बिरला पावे जिनको ललाट लिखिया तुर पाओ जप मन रामे नाम हर जस उत्तम काम जो गावे सुने तेरा जस स्वामी।

कर तीजै नानक हर सिमरन का है चाव तना श्री महला चौथा सेवक सिख पूजन सब आवे है सब गावे है हर हर उत्तम बानी गावया सुनिया तिनका हर थाए पावे जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मान।

हर कथा जिन जनहु जानी रहाओ आपे गुर चेला है आपे आपे हर प्रभु चोज वडानी जन नानक आप मलाए सोई हर मिलसी अवर सब त्याग ओहा हर पानी तनासरी महला चौथा इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाके वास है काम तीना सो ऐसा हर त्याय मेरे जियड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उज्जल हुई है नित त्याय हर पुरख निरंजना रहाओ जह हर सिमरन पया तह अपाद गत कीनी वड भागी हर जपना जन नानक कहो गुर एह मत दीनी जप हर पवजल तरना।

या सच सब होए। झूठा किस को आखिया ऐसा, दूजा नाही कोय। सबना विच तू वरतदा सा, सब तुझे त्यावै।

प्यारी सब तुझ त्यावह मेरे साह ज्यों पावै त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह तनासरी महला पंजवा घर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद भव खंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचल निरंकारी कोट पराध मिटे खिन भीतर।

लखिया तेरी कुदरत कौन बिचारे जल थल महियल रविया सब ठाई अगम रूप गिरधारी कीर्त करह सगल जन तेरे तू अबनासी पुरख मरारे ज्यों पावे त्यों राख स्वामी जन नानक सरन द्वारी तनासरी मोहल्ला पंजवा दिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल स्यों हेत बढ़ायो

सहज सुख सूबा बाजे अनहत बानी कहो नानक निश्चल घर बांधियो गुर कियो बंधानी तनासरी महला पंजवा वड्डे वड्डे राजने अर भूमन ताकि त्रिशन ना बूजी लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी बिख्या मह किन्हीं त्रिपत ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै बिन हर कहां।

पाया, संत संग रहियो ओला, हर तन संचन हर नाम पूजन, इहो नानक कीनो चोला।

साकत की पूजा ऐसी दृढ़ी विपरीत माया मोह भूलो अवरहित हर चंदौरी बन हर पातरे यह तुहारु बीत रहाओ चंदन लेप होत देखो सुख गर्धव भस्म संगीत अमृत संग न

सदा सदा तुद त्याई रहाओ। तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे, बिन सजाए परमाई। अंद रूप रव्यो सब मदे, जत कत पेखों जाई। तुम दयाल कृपाल कृपा निध, पतत पावन गोसाई। कोट सुख आनंद राज पाई, मुक्ते निमुख बुलाई। जाप ताप भगत सा पूरी, जो प्रभ कै मन पाई। नाम जपत कृष्णा सब बुझी है, नानक तृपत अगाई। तनासरी महला पंजवा, जिन कीने वासे अपने त्रै गुण। भवन चतुर संसारा, जग इशनान ताप थान खंडे। क्या एहो जंत विचारा, प्रभ की ओट गही तो छूटो। साध प्रसाद हर हर हर गाय।

दीप थी, ऐसी ठगौरी पाए पुलावे, मन सब कह लागे मीठी। माए बाप पूत हित प्राता, उन घर घर मेले ओ दुआ, किस ही वाद घाट किस ही पह, सगले लर लर मुआ। हम बलिहारी सतगुर अपनी, जिन ओह चलत दिखाया, गुजी पाहे जले संसारा, भगत ना व्यापै माया। संत प्रसाद महा सुख पाया, सगले बंधन काटे, हर हर नाम नानक धन पाया, अपने घर ले आया खाटे। तनासरी महला पंजवां, तुम दाते ठाकुर प्रतपालक, नायक खसम हमारे, निमख निमख तुम ही प्रतपालो हो, हम बारक तुमरे तारे।

समझावहु हमें अज्ञान अल्प मत थोरी तुम्हें आपन बिरद रखावहु तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सोहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले।

कथै शास्त्र भगत करहे विचार मुक्त पाइए साध संगत दिन सजाए अंधार चरण कमल आधार।

पंजवा फिरत फिरत भेटे चल साधु पूरा गुर समझाया आन सगल बिद कामना आवे हर हर नाम ते आया।

जी उदारन सब कुल तारन हर हर नाम त्याय नानक नाम निरंजन गाइए पाइए सर्ब निधाना कर कृपा जिस दे स्वामी बिरले काहू जाना तनासरी महला पंजवा कर दूजा चौपदे

एकत्तर तह हर जस गावह नाद कवित साध सभा मह आनंद विश्राम हुन संग सो पाई जिस मस्तक कराम।

अंग जन को प्रभ अपने का तान जो तू करह करावह स्वामी सा मसलत प्रवान रहाव पत परमेश्वर गत नारायण धन गोपाल गुण साखी चरण सरन नानक दास हर हर संती ए बिद जाति तनासरी महला पंजवा सगल मनोरथ प्रभ ते पाए कंठ लाए गुर राखे संसार सागर मह जलन ना दीने किन्ह ना दुत्तर भाखे

अराध हर के प्रीतम साध जां कै संग तेरे बंधन छूटे गहो पार ब्रह्म सरन हृदय कमल चरण अवर आस कस पटल ना कीजे सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा सोई नानक जां को कृपा कीजे तनासरी महला।

साध जन तन धन आपन थापियो हर जापना निमुख जापियो अर्थ द्रव देख कस संग नाही चलना जा कोरे कर्म भला तिने ओट गही संत पल्ला तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना पायो रे परम निदान मिट्यो है अभमान एक निरंकार नानक मन लगना तनासरी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारी काल कलेश लोभ मोह महा भौजल तारी रहाओ सास सास निमुख निमुख जिनस रहन चितारी साध संग जपन संग मन निदान तारी चरण कमल नमस्कार गुण गोविंद बिचारी साध जना की रेन नानक मंगल सुख सधारे तनासरी महला पंजवा घर अठवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सास सास संभाले एह लोक परलोक संग सहाय जत कत मोहे रखवाले।

हाव निरतन कौ तन अंदले कौ टिक मात दूध जैसे बाले सागर मैं बोहित पायो हर नानक करी कृपा कृपाले। तनासरी महला पंजवा पये कृपाल दयाल गोबिंदा अमृत हृदय सिंचाई नव नित रिद सिद्ध हर लाग रही जन पाई संतन को अंध सगल ही जाई ग्रह बाहर ठाकुर भगतन का।

कर आई संत अनुग्रह पए मन निर्मल नानक हर गुण गाय तना श्री महला पंजवा जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा आत्म जिने सगल वस ताकै जाका सतगुर पूरा।

ही धनासरी महला पंजवा जतन करै मनुख डहकावै ओह अंतर जामी जानै पाप करे।

जिस जन कै पाले सोई पूरा साहा, नाम व्यवहारा नानक अधारा, नाम प्राप्त लाहा। तनासरी महला पंजवा, नेत्र पनीत पय दर्श पेखे, माता परों रवाल, रस रस गुण गाव।

रूप तुमरे वचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधियो पाल। नासरी महला पंजवां अपनी उकत खिलावै भोजन अपनी उकत खिलावै सर्व सुख भोग रस देवै।

सदा सलामत देवा। ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनासरी महला पंजवां संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारी राजमाल जोबन तन जियरा इन ऊपर लै बारी मन तन राम नाम हितकारी सुख सहज आनंद मंगल सहत भवनिद पार उतारी रहाओ। तन सो थान ताने ओए भवना

नानक आनंद पए दुख भागे सदा सदा हर जाप। धनासरी महला पंजवां चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो कृपा कटाक अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख।

काल सर्ब मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिस कै कर्म लिखिया तुर करतै नानक जन के पूर्ण काम। तनासरी महला पंजवां जन की कीनी पार ब्रह्म सार।

नानक उदरे प्रभ सरनाय तनासरी महला पंजवा त्रिपत भई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया जीवना जीवन हर जप साध संग रहाओ अनक प्रकारी बस्तर ओढ़ाय अन दिन कीर्तन हर गुण गाय हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी मन तन अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक दास पाया तनासरी महला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा समुंद सागर जिन खिन मह तारा रहाउ कोई हुआ क्रम रात कोई तीर्थ नाया दासी हर का नाम ते आया बंधन काटन हार स्वामी जन नानक सिमरै अंतर जामी।

हर देवन हारा, चरण कमल स्यों लागो नेहो, नानक की बेनंती ये है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नासरी महला नौवां, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई रहाओ। पोह पमद ज्यो बास बस्त है, मुकर माहे जैसे शाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतरे को जानो, एहो गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीनै, मिटै ना भ्रम की काई। तनासरी महला नौवां, साधो एहो जग भरम भलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना रहाओ। मात पिता भाई सुत बनता, तां कै रस लपटाना, जोगन धन प्रभता कै मद में, अहनस रह दीवाना। दीन दयाल सदा दुख भंजन, तां स्यो मन ना लगाना, जन नानक कोटन मैं किन्हू, गुरमुख होए पछाना। तनासरी महला नौवां, तेह जोगी को जुगत ना जानो, लोभ मोह माया ममता फुन, जेहे घट माहे पछानो रहाओ। पर निंदा उस्तत नह जाके, कंचन लोह समानो, हरख सोग ते रह अतीता, जोगी ताहे बखानो। चंचल मन दह दिस को तावत, अचल जाए ठहरानो, कहो नानक एह बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो। तनासरी महला नौवां, अब मैं कौन उपाउ करूं, जेह बिद मन को संसा चूकै, पहो निध पार परो रहाओ। जन्म पाए कछ पलो ना कीनो, ताते अधिक डरो, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच धरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो, पास ज्यो उदर भरो, कहो नानक प्रभ बिरत पछानो, तब हो पतत तरो। तनासरी महला पहला, घर दूजा, अष्टपदियां।

दास मह सोई जह देखा तह अवर ना कोई। गुरमुख भगत सहज घर पाई बिन गुर भेटे मर आईए जाइए रहाउ। सो गुर करो जे साच दरड़ावे कथ कथावे शब्द मलावे। हर के लोग अवर नहीं कारा साचो ठाकुर साच प्यारा। तन मह मनुआ।

बिन मलाई। आप दिखावे आपे देखे, हाथ ना पतीजे ना बहु भेखे। कड़ पांडे जिन अमृत पाया, प्रेम भगत प्रभ मन पति आया। पड़ पड़ भूलह चोटा खाहे, बहुत सियाणप आवह जाहे। नाम जपै पहु भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए। पूज सिला तीर्थ बन वासा, परमत डोलत भये उदास।

नानक सहज पाए गुण गाय। तलासरी महला पंजवां घर छेवां अष्टपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जो जो जूनी आयो तेहे तेहे उरजायो, मानस जन्म संयोग पाया ताकि है ओट साध। राखो दे कर हाथ कर कृपा मिलो हर राया, अनक जन्म ब्रह्म थित नहीं पाई। करो सेवा गुर लागो चरण, गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई। रहाओ अनक अपाव करो माया को बचित धरो, मेरी मेरी करत सद ही विहावै।

आवै पढ़े रे सगल भेद नह चूकै मन भेद एक खिन ना धीरह मेरे घर के पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा जे तेरे तीर्थ नाए हम बुद्ध मैल लाए घर को ठाकुर एक तिल ना माने कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन इशनाने सगल आश्रम कीने मनुआ नह पतीने विवेक।

धोए कोई पाई रे पुरख बधाता पार ब्रह्म कै रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म धर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पढ़े कहीं ना लेखै जिस भेटी है सफल मूरत करे सदा कीरत गुरु प्रसाद को नेत्रों पेखै मन हठ जो कमावै तिल ना लेखै पावै बगल ज्यो ध्यान लावै माया रे धारी कोई ऐसो रे सुखदाई प्रभु की कथा सुनाई जिस भेटे गत होए हमारी सो प्रसन्न गोपाल राय काटै रे बंधन माए गुर कै शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद भेट्यो निरपै गोविंद सुख नानक लादे हर चरण पराता सफल सफल भई सफल यात्रा आवण जान रहे मिले सादा रहाउ दूजा तलासरी महला पहला शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद तीर्थ नावण जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुरु ज्ञान साचा थान तीर्थ दस पुरब सदा दसाहरा हौ नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ तरनी तरा संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना गुरवाक निर्मल सदा चानन नित साच तीर्थ मजना साच ना लागे मैल क्या मल धोई है गुणहा हार परोए किस को रोई है विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवे आप पारस परम ध्यानी साच साचे पावे आनंद अनदिन हरक साचा दुख

गुर ते पाई तू मन अंत सखाई। नानक साहिब अवर ना दूजा नाम तेरे वडियाई। तू सच्चा सिरजनहार अलख सिरंदिया जियो। एक साहिब दोए राह बाद वजंदिया जियो। दोए राह चलाए हुक्म सबाए जन्म मुआ संसारा। नाम बिना नाही को बेली बेखलादी सिर पारा। हुक्मी आया हुक्म ना बूझे हुक्म सवारन हारा। नानक साहिब शब्द सियापे साचा सिर जनहारा। भगत सोह है दरबार शब्द सोहाया जियो। बोल है अमृत बाण रस।

ना वसारी अन दिन संहारी जा नाम लई ता जीवा श्रवणी सुनी ता यो मन तृपतै गुरमुख अमृत पीवा नदर करे ता सतगुर मेले अन दिन विवेक बुद्ध बिचरै अंदर साचा ने हो पूरे सतगुरै सत संगत मिले बडभाग ता हर रस आवे जियो अन दिन रह लिब लाए ता सहज समावे जियो सहज समावे ता हर मन भावे सदा अतीत बैरागी हलत पलत सोभा जागे अंतर राम नाम लिव लागी हरख सोग दुहां ते मुक्ता जो प्रभ करे सो भावे सत संगत मिले वडभाग ता हर रस आवे जियो दूजे पाए दुख होए मनमुख जम जोहिया जियो हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोहिया जियो माया दुख मोहिया हों मैं रोहिया मेरी मेरी करत विहावे जो प्रभ दे तिस चेतै नाही अंत गया पछतावे बिन नावे को साथ ना चाले पुत्र कलत्र माया धोहिया दूजे पाए दुख होए मनमुख जम जोहिया जियो कर किरपाले हो मलाए महल हर पाया जियो सदा रह कर जोड़ प्रभ मन पाया जियो प्रभ मन भावे ता हुक्म समावे हुक्म मन सुख पाया अन दिन जपत रह दिन राती सहजे नाम त्याया नामो नाम मिली वडियाई नानक नाम मन पावे कर किरपा लिहो मलाए महल हर पावे जियो नासरी महला पंजवा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर दीन दयाल जिस संग हर गावी है जियो अमृत हर का नाम साध संग रावी है जियो पाज संग साधु एक अरादु जन्म मरण दुख नासे तुर कर्म लिखिया साच सिखिया कट्टी जम की फासे पै परम नाठे छुट्टी गाठे जम पंथ मूल ना आवी है बिनवंत नानक।

गुण गाए। दस बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नाम। सत्तर दोए परे अमृत सार, बिख को मार कढावो। पाछे बहुर ना आवन पावो, अमृत बाणी घटते उचरो। आत्म को समझावो रहाओ, बजर कुठार मोहे है शीना। कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक। भगतन ते डर पावो, ए संसार ते तब ही छूटो। जो माया नह लपटावो, माया नाम गर्भ जोन का। तेहे तज दर्शन पावो, इत कर भगत करह जो जन। तिन भव सगल चुकाइए, कहत नाम देव बाहर क्या भरम हो। एह संजम हर पाइए, मारवाड़ जैसे नीर बालहा। बेल बालहा करहला, जो कंक निसनाद बा।

ज्यों धरनी को इंद्र बालहा कुसम बास जैसे भवरला ज्यों कोकिल को अंब बालहा त्यों मेरा मन रामैया चकवी को जैसे सूर बालहा मान सरोवर हंसुला ज्यों तरनी को कंत बालहा त्यों मेरा मन रामैया पार्क को जैसे खीर बालहा चात्रक मुख जैसे जल तरा मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरा मन रामैया साधक सिद्ध सगल मुन चाहे बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला पहल पुरिये पुंडरक वना तांचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानू हर हर नचंती नाचना पहल पुरसाबरा अथोन पुरसा दमरा असगा अस उसगा हर का बागरा नाचे पिंडी महसागरा रहाऊ।

तयो उजियारो पवन सगलारी नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार अठारह सगल जूठारे तेरो किया तुझह क्या अर्पो नाम तेरा तुही चवर टोलहारे दस अठा अठ सठे चारे खानी यह बर्तन है सगल संस्।

कर्मरि रहाव शंकर मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन मदे मिलियो सार्ग पान रे कर्म कर कलंक मफीत सरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बांधवा कर्म कार अरण पिंगलारी अनक पात कहरता त्रे पवन नाथ री तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पार री कर्म कर कपाल मफीत सरी अमृत ससी तेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर सनागर नदी के नाथं कर्म कार खार मफीत सरी दादी ले लंका गाड़ उपाड़ी ले रावण बाण साल बिसाल आण तो खीले हरी कर्म कर कछोटी मफीत सरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी कर गेहन ताचे मोहे जापी अले राम चे नाम बदत त्रलोचन राम जी श्री सैन धूप दीप कृत साजे।

खंड खोजते नव निध पाई ना कछ आइबो ना कछ जाइबो राम की दोहाई रहाउ जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे पीपा प्रणव परम तत् है सतगुरु हुए लखावे तन्ना गोपाल तेरा यारता जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज स्वारता रहाउ दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया साधन नीका अनाज मंगो सत सीका।

जैत श्री महला चौथा कर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे ही रह रतन नाम हर बसिया।

जैत श्री मोहल्ला चौथा हीरा लाल अमोलक है पारी बिन गाहक मीका काखा रतन गाहक गुर साधु देखियो तब रतन बकानो लाखा मेरा मन गुप्त हीर हर राखा दीन दयाल मलायो गुर साधु गुर मिले हीर पराखा रहाओ मन मुख कोठी अज्ञान अंधेरा तिन घर रतन ना लाखा ते उजड़ भरम मोए गावारी माया पुआंग बिख चाखा हर हर साध मेलो जन नीके।

जिहवा क्या गुण आख बखान है। तुम वाडे अगम वड पुरखा, जन नानक हर कृपा धारी, पाखान डुपत हर राखा। जैत श्री महला चौथा, हम बारिक कछु न जान है गत मेत, तेरे मूर्ख मुग्ध एना हर कृपा धार।

गुर साधु मिल साधु कपट खला ना रहाउ गुर खिन खिन प्रीत लगाव हो मेरा ही अरे मेरे प्रीतम नाम पराना बिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर जो अमली अमल लुभाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर भाग पुराना तिन हम चरण सरे वह खिन खिन जिन हर मीठ लगाना हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर जन बिछरिया चिरी मलाना तन तन सतगुर जिन नाम दिरडाया जन नानक तिस कुरबाना जैत श्री महला चौथा सतगुर साजन पुरख वड पाया हर रसक रसक फल लागबा माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी गुरबचनी बिसहर काढ़वा मेरा मन राम नाम रस लागबा हर किए पतर पवित्र मिल साध गुर हर नाम हर रस चाखबा रहाउ धन तन वड भाग मिलो गुर साधु मिल साधु लिव उन्मन लागबा तृष्णा अगन बुझी शांत पाई हर निर्मल निर्मल गुण गायबा तिनके भाग खीन तुर पाई जिन सतगुर दर्शना पाएबा ते दूजे पाए पवह गर्भ जोनी सब बिरथा जन्म तिन जाएबा हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेवह हम हर मीठ लगाएबा जन नानक रेण साध पग मांगे हर हुए दयाल दुआएबा जैत श्री महला चौथा जिन हर हृदय नाम ना बसेऊ तिन मात की जय हर

कृपाल कृपा प्रभ धारी गुरु ज्ञान दियो मन समझा रहाउ हर कीरत कल युग पादे उत्तम हर पाइय सतगुर महजा हम बलिहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम पर गाजा दर्शन साध मिलियो वड भागी सब किल विख गए गवाजा सतगुर साह पाया वड दाना हर किए बहु गुण सांझा जिनको कृपा करी जग जीवन हर उरतार्यो मन महजा धर्म राय दर कागद फारी जन नानक लेखा समझा जैत्री महला चौथा सत संगत साध पाई वड भागी मन चल तो भयो अरूड़ा अनहत धुन वाजह नित वाजे हर अमृत धार।

साकत बंद भय है माया, बिख संचह लाए ज कीड़ा, हर कै अर्थ खर्च नह साक है, जमकाल सह सिर पीड़ा, जिन हर अर्थ शरीर लगाया गुर साधु, बहु श्रद्धा लाए मुख धूड़ा, हलत पलत हर सोभा पाव है, हर रंग लगा मन गूड़ा, हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा, जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुर मिल साधु पाखान हरिउ मन मूड़ा। जैत श्री महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर सिमरोह अगम अपारा, जिस सिमरत दुख मिटे हमारा, हर हर सतगुर पुरख मलाव हो, गुर मिले ऐ सुख हो ई राम, हर गुण गावो मीत हमारे, हर हर नाम रखो उर तारे, हर हर अमृत बचन सुनावो, गुर मिले ऐ प्रगट हो ई राम, मधुसूदन हर माधु प्राणा, मेरा मन तन अमृत मीठ लगाना, हर हर दया करो गुर मेलो हो, गुर मिलो हो।

हर हर हर हर भगत दृढ़ावहु, हर हर नाम उमा हाराम, हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कह रंग सदा गुण गाहा, हर हर हर जस घूमर पावहु, मिल सत

मिल सत संगत संग गुराहा, पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा, हर हर कृपा धार मद सूदन।

तोल अत पहारी गुरमत जप उमाहा राम सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा किल विख मैल पाप तुवाहा दीन दयाल हो जन ऊपर देहो नानक नाम उमाहा राम जय श्री महला पंजवां घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई जाने कमन इहा जग मीत जिस होए कृपाल सोई बिद बूजै ताकी निर्मल रीत रहाउ मात पिता बनता सुत बंदप इष्ट मीत अर भाई

0: करत बेहानी अवडह तामह संतोख ना पाया।
1: हसत रथ अश्व पवन तेज
0: तनी भूमन चतुरांगा संग न चाल्यो इन मह कछुऐ ऊठ सदायो नांगा। हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के ताके हर हर गाइय नानक इहां सुख आगे मुख उजल संग संतन कह पाइय। जैत श्री महला पंजवां कर तीजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

हाँ, को कह तो सब बाहर बाहर, को कह तो सब महियो, वर्ण ना दिसे चिन्ह ना लखिए, सुहागन सांत बुझहियो, सर्ब निवासी घट घट वासी, लेप नहीं अल्पहियो, नानक कहत सुनो रे लोगा, संत रसन को बसहियो, जय श्री महला पंजवां, तीरों सुन तीरों प्रभ को रहाव, जी प्राण मन तन सब अर्पो, नीरो पेख प्रभ को नीरो, बेशमार बेअंत बड दाता, मने गिहीरो पेख प्रभ को, जो चाहो सोई सोई पावो, आसा मनसा पूरो जप प्रभ को, गुरु प्रसाद नानक मन वसिया, दुख न कबहू चूरों बुझ प्रभ को, जय श्री महला पंजवां, लड़िंगड़ा साजन मेरा, कर कर मंगल गावो नीके, काट काट

तो सगल मोहे मोहियो तो शरण परयो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जो संत भेटे वड भाग जन नानक सर्व सुख पाई मोरो हर चरणी चित लाग जय श्री महला पंजवां मन मह सतगुर ध्यान धरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाऊ काल जाल अर महाजंजाला छुटके जमह डरा आयो दुख हरन शरण करुणा पत गहयो चरण आसरा नाव रूप भयो साध संग भवनिध पार परा अपयो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा जय श्री महला पंजवां जाको पय गोविंद सहाई सूख सहज अना

मया कृपा ठाकुर की से ही संत सुभाई तिनकै संग नानक निस्तरियै जिन रस रस हर गुण गाई जय श्री महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण धन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे मह दीप रहाउ सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम चरण कमल अनूप अनक बार करो ते बंदन।

नानक अपने को संसार पावक के कूप जय श्री महला पंजवा। कोई जन हर सिउ देवै जोर चरण गहो बको शुभ रसना।

या रस में है मग्न होत कृपाती महाविख्याति तूर आयु शरण दीन दुख भंजन चितवा कुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को रब नानक बंधन शोर जय श्री महला पंजवा चातरक चितवत बरसत में कृपा सिंध करुणा प्रभ तारु हर प्रिय।

लाड़दास जाने अपने कुदरे उदर नहारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जय श्री महला पंजवां आए अनक जन्म भ्रम सरणी उधर दे अंध कूप ते लाभ हो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लाभ हो बिखम नदी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मह तरनी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग आभरनी जय श्री महला पंजवां हर जन सिमरो हिरदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवे पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिगन बिन सह हर सेवा निश्चल गोविंद धाम भगवंत भगत को पौ किश नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गहु नानक सुख समूह विश्राम जय श्री महला नौवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद भूलियो मन माया उरझायो जो जो कर्म कियो लालच लग तेह तेह आप बंधायो रहाओ समझ ना परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जानियो नाहिन बन खोजन को तायो रतन राम घट ही के पीतर ताको ज्ञान ना पायो जन नानक भगवंत भजन।

को जोगी खोज तहारे पायो नाहे तेह पारा। सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा। पावन नाम जगत में हर को कबहू नाहे संभारा। नानक शरण परयो जग बंदन राखो हो बिरद तुहारा। जैत श्री महला पंजवा संत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवन दिन नीत। खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत। संत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया। किस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खोजंतिया। किस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजे। नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे।

पूरा पाया सगली तिखा बुजंतिया यार वे प्रयह बे सखिया मुंह कही ना जेहिया यार वे हिक डू हिक चाड़े हौ किस चिते हिया हिक डू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बलासा तिना देख मन चाओ उठंदा हौ कद पाई गुण तासा जिन्नी मैंदा लाल रजाया हौ तिस आग्या मन डेहिया नानक कह सुन बिनो सुहागण मूं दस दिखा पेर के हिया यार वे पेरे आपन पाना किसनीशी छंदा यार वे तैरावया।

ठाकुर हों किद्दी गुण अवगुण ना पछाणी गुण हार तह पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बो किस सुहंदा जन नानक धन सुहागण साई जिस संग पता।

महामंगल रहसिया फिर दयाल साधना वरंगिया वड भाग पाया गुर मिलाया साध कै सत संगिया आसा मनसा सगल पूरी त्रय अंक अंक मलाई बिनवंत नानक सुख सखेंदी सा मैं गुर मिल पाई जय श्री।

आच नाम समाईय सलोक रे मन ता कौ त्याईय सब बिद जा कह हाथ राम नाम तन संचीय नानक निब है साथ संत साथी अड़ा प्रभ एक दूसर नाहे कोय थान थरंतर आप जल थल पूर सोए जल थल मैयल पूर रहया सर्वदाता प्रभ धनी गोपाल गोविंद अंत नाही बे अंत गुणता के क्या गनी पाज सरन स्वा

दे मरण चीत ना आवे पुत्र मित्र व्यवहार बनता एह करत बिहावे उज दिवस आए लिखे माए दुख धर्म दूत है जिथेया किरत कर्म ना मिटै नानक हर नाम धन नहीं खटिया उदम कर है अनेक हर नाम ना गावही भरम है जोन असंख मर जन्म है आवही पशु पंखी सैल तरवर गणक कशु ना आवे बीज बोवस भोग भोग है किया अपना पावे रतन जन्म हर अंत जुए प्रभु आप ना पावही बिनवंत नानक परम है परमाए खिन एक टिकन ना पावही जोबन गया बेतीत जर मल बैठिया कर कंप है सिर डोल नैन ना डीठिया नह नैन दीसै बिन भजन ईसै छोड़ माया चालिया कहया ना मन है सिर खाक छन है जिन संग मन तन जालिया श्री राम रंग अपार पूर्ण नह निमख मन मह वूठिया बिनवंत नानक कोट कागर बिन सबार ना झूठिया चरण कमल सरण आए नानक आया दुत्तर भै संसार प्रभ आप तराया मिल साध संगे भजे श्री तर कर अंग प्रभ जी तारिया हर मान लिए नाम दिए अवर कछ ना बिचारिया गुण निधान अपार ठाकुर मन लोड़ींदा पाया बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया गुण निधान अपार ठाकुर मन लोड़ींदा पाया बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया।

अथ आपदा तिस बिन नहीं कोई। खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। सलोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं सास सास सिमरंत नानक महा अगन ना बनासनं। मुख तले पैरे उपरे बसंदो को हथड़े थाए। नानक सो तनी क्यों वसारे हो उदर है जिस दै नाए। पौड़ी रक्त बिंद कर निम्या अगन उदर मझार। उर्द मुख कुचील बिकल नरक घोर गुबार। हर सिमरत तू ना जल है मन तन उरतार। बिकम थानो जिन रखिया इस तिल ना विसार। प्रभ बिसरत सुख कदे नाही जासह जन्म हार। सलोक मन इच्छा दान करन सर्वत्र आसा पूर्ण है। खंडन कल कलेश प्रभ सिमर नानक नह दूर नह। हब रंग मान है जिस संग तैस्यो लाइय नेहो। सो सहो बिंद ना विसरो नानक जिन सुंदर।

साध संग हर गुण रमोह बिनसे सब रोग सलोक कुटुंब जतन करनं माया अनेक उदम है हर

साक्षात हुए केत बिद मन तीरे सलोक चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी दह दिसह त्यागंत कपट रूप माया नानक आनंद रूप साध संग मह मन साई मुख उच्चरा वत्ता हबे लो नानक हब अडंबर कूड़िया सुन जीवा सच्ची सोए पौड़ी बस्ता टूटी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना जात ना पात ना आदरू उद्यान पर मिन्ना मित्र ना एठ धन रूपहीन किस साक ना सिन्ना राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिन्ना जिसकी धूड़ मन उदरै प्रभ होए सो प्रसन्ना सलोक अनक लीला राज रस रूपं शतर चमर तख्त आसनं रचंत मूड अज्ञान अंध है नानक सुपन मनोरथ माया।

का बसंत स्वर्ग लोक कह जित ते पृथ्वी नव खंडन है बिसरंत हर गोपाल है नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है कौतिक कोड तमाशिया चेतना आवस नाउ नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थाउ पौड़ी महापयान उद्यान नगर कर मानिया।

क्या त्रिको क्यों कर त्रिपता वह नाद करंग कह बेदया सनमुख उठता वह पवर लोभी कुसुम बास का मिले आप बंदा वह त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावे सलोक चितवंत चरण कमलंग सास सास आराधन है नह बिसरंत नाम अच्युत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है सीतड़ा मन मजाहि पलक ना थीवे बाहरा नानक आसड़ी निवाहि सदा पे खंदो सच धनी पौड़ी आसावंती आस गुसाई पूरी है मिल गोपाल गोविंद ना कबहू चूरी है देहो दर्श मन चाहो लह जाहे वसूरी है होए पवित्र शरीर चरना धूरी है पार ब्रह्म गुरदेव सदा हजूरी है सलोक रसना उचरंत नाम सर्वनंग सुनंत शब्द अमृत है नानक तिन सद बलिहारं जिन्ना ध्यान पार ब्राह्मण है हब कूड़ा वे कम इकस साई बाहरी नानक से धन जिन्ना पिरहड़ी सच सिंह पौड़ी सद बलिहारी तिना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवाव है प्रभ मथा हर जस लिख है बेअंत सोह है से हथा चरण पनीत पवित्र चल है प्रभ पथा संतां संग उदार सगला दुख लथा सलोक भावी अदोत करन हर रमणं संजोग पूर्ण है गोपाल दर्श भेटं।

लंदड़ी परवान जित मलंदड़ो मापिरी पौड़ी सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूर्त भला संजोग है जित मिले गुसाई आठ पहर हर त्याई कै मन इच्छ पुजाई बड़े भाग सतसंग होए निव लागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई सलोक पतत पनीत गोबिंद है सर्व दुख निवारण है सरन सूर भगवान है जपंत नानक हर हर हरे छड्यो हबे आप लगड़ो चरना पास नठड़ो दुख ताप।

ओट नानक परमेश्वर है, चंदन चांदना सरद रुत, मूल न मिटे काम, शीतल थीवै नानका, जपंदड़ो हर नाम पौड़ी, चरण कमल की ओट उदरे सगल जन।

प्रसाद। राग टोडी महला चौथा घर पहला, हर बिन रह ना सकै मन मेरा। मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभ गुर मेले, बहुर न भवजन फेरा रहाउ। मेरे हियर लोच लगी प्रभ केरी, हर नैन हो हर प्रभ हेरा। सतगुर दयाल हर नाम दिरडाया,

तिन मस्तक भाग मंजेरा विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा जन नानक नाम गुरु ते पाया।

आदि संतन अवर न काहू जानी बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाख स्वामी रहाउ ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर न काहू तानी ऐसो अमर मिलियो भगतन को राच रहे रंग ज्ञानी रोग सोग दुख जरा मरा हर जन है नहीं निकटानी निरपो हुए रहे लिव एक नानक हर मन मानी टोडी महला पंजवां हर बिसरत सदा खुआरी ताको धोखा कहां ब्यापै जाको ओट तोहारी रहाउ बिन सिमरन जो जीवन बलना

प्रभु को तिस हृदय नाम वसाया, साध संगत कै पाछै परयो, जन नानक हर रस पाया। टोडी महला पंजवा, कृपा निद बसो हृदय हर नीत, तैसी बुद्ध करहो परगासा, लागे प्रभु संग प्रीत रहाउ। दास तुम्हारे की पावो धूरा, मस्तक ले ले लावो, महापतत ते होत पनीता, हर कीर्तन गुण गावो। आज्ञा तुमरी मीठी लागो, कियो तुहारो पावो, जो तू देहे तही एहो तृप्तै, आन न कतहु तावो, सद ही निकट जानो प्रभु स्वामी।

पंजवां सतगुर आयो सरन तुहारी मिले सूख नाम हर सोबा चिंता लाहे हमारी रहाओ अवर न

सेव हर के चरण रसायन जन्म मरण दोहू ते छूट है पवजल जगत तरायण खोजत खोजत

थाट्यो खात खर्चत किसन खुटत नाही, राम रतन धन खाट्यो पसमा भूत हुआ खिन भीतर।

सबाया टोडी महला पंजवा किरपन तन मन तिल वेख भरे साध संग भजन कर स्वामी ताकन को एक हरे रहाओ अनक शिदर बोहित के छुटकत थाम ना जाही करे जिसका बोहित तिस अरादे खोटे संग खरे गन्नी सहल उठावत चाहे वे ऊहा ही है तरे जोर सकत नानक किश नाही प्रब राखो सरन परे टोडी महला पंजवा हर के चरण कमल मन त्याओ काड कुठार पित बात हंता औखद हर को नाओ रहाओ तीने ताप निवारण हारा।

सरन परे दुख पंजन जाका बड़ परताप टूडी महला पंजवा स्वामी सरन परयो दरबारी कोट अपराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन उधारी रहाउ खोजत खोजत बहु परकारी सर्व अर्थ बिचारे साध संग परमगत पाइए माया रच बंद हारी चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे नानक अंध करे हर जप जप सगले रोग निवारे टोडी महला पंजवा घर तीजा चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद हां हां लपटे ओरे मूड़े कशु ना थोरी तेरो नहीं सो जानी मोरी रहाओ आपन राम ना चीनो खिनुआ जो पराई सो अपनी मनुआ नाम संगी सो मन ना बसायो छोड़ जाहे वाहु चित लायो सो संचयो जित भूख

आनंद कीर्तन हर सुनिया। कहो नानक जिन ठाकुर पाया, सब किस तिस के ग्रह में आया। टोडी महला पंजवा घर चौथा दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रूढ़ो मन हर रंगो।

आयोरे महाराज रो गाथ बाहू स्यो लुबड़ियो ने भागड़ो पाहे संजोयो रे सुन मन सीख साधु जन सगलो थारे सगले परास्त मिट्यो रे जाको लहणो महाराज री गाठड़ियो जन नानक गर्भास ना पौड़ियो रे टोडी महला पंजवा कर पंजवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन पंच दुख अर अंग रोग एह तन ते सगल दूर कीन रहाउ बंधन तोर छोर बिखियाते गुर को शब्द मेरे ही अरै दीन रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचारियो प्रेम गहियो मोहे हर रंग पीन पेखियो लालन पाठ बीच खोए अनद चिता हरखे पतीन तिस ही को ग्रहो सोई प्रभ नानक

राम नाम निर्मल है रीत रहाउ, प्राण आधार जीवन धन मोरे, देखन को दर्शन प्रभ नीत, बाट घाट तुसा संग मोरे, मन अपने को मैं हर सखा कीत, संत प्रसाद भये मन निर्मल, कर कृपा अपने कर लीत, सिमर सिमर नानक सुख पाया, आद जुगाद भगतन के मीत, टोडी महला पंजवा, प्रभ जी मिल मेरे प्राण, बिसर नहीं निमख ही रेते, अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ, खोबो परम राख मेरे प्रीतम, अंतर जामी सुगड़ सुजान, कोट राज नाम धन मेरे, अमृत दृष्ट तारु प्रभ मान, आठ पहर रसना गुण गावे, जस पूर अगावे समरथ कान, तेरी शरण जीयन के दाते, सदा सदा

निरंजन करते मनपनते सब किन विखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुख दाते अबनासी बिमल जा को जास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुण तास शांत सहज सुख माने उपजेव कोट सूर नानक प्रगास टोडी महला पंजवा हर हर पतत पावन जी प्राण मान सुख दाता अंतर जामी मन को पावन रहाओ सुंदर सुगड़ चतुर सब बेता रिद दास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म भूम बीजन सो खावन विस्मन विस्म पय।

जावन टोडी महला पंजवा माई माया छल त्रिण की अगन मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हर का जल रहाओ छोड़ सियानप बहु चतुराई दोए कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मनुख दे का एहो उत्तम फल वेद बखियान करत साधु जन भागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन भय मल।

कोट फला दर्शन गुर दीथे रहाओ, गुण गावत अच्युत अवनासी, काम क्रोध बिनसे मद टीठे, अस्थिर भये साच रंग राते, जन्म मरण बहुर नहीं पीठे, बिन हर भजन रंग रस जेते, संत दयाल जाने सब झूठे, नाम रतन पायो जन नानक, नाम बिहून चले सब मूठे, टोडी महला पंजवा, साध संग हर हर नाम चितारा, सहज आनंद हुए दिन राती, अंकुर भलो हमारा रहाओ, गुरपूरा भेटियो वड भागी, जाको अंत न पारा वारा, कर गह काड लियो जाने अपना, भिख सागर संसारा, जन्म मरण काटे गुर बचनी, बहुड़ना संकट द्वारा, नानक शरण गही।

कोट आनंद राज सुख भुगवे हर सिमरत बिनसै सब दुख रहाउ। कोट जन्म के किल विख नास है सिमरत पावन तन मन सुख। देख स्वरूप पूर्ण पई आसा दर्शन भेटत।

सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उरतारी सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे रहाओ पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीरत तत बिचारी गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारी जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहुर कछ ना बिचारी नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारी टोडी महला नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहो कहां अपनी अदम्भाई।

भूत जो संग सहाई मगन रहे हो माया मैं निस दिन छुट्टी ना मन की काई। कह नानक अब नाही अंत गत बिन हर की सरनाई। टोडी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर जल की माछली चरे खजूर। काए रे बकवाद लायो जिन हर पायो तिन्ह छपायो रहाओ। पंडित हुए कै बेद बखाने मूर्ख नाम देव रामह जान। कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही पतत पवित भय राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन को प्रतज्ञा आई। एकादशी बरत रह काहे को तीर्थ जाई। भणत नाम देव सो कृत समत भय गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए। तीन संदे खेल आछे रहाओ कुंभार के घर हांडी आछे। राजा के कर सांडी गो बामन के कर रांडी आछे। रांडी सांडी हांडी गो बाणिये के कर हींग आछे। पैसर माते सींग गो देवल मदे लीग आसे। लीग सीग हीग गो तेली कै कर तेल आछे।

राग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दुपदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद बुद्ध सिद्ध सुख पावह भज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान प्राण जासे उत्तम खट दर्शन गावह राम शंकर करोड़ ते तीस त्यायो नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नार गण गंधर्व जस गावह सब गावत जेत उपाम नानक कृपा करी हर जिनको ते संत भले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मेल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सत गुर दान दिवायो रहाओ तिस जन को मन तन सब देवो जिन हर हर नाम सुनायो तन माया संपै तिस देवो जिन हर मीत मलायो खिन किंचित कृपा करी जगदीशर तब हर हर हर जस त्यायो जन नानक को हर भेटे स्वामी दुख होमै रोग गुआयो बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहाओ जो किसी

निस्तारा। कोटक तंत्र के पाप सब खोवे, हर पवजल पार उतारा रहाउ। काया नगर बस्त हर स्वामी, हर निर्भव निर्वैर निरंकारा। हर निकट बसत

सो हर नाम विहाजी, सो साहु सच्चा बणजारा, बैराड़ी महला चौथा, जप मन हर निरंजन निरंकारा, सदा सदा हर त्याय सुखदाता, जाका अंत न पारा वारा रहाउ, अगन कुंट मह उर्द लिव लागा, हर राख उदर मंजारा, सो ऐसा हर सेव हो मेरे मन, हर अंत शगावन हारा, जा कै हृदय बसिया मेरा हर हर, तिस जन को करहु नमस्कारा।

हर नाम नित त्याई, जो इच्छे सोई फल पावे, फिर दुख ना लागे आई रहाउ। सो जप सो तप सा व्रत पूजा, जित हर स्यो प्रीत लगाई। बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी, एक खिन मैं बिसर सब जाई। तू बेअंत सर्व कल पूरा, किसकी

प्रसाद यक अर्ज गुप्तम पेश तो दरगोस पुन करतार हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिल दानी मम सर मुए अजराइल ग्रिफ तह दिल हेच ना दानी रहाओ जन पिसर पदर बिरादरा कसनेस दस्तंगीर आखर बेअप्तम कस ना दारद चू स्वद तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी खयाल गाहे ना नेकी कार करदम मम ईचनी अहवाल बद बखत हम चोब खील गाफिल बे नजर बेबाक नानक बुगो

दर्शन की भूख मैं दर मांगो नीता नीत तौ दर्शन की करो समाए मैं दर मांगत भीख्या पाए रहाऊ केसर कुसुम मिर्ग मैं हरना सर्ब शरीरी चढ़ना चंदन भगता ज्योत अनेही सर्वे परमल करना के पट भांडा कह ना कोई ऐसा भगत वर्ण मह होए तेरे नाम निवे रहे लिवलाए नानक तिन दर पीछिया पाए तलंग महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद एह तन माया पाया प्यारी लीतड़ा लभ रंगाई मेरे कंपना पावे चोलड़ा प्यारी क्यों धन सीजै।

कामन नौ निज पाई अपने कंत प्यारी सा सुहागन नानक सा सबराई ऐसे रंग राती सहज की माती एहन सपाए समाणी सुंदर साए स्वरूप विचक्षण।

पाप की जंज लह काबल हो ताया, जोरी मंगह दान वे लालो, शर्म धर्म दोहे शप खलोए, कूड़ फिरे प्रधान वे लालो, काजियां बामणा की गल थकी।

गैबान हैवान हराम कुस्तनी मुर्दार बखोराए दिल कब्ज कब्जा कादरू दूजक सजाए वली नियामत बिरादरा दरबार मिलक खानाए जब अजराइल बस्तनी तब चेकारे बिदाए हो आलमलूम कर दू पाक अल्लाह बुगो नानक अरदास पेश दरवेश बंदा पलंग घर दूजा।

कट कट मालिक दिलां का सच्चा परवदगार कुदरत कीम ना जानिए वड्डा वी परवाह कर बंदे तू बंदगी जिचर घट महसाह तू समरथ।

यार बंदे जिस तेरा आधार, गुनाह उसके सगले आपू, तेरे जन देख है दीदार। दुनिया चीज फिलहाल सगले, सच सुख तेरा नाम, गुर मिल नानक बूझिया।

मन तन बसै सच साहा बंदी मोच रहाउ। दीद ने दीदार साहिब कछ नहीं इसका मोल, पाक परवदगार तू खुद खसम वड्डा।

करी तिन सद बलिहारी हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा गुर सेवा ते पाई है।

उस्तत है। जो हर प्रभ भावै जो गुरमुख प्यारा सेम दे, तिन हर फल पावै जिन्ना हर सेती पिरहड़ी, तिना जी प्रभ नाले ओए जप जप प्यारा जीव दे, हर नाम संभाले जिन गुरमुख प्यारा सेविया, तिन को घुम जाया वे आप छुटे परवार सिउ, सब जगत छडाया गुर प्यारे हर सेविया, गुर धन गुर तनो गुर हर मार्ग दसिया, गुर पुन वड पुनो।

आपे हार एक रंग है आपे बहु रंगी जो तिस पावे नानका साई गल चंगी तलंग महला नौवा काफी एक ओंकार सतगुर प्रसाद चेतना है तू चेत लै निस दिन मैं प्राणी छिन छिन औध बेहात है फूटे घट ज्यो पानी रहाओ हर गुण काहे ना गावहि मूर्ख अज्ञाना झूठे लालच लाग कै नह मरन पछाना अजहू कछ बिगरियो नहीं जो प्रभ गुण गावै कहो नानक ते भजन ते निर्भय पद पावै तलंग महला नौवा जाग ले हो रे मना जाग ले कहां गाफल सोया जो तन उपजिया संग ही सो पी संग ना होया रहाउ मात पिता सुत बंद जन हित जा स्यो कीना जियो छूट्यो जब देते डार अगन मैं दीना जीवत लो व्यवहार है जग कौतुम जानो नानक हर

संपत रथ धन राज सिउ अतनेहो लगायो काल पास जब गल परी सब भयो परायो जान बूझ कै बावरे तैं काज बिगारियो।

नाम जपहु तब मथिय इन बिद अमृत पावहु। मन संपट जित सत सर नावन पावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहिब।

साचा खसम हमारा सूही महला पहला जिनको भांडै भाऊ तिना सवार सी सूखी करे पसाऊ दुख वसार सी सहसा मूले नाही सर पर तार सी तिना मिलिया गुरे आए जिनको लिखिया अमृत हर का नाऊ देवै दिखिया चल है सतगुर भाई पवह ना भीखिया जां को महल हजूर दूजे निवै किस दर दर वाणी नाही मूले पुछ तिस छुट्टै तां कै बोल साहिब नदर जिस कले आने आप जिस नाही दूजा मतै कोई ताई उसारे साज जाने सब सोए नाओ नानक बख्शीस नदी कर्म होए सूही महला पहला पांडा हच्छा सोए जो तिस भावसी पांडा आत्मलीन तोता हच्छा ना होए सी गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी एत द्वारे तोए हच्छा होए सी मैले हचे का विचार आप वरताए सी मत को जाने जाए अग्गे पाए सी जे कर्म कमाए तेहा हुए सी अमृत हर का नाऊ आप वरताए सी चलिया पत स्यों जन्म सवार वाजा वाए सी मानस क्या विचारा तेहो लोक सुना।

जोगना देश जसंतर भवे जोगना तीर्थ नाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है सतगुर भेटै ता

पाइय अंजन माहे निरंजन रहिय जोग जुगत इव पाइय नानक जीवत आमर रही है ऐसा जोग कमाई है वाजे बाज हो सिंगी वाजे तो निरपो पद पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत तो पाई है सूही महला पहला कौन तराजी कवन तुला तेरा कवन सराप भला।

मैल भरे दुहचारिया हर राखो अंगी अंग गुर अमृत सर नवला आया सब लाथे किल विक पंग हर दीना दीन दयाल प्रभु

हर हर करह नित कपट कमावह, हिरदा शुद्ध ना हुई अन दिन कर्म करह बहुतेरे, सुपने सुख ना हुई ज्ञानी गुर बिन भगत ना होई, कोरे रंग कदे ना चढ़े जे लोचे सब कोई रहाव, जप तप संयम वर्त करे पूजा मनमुख रोग ना जाई, अंतर रोग महा अभमाना दूजे भाए खुआई, बाहर भेख बहुत चतुर।

किसन उतरिया घर जिस जाई, हर की अकथ कथा सुनो जन पाई, जित सहसा दुख भूख सब लह जाय रहाउ। रविदास चमार पुस्तक करे, हर कीरत निमख एक गाय, पतत जात उत्तम भया, चार वर्ण पए पग आए, नाम दे प्रीत लगी हर सेती, लोक शीपा कह बलाय, खतरी ब्राह्मण पेठ दे छोड़े, हर नाम दे लिया मुख लाय, जितने भगत हर सेवका, मुख अठ सठ तीरथ तिन तिलक कढ़ाय, जन नानक तिन को अन दिन परसे, जे कृपा करे हर राय। सूही महला चौथा, तिनी अंतर हर अराध्या, जिनको तुर लिखिया लिखत लिलारा, तिनकी बखीली कोई क्या करे, जिनका अंग करे मेरा हर करतारा, हर हर त्याए मन मेरे, मन त्याए हर, जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा रहाउ। तुर भगत जना को बख्शिया, हर अमृत भगत भंडारा, मूर्ख हो ऐसो उनकी रीस करे, किस हलत पलत

जिसनो हर सो प्रसन्न हुए सो हर गुणा रवे सो भगत सो परवान तिसकी महिमा क्या वर्णी है जिसके हृदय बसिया हर पुरख भगवान गोविंद गुण गाइए जियो लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ सो सतगुरु सा सेवा सतगुरु की सफल है जिसके पाइए परम निदान जो दूजे पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध सरेम दे सो

अहमान जो बिन परतीती कपटी कूड़ी कूड़ी अखी मीट दे उनका उत्तर जाएगा झूठ गमान जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान दासन दास कह जन नानक जेहा तू कराए तेहा हों करी बखियान सूही महला चौथा घर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निधाना तुमरी महिमा बन ना साको तू ठाकुर ऊच भगवाना मैं हर हर नाम धर सोई

स्वामी मैं तुदे आगे अरदास मैं होर थाओ नाही जिस पै करूं बेनंती मेरा दुख सुख तुझ ही पास विचे धरती विचे पानी विच काष्ट अगन तरीजै बकरी सिंह इक तै थाए राखे मन हर जाप भ्रम।

ज्यो धरती चरण तले ते ऊपर आवै त्यो नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाई। सूही महला चौथा। तू करता सब किसे आप ही जान है, क्या तुद पह आख सुनाई है, बुरा भला तुद सब किस सूझै, जेहा को करे तेहा को पाई है। मेरे साहिब तू अंतर की बिद जान है, बुरा भला तुद सब किस सूझै, तुद भावै तिवै बला वह रहाऊ। सब मोह माया शरीर हर किया, विच देही मनुख भगत कराई। इक ना सतगुर मेल सुख देव है, इक मनमुख धंध पिटाई। सब को तेरा तू सबना का मेरे करते, तुद सबना सिर लिखिया लेख। जेही तू नदर करह तेहा को होवै, बिन नदरी नाही को भेख। तेरी वडियाई तू है जान है, सब तुदनो नित त्याई।

जिनके अंतर वस्या मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाई, ते मुक्त पये जिन हर नाम त्याया, तिन पवित परम पद पाई, मेरे राम हर जन अरोग पये, गुर बचनी जिन्ना जपया मेरा हर हर, तिनके हम मैं रोग गए रहाओ, ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण रोगी, विच हम मैं कार कमाई, जिनकी ये तिसह ना चेतह बपड़ी, हर गुरमुख सूजी पाई, हम मैं रोग सब जगत व्यापिया, तिनको जन्म मरण दुख भारी, गुर प्रसादी को विरला छूटै, तिस जन को हों बलिहारी, जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने, ताका रूप अपारो

तुझ श्रेष्ठ सब साजी, कोई सेवा करियो जे किछ कीता हुआ। इकना सतगुर मेल तू बुझावे, एक मनमुख करह से रोवै।

मैं मालत हुई, कहो नानक मेरी परम गत हुई। सूही महला पंजवां, कीता लोड़ है सो प्रभ होए, तुझ बिन दूजा नाहीं कोई। जो जन सेवे तिस पूर्ण काज, दास अपने की राखो लाज। तेरी शरण पूर्ण दयाला, तुझ बिन कवन करे प्रतपाला। रहाउ जल थल महियल रहया भरपूर, निकट वसै नाहीं प्रभ दूर। लोक पतियारे कछु ना पाइए, साच लगे ता हूं मैं जाइए। जिसनो लाए लए सो लागे, ज्ञान रतन अंतर तिस जागे। दुर्मत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम ते आए। दोए कर जोड़ करो अरदास, तुद भावे ता आणहि रास। कर कृपा अपनी भगती लाई, जन नानक प्रभु सदा त्याई। सूही महला पंजवां, तन सुहागन जो प्रभु।

ला पंजवा गृहवास गुर की ना हो घर की नार दस दासी कर दीनी पतार सगल समगरी मैं घर की जोड़ी आस पे आसी पिर को लोड़ी कवन कहां गुणकंत प्यारी सुगड़ स्वरूप दयाल मरारी रहाउ सत शिंगार पहु अंजन पाया अमृत नाम तंबोल मुख खाया कंगन बस्त्र गहने बने सुहावे तन सब सुख पावे जा फिर घर आवे गुण कामन कर कंत रिझाया वस कर लीना गुर भरम चुकाया।

जन नानक पिर तन मिल सुख पाया, सूही महला पंजवा उमके ओहियो मिलन प्रभ ताई, खोजत चरयो देखो प्रिय जाई, सुनत संदेसरो प्रिय ग्रह सेज बछाई, भ्रम भ्रम आयो तो नदर ना पाई, किन बेदही अरो तीरै निमानो, मिल साजन हों तुझ कुर्बानो रहाओ, एका सेज विशी धन कंता, धन सूती पिर सद जागंता, पियो मदरो धन मतवंता, धन जागै जे पिर बोलंता, पई नरासी बहुत दिन लागी, देश दसंतर मैं सगले जागे, खिन रहन ना पावो बिन पग पागे, हुए कृपाल प्रभ मिलह सुभागे, पयो कृपाल सतसंग मलाया, बूझी तपत करह फिर पाया, सगल शिंगार हुन मुझ सुहाया, कहो नानक गुर भरम चकाया, जह देखा तह फिर है पाई।

ऊठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया, अवसर अपना बुझे ना याना, माया मोह रंग लपटाना रहाओ, लोभ लहर को बिगस फूल बैठा।

करन सुन भीना हर जस सुनत आलस मन कीना दृष्ट नाही रे पेख ते अंधे छोड़ जाहे झूठे सब धंधे रहाओ कहो नानक प्रभ बख्श करी जय कर कृपा मोहे साध संग दीजै तो किस पाई जो

पंजवा जीवत मरे बुझे प्रभ सोए तिस जन कर्म प्राप्त होए सुन साजन यों दुत्तर तरिया मिल साधु हर नाम उच्चरिया रहाओ एक बिना दूजा नहीं जाने घट घट अंतर पार ब्रह्म पछाने जो किस करे सोई पल माने आद अंत की कीमत जाने कहो नानक तिस जन बलिहारी।

गुर के चरण कमल मन त्याई, दुख दर्द इस तन ते जाए रहाओ। भव जल डूबत सतगुर काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गांडै। गुर की सेवा करो दिन रात, सुख सहज मन आवे शांत। सतगुर की रेन वड भागी पावे, नानक गुर को सद बल जावे। सूही महला पंजवां, गुर अपने ऊपर बल जाइए। आठ पैर हर हर जस गाइए, सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी। सगल कटा का

मन माही जन्म जन्म के किल विख जाही कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक मांगे संतरवाला सुई महला पंजवा दर्शन।

आहार पूदाता प्रभ देवन हार राम रमत संतन सुख माना नानक देवन हार सुजाना सुई महला पंजवा बहती जात कदे दृष्ट ना धारत मिथ्या मोह बंद है नित पारच माधवे भज दिन नित रहनी जन्म पदार्थ जीत हर सरनी रहाओ करत विकार दो कर चारत राम रतन रिद तिल नहीं धारत परन पोखन संग औद बेहानी जय जगदीश की गत नहीं जानी सरन समराते अगोचर स्वामी।

सिमर रत्नागर सिमर सिमर जीवा नारायण दुख रोग सोग सब बिन से गुरपूरे मिल पापत जायन रहाउ जीवन पदवी हर का नाउ मन तन निर्मल साच सुआउ आठ पहर पार ब्रह्म त्याई है पूर्व लिखित होए ता

आस हर सेती राते राम रसायणे अन दिन माते बाहां पकड़ प्रभ आपे काढे जन्म जन्म के टूटे गांडे उधार स्वामी प्रभ कृपा तारी नानक दास हर सरन द्वारी सूही महला पंजवां संत प्रसाद निश्चल घर पाया सर्ब सुख फिर नहीं डोलाया गुरु त्याए हर चरण मन चीने ताते करता असथर कीने रहाउ गुण गावत अचुत अबनासी ताते काटी जम की पासी।

कृपाला रहाऊ कर कृपा तुम ही प्रतपाला जियो पिंड सब तुमरा माला अमृत नाम चले जप नाला नानक जाचै संतर वाला सूही महला पंजवा किस बिन।

अल्लाह पंजवा दर्शन को लोचै सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई रहाओ श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई महामोहनी दूता लाई प्रेम बशोहा करत कसाई निर्दय जंत तिस दया ना पाई अनक जन्म बीतियन परवाई घर वास ना देवै दुत्तर माई दिन रैन अपना किया पाई किस दोष ना दीजै किरत पवाई सुन साजन संत जन पाई चरण सरन नानक गत पाई राग सूही महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पली सुहावी छापरी जा मह गुन गाय कित ही कामना धौल हर जित हर बिसराई रहाओ अनद गरीबी साध संग जित प्रभ चेते आए जल जाओ एहो बडपना माया लपटाई पीसन पीस ओढ़ कामरी सुख मन संतोख आए ऐसो राज ना कितै काज जित नह त्रिपताई नगन फिरत रंग एक कै ओहो शोभा पाई पाठ पटंबर बिरथिया जिह रच लोभाई सब किस तुमरै हाथ प्रभ आप करे कराई सास सास सिमरत रहा नानक दान पाई सूही महला पंजवा हर का संत प्राण धन तिसका पनिहारा भाई मीत सुत सगल ते जी हूं ते प्यारा रहाउ केसा का कर बीजना संत चौर टलावो शीस निहारो चरण तल धूर मुख लावो मिष्ट बचन बेनती करो दीन की न्याई ताज अवमान सरनी परो हर गुण निध पाई।

को सुखी ताके पाछे जाऊं छोड़ जाहे जो सगल को फिर लपटाऊं करहो कृपा करुणापति तेरे हर गुण गाओ नानक की प्रभ बेनती साध संग समाऊं राग सूही महला पंजवा घर पंजवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रीत प्रीत गुरिया

करनी आया, पुरुष आया, कृपा आया, ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी, मार्ग गुरह पठाया रहाऊ, महा दुत्तर माया, जैसे पवन चलाया, सुन सुन ही डराया, करो धर्म राया, गृह अंध कुपाया, पावक सगराया, गही ओट सधाया, नानक हर त्याया, अब मैं पूरा पाया, राग सूही महला पंजवा कर छेवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सतगुर पास बे

मिलिया पार ब्रह्म तेरिया चरना कहो बलिहारा राग सूही महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरा पाना तू है मनाई।

जित तुद त्याई निर्मल हुवै देहा मेरे राम। हौ सो थान पालन आया खोजत खोजत भया साध संग तिन सरनाई पाया रहाउ। वेद पढ़े पर ब्रह्मे हारे एक तिल नहीं कीमत पाई साधक सिद्ध फिर है बिल लाते ते पी मोहे माई दस अवतार राजे हुए वरते।

सहज सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया सफल दर्शन भेट्यो गुरु नानक ता मन तन हर हर ध्याया।

करते का निमक सिमरत जित शूटै संतो सागर पार उतरिय जे को बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिय रहाओ कोट तीरथ मज्जन इशनाना इस कल मह मैल प्रीजै साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर लीजै वेद कतेब सिमरत सब सासत इन पढ़िया मुक्त ना हुई एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई खत्री ब्राह्मण सूद वैस अपदेश चहो वरना को सांझा गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल मह।

जल थल महियल सोई रहाउ, कोट अपराधी संत संग उदर है, जम तां कै नेड़ ना आवे, जन्म जन्म का बिछड़िया हुवे, तिन हर स्यों आण मिलावे, माया मोह परम पहु काटे, संत सरण जो आवे, जेहा मनोरथ कर आराधी, सो संतन ते पावे, जन की महिमा केतक बरनऊ।

परवासा तुमरा जप नाम तुम्हारा उदरे रहाओ अंधकूप ते काढ लिए तुम आप भये कृपाला सार संभाल सर्ब सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नदर करे परमेश्वर बंधन काट छुड़ाई अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाई परम गया पै मोह बनासे मिटिया सगल वसूरा नानक दया करी सुख दाता पेटिया सतगुर पूरा सूही महला पंजवां।

चरण धूड तेरे जन की होवा, तेरे दर्शन कहो बल जाई। अमृत बचन हृदय उर धारी, तौ कृपा ते संग पाई। अंतर की गत तुद पह सारी, तुद जेवड़े अवर ना कोई। जिसनो लाए लह सो लागै,

स्वामी जिनका जन्म मरण दुख नासा तेरी बख्शना मेटे कोई सतगुर का दिलासा नाम त्याइन सुख फल पाइन आठ पैर आराध है तेरी शरण तेरे परवास है पांच दुष्ट लै साध है ज्ञान ध्यान किस कर्म

राग सूही अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई क्यों कर कंत मलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना कुल ढंग ना मीठे बैना रहाओ सहज शिंगार कामन कर आवे ता सुहागण जा कंते पावे ना किस रूप ना रेखिया काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई सुरत मत नाही चतुराई।

नव निद पाई, अनक जन्म बिछरत दुख पाया, कर गया ले हो प्रीतम प्रबराया, भणत नानक सहो है पी होसी, जय पावै प्यारा तैर वेसी, सूही महला पहला कर नौवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कच्चा रंग कसुंभ का थोड़िया दिन चार जी हो, विण नावै भ्रम भुलिया।

लिव उबरै बख्शे बख्शन हार जियो अन्न को कीजै मितड़ा खाक रल मर जाए जियो बहु रंग देख भुलाया

देही होवग खाक पमन उड़ाई है, एहो कित्ते कर औताक महल ना पाई है। देहो दीवी अंध कोर कप महाई है, गर्भ मुसे घर चोर किस रुआई है। गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जगाई है, शब्द निवारी आग जोत दी पाई है। लाल रतन हर नाम गुरसुरत बुझाई है, सदा रहे नेह काम जे गुरमत पाई है। रात देह हर नाम मन वसाई है, नानक मेल मलाए जे तुद पाई है। सूही महला पहला मनो ना नाम वसार, एहन सत्याई है। जो राखह कृपा धार तिवे सुख पाई है। मैं अंदले हर नाम लकटी टोहनी, रहो साहिब की टेक नामो है मोहनी। रहाओ जह देखो तह नाल गुर देखालिया, अंतर बाहर पाल शब्द निहालिया। सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना, तुद पावे तिवें रजाए परम पौ भंजना। जन्मत ही

लागिया, आपे थाप उथाप शब्द निवाजिया, देही पसमर लाए ना जापी कह गया, आपे रहया समाए सो विस्माद भया, तू नाही प्रभ दूर जान है सब तू है, गुरमुख वे

आस सतगुर मत दे राग सूही महला तीजा कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद नामै ही ते सब किश होआ बिन सतगुर नाम ना जापै गुर का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साध ना जापै कौडी बदलै जन्म गवाया कीन सनाही आपै

गुरमुख गावे गुरमुख बूजे गुरमुख शब्द बिचारी जियो पिंड सब गुरते उपजे गुरमुख कारज सुवारी मनमुख अंधा अंध कमावे भिख खटे संसारी माया मोहे सदा दुख पाए बिन गुर अत प्यारी सोई सेवक जे सतगुर सेवे चाले सतगुर पहाई साचा शब्द सिफत है साची।

साचा साचा शब्द सुनाई, गुरमुख काले गुरमुख खटे, गुरमुख नाम जपाए, सदा अलिपत साचे रंग राता, गुर कै सहज सुपाए, मनमुख सद ही कूड़ो बोले, बिख बीजे बिख खाए, जमकाल बादा तृष्णा दादा, बिन गुर कवन छिडाए, सच्चा तीरथ जित सत सर नावन, गुरमुख आप बुझाए, अठ सठ तीरथ गुर शब्द दिखाए, तित नाते मल जाए।

राखी तृष्णा यज्ञ बुझाए। गुर कै शब्द राता सहजे माता सहजे रहिया समाय। हर का नाम सत कर जाने गुर कै

तन मन सौंपी आगै धरी विचों आप गवाए खिंचो तान विगुची है एक सस्यों लिवलाए हौ मैं मेरा छद तू ता सच रह समाए सतगुर नो मिले से पाहेरा सच्चा शब्द लगन सच मिले से ना बिछड़ है दर सच्चा दिसन से भाई से सजना जो सच्चा सेवन अवगुण विकण पलरन गुण की सांझ करन गुण की सांझ सुख उपजै सच्ची भगत करेन सच वणंज है गुर शब्द स्यों लाहा नाम लेन सोइना रूपा पाप कर कर संची है चलै ना चल दिया नाल विण नावै नाल ना चल सी।

धरी चरना तल सब धरती फिर मत पाई जे पास बहाल है ता तुझे अरादी जे मार कड़ है पीत आई जे लोक सलाहे ता तेरी उपमा जे निंदा ता छोड़ ना जाई जे तुद वाल रहे ता कोई केहो आखो तुद विसरे है मर जाई वार वार जाई गुरु ऊपर पै पैरी संत मनाई नानक विचारा भया दीवाना हर तौ दर्शन कै ताई चखड़ झांगी मीह वरसे पी गुर देखण जाई समुंद सागर हुए बहु खारा गुर सिख लंग गुर पह जाई ज्यों प्राणी जल बिन है मरता त्यों सिख गुर बिन मर जाई ज्यों धरती सोभ करे जल बरसे त्यों सिख गुर मिल बिगसाई सेवक का हुए सेवक वरता कर कर बिनहु बुलाई नानक की बेनंती हर पह गुर मिल गुर सुख पाई तू आपे गुर चेला है आपे गुर विच दे तुझह त्याई जो तुद सेव है सो तू है हो वह तुद सेवक पैज रखाई भंडार भरे भगती हर तेरे जिस भावे तिस देवाई जिस तू देहे सोई जन पाई होर निफल सब चतुराई सिमर सिमर सिमर गुर अपना सोया मन जागाई एक दान मंगै नानक बेचारा हर दासन दास कराई जे गुर झिड़के ता मीठा लागै जे बख्शे ता गुर वडियाई गुरमुख बोल है सो थाए पाए मनमुख किस थाए ना पाई पाला ककर वर्फ वरसै गुर सिख गुर देखण जाई सब दिन सरैण देखो गुर अपना विच अखी गुर पैर तराई अनेक अपाव करी गुर कारण गुर भावै सो थाए पाई रैण दिनस गुर चरण अरादी दया करहो मेरे साई नानक का जियो पिंड गुरु है गुर मिल तृप्त अगाई नानक का प्रभ पूर रहयो है जत कत तत गुसाई राग सूही महला चौथा अष्टपदियां कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपने तन मन हुए निहाल जा गुर देखा सामने मैं

सुतियां गुर सलाहिया उठदियां पी गुर अलाव। कोई ऐसा गुरमुख जे मिले हौ तां के धुआ पाव। कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो मैं प्रीतम दे मलाए। सतगुर मिलिया हर पाया मिलिया सहज सुपाए। सतगुर सागर गुण नाम का मैं तिस देखन का चाऊ। हौ तिस बिन घड़ी ना जीवं बिन देखे मर जाऊ। ज्यों मछली बिन पानी है रह ना कित उपाए। त्यों हर बिन संत ना जीवई बिन हर ना मैं मर जाए। मैं सतगुर सेती पिरहड़ी

गुरु तुठा देव माए, मैं धर सच्चे नाम की हर नाम रहा लिव लाए। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है हर नामो दे दृढ़ाए, जिस प्राप्त सोल है गुर चरणी लागे आए। अका

सुजान। सतगुर मीत मलाया मैं सदा सदा तेरा तान। सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए। ओह अबनासी पुरख है सब मैं रहया समाय। राम नाम धन संचया साबत पूंजी रास। नानक दरगाह मन्या गुरपुरे साबास। राग सूही अष्टपदियां महला पंजवां कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उर्ज रहयो बिख्या कै संगा मन है व्यापत अनक तरंगा। मेरे मान अगम अगोचर कत पाई पूर्ण परमेश्वर रहाउ। मोह मगन में रहया व्यापे अत तृष्णा कबहू नहीं त्रापे। बसे क्रोध शरीर चंडारा अज्ञान ना सूजै महा गवारा। प्रमत व्यापत जरे किवारा जान ना पाई है प्रभ दरबारा। आस अंदेसा बंद पराना महल न पावे फिरत बेगाना। सगल ब्याद कै वस कर दीना फिरत प्यास जो जल बिन मीना। कशु सियानप उकत ना मोरी एक आस ठाकुर प्रभ तोरी। करो बेनती संतन पासे मेल लैहो नानक अरदासे। पयो कृपाल साध संग पाया नानक तृप्ते पूरा पाया। रहाओ दूजा राग सूही महला पंजवां कर तीजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मिथन मोह अगन शोक सागर कर कृपा उधर हर नागर। चरण कमल सरनाए नारायण दीना नाथ भगत परायण। रहाओ अनाथा नाथ भगत पै मेटन साध संग जम दूत ना भेटन।

आद मध अंत प्रभ सोई, नानक तिस बिन अवर ना कोई। राग सूही महला पंजवां, अष्टपदियां घर नौवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जिन जिठिया मन रहसी है, क्यों पाई है तिन संग जियो। संत सज्जन मन मित्र से, लाइन प्रभ स्यों रंग जियो। तिन स्यों

मन बुठा निरंकार जियो तां का अंत न पाईऐ। ऊंचा अगम अपार जियो जिस प्रभ अपना विसरै, सो मर जम्मै लख वार जियो साच नेहो।

दातड़ी नित हृदय रखा संभाल पाम जलाई पंद तो नैनी दर्श दिखाल श्रवणी सुनी कहानिया जे गुर पीवै कृपाल कित्ती लख करोड़ प्रिये रोम ना पुजन तेरिया तू साही हूं साह हो कह ना सका गुण तेरिया सहिया तऊ असंख मन्यो आप वधानिया एक भोरी नदर निहाल देह दर्स रंग माणिया जय जिथे मन धीरी है किल विक मंजन दूरे सो क्यों विसरै माओ मैं जो रहया परपूरे होए नमाणी तह पई मिलिया सहज सुपाए पूर्ब लिखिया पाया नानक संत सहाय तू ही महला पंजवा सिमरत बेद पुराण पकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होशियां नाम निदान अपार भगता मन वसै जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसै रहाउ मोहे बाद अहंकार सर पर रुनिया सुख न पायन मूल नाम विशुनिया मेरी मेरी तार बंधन बंधिया नरक सुर्ग अवतार माया धंधिया सोदत सोदत सोद तत बीचारिया नाम बिना सुख नाही सर पर हारिया आवह जाहि अनेक मर मर जन्मते बिन बूजे सब वाद जोनी भरमते जिनको भय दयाल तिन साधु संग भया अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लया खोज है कोट असंख बहुत अनंत के।

मैं सब को तू साहिब मेरी रास जियो तुदे अंतर हो सुख वसा तू अंतर सा बास जियो भाणे तख्त वडाइया भाणे भीख उदास जियो भाणे थल सिर सर्व है कमल फुले आकाश जियो भाणे भवजल लंघी है भाणे मंज परियास जियो भाणे सो सहो रंगला सिफत रत्ता गुणतास जियो भाणे सहो पिहावला हौ आवन जान मुई आस जियो तू सहो अगम अतोलवा हौ कह कह टह पई आस जियो क्या मांगो क्या कह सुनी मैं दर्शन भू

लाए जियो, सोई दस उपदेसड़ा, मेरा मन अंत ना काहू जाए जियो। एहो मन तै कू देवसा, मैं मार्ग देहो बताए।

चित मह मेरा सब दुख गवाई दियो। इत मार्ग चले भाई अड़े गुर कह सो कार कमाई दियो। त्यागे मन की मतड़ी।

गुण सार न जानी भरम पलानी जो गुण बाद गुआया वार घर दर दर्शन नहीं जाता फिर का सहज ना पाया सतगुर पूछना मार्ग चाली सूती रहन विहानी नानक बाल तनरा डेपा बिन फिर तन कुमलानी बाबा मैं वर दे मैं हर वर भावे तिसकी बलराम जियो रव रहिया जुग चार त्रिभवन बाणी जिसकी बलराम जियो त्रिभवन कंतर वै सुहागण अवगण मंती दूरे जैसी आसा तैसी मनसा पूर रहिया पर पूरे हर की नार सो सर्व सुहागण रांड ना मैले विसे नानक मैं वर साचा पावे जुग जुग प्रीतम तैसे बाबा लगन गणाए हम भी वन्या सोहरे बलराम जियो साहा हुक्म रजाए सो ना तले जो प्रभ करे बलराम जियो किरत पया करते कर पाया मेट ना सके कोई जानी ना नरे ने केवल रव रहिया तिहो लोई माए नरासी रोए वछुनी बाली बाले हेते नानक साच शब्द सुख महली गुर चरणी प्रभ चेते बाबुल दितड़ी दूर ना आवे कर पेये बलराम जियो रहस्ती वेख हदूर फिर रावी कर सोहिये बलराम जियो साचे पिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मत पूरी परदानी संजोगी मेला थान सुहेला गुणवंती गुर ज्ञानी सत संतोख सदा सच पल्ले सच बोले पिर पाए नानक बिछड़ ना दुख पाए गुरम

पाद हम कर साजने आए साचै मेल मलाए सहज मलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया साई वस्त प्राप्त होई जिस सेती मन लाया अन दिन मेल भया मन मानिया कर मंदर सोहाई पंच शब्द तुन अनहद वाजी।

ता गुण रवै मन भावै सोई गुर की पौड़ी साच की साचा सुख होई सुख सहज आवै साच पावै साच की मत क्यों टलै इशनान दान सुग्यान मज्जन।

गुण रवै मन भावै सोई साहिब सो सलाही है जिन कारण किया मैल लागी मन मैल है किने अमृत पिया मथ अमृत पिया इहो मन दिया गुर पह मोल कराया आपनड़ा प्रभ सहज पछाता जा मन साचे लाया तिस नाल गुण गावा जे तिस पावा क्यों मिले हुए पराया साहिब सो सलाही है जिन जगत पाया आए गया की ना आयो क्यों आवे जाता प्रीतम स्यों मन मानिया हर सेती राता साहिब रंग राता सच की बाता जिन बिंब का कोट उसारिया पंच भू नायको आप सरंदा जिन सच का पिंड सवारिया हम अवगुण यारे तू सुन प्यारे तुद भावे सच सोई आवन जाना ना थी है साची मत हुई अंजन तैसा अंजी है जैसा पिर भावे समझे सूझे जानिए जे आप जनावे आप जानावे मार्ग पावे आपे मनुआ लेवे कर्म स कर्म कराए आपे कीमत कौन अपेवे तंत मंत पाखंड ना जाना राम हृदय मन मानिया अंजन नाम तिसे ते सूझे गुर शब्दी सच जानिया साजन होने अपने क्यों पर घर जाही साजन राते सच के संगे मन माही मन माही साजन करह रलिया कर्म धर्म सबाया अठ तट तीर्थ पुन पूजा नाम साचा पहाया आप साजे थाप वेखै तिसे पाणा पाया साजन रंग रंगी लड़े रंग लाल बनाया अंधा आगू जे थी क्यों पाधर जाने आप मुस्से मत होशी है क्यों राह पछाण क्यों राह जावे महल पावे अंध की मत अंधली बिन नाम हर के कसना सूझे अंध बूढ़ो धंधली दिन रात चानन चाओ उपजे शब्द गुर का मन वसे कर जोड़ गुर पह कर बेनंती राह पादर गुर दसे मन परदेसी जे थी है सब देश पर आया किस पै खोलो गंथड़ी दुखी भर आया जगत सबाया।

झूणे ना गुर शब्द सुनाया मन परदेसी जेती है सब देश पराया गुर महली घर अपने सो भर पुर लीना सेवक सेवा तां करे सच शब्द पतीना शब्दे पतीजे अंक पीजे सो महल महला अंतरे आप करता करे सोई प्रभ आप अंत नरंतरे गुर शब्द मेला तां सुहेला पा जंत अनहद बीना गुर महली घर अपने सो भर पुर।

आप भुल ना भुले, जय जयकार करह तुद भाव है, गुर कै शब्द अमुल, हीनो नीच करो बेनंती, साच ना छोड़ो भाई, नानक जिन कर देखिया, देवै मत साई, राग सूई संत महला तीजा घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुख सोह लड़ा हर त्याव हो, गुरमुख हर फल पाव हो, गुरमुख फल पाव हो, हर नाम त्याव हो, जन्म जन्म के दुख निवारे, बलिहारी गुरे अपने विट्टो हो, जिन कार्य सब सवारे, हर प्रभ कृपा करे हर जाप हो, सुख फल हर जन पाव हो, नानक कह सुनो जन भाई, सुख सोह लड़ा हर त्याव हो, सुन हर गुण पीने सहज सुपाए, गुरमत सहजे नाम त्याए, जिनको तुर लिखिया तिन गुर मिलिया, तिन जन्म मरण पौ भागा, अंदरों दुरमत दूजी खोई, सो जन हर लिव लागा, जिनको कृपा कीनी मेरा स्वामी, तिने अन दिन हर गुण गाए, सुन मन पीने सहज सुपाए, जुग मह राम नाम निस्तारा, गुर ते उपजै शब्द विचारा, गुर शब्द

अगाही हर गुण गाए सदा तृप्तासी फिर भूख ना लागे आई दह दिस पूज होए हर जन की जो हर हर नाम त्याई नानक।

मन निर्मल हर जियो वेखह सदा नाले नानक से भगत हर कै दर साचे अन दिन नाम संभाले मन मुख भगत करह बिन सतगुर बिन सतगुर भगत ना होई राम होमे माया रोग व्यापी मर जन्मह दुख होई राम मर जन्मह दुख होई दूजे पाए परज बिगोई बिन गुर तत ना जानिया भगत विहूणा सब जग भरमिया अंत गया पछतानिया कोट मदे किने पछाणिया हर नामा सच सोई नानक नाम मिले वडियाई दूजे पाए पत खोई भगतां कै कर कारज साचा हर गुण सदा बखाणे राम भगत खजाना आपे दिया काल कंटक मार समाणे राम काल कंटक मार समाणे हर मन भाणे नाम निधान सच पाया सदा अखुट कदे नान खुट हर दिया सहज सुपाया हर जन ऊचे सद ही ऊचे गुर कै शब्द सुहाया नानक आपे बख्श मलाए जुग जुग सोभा पाया तूही महला तीजा शब्द सच्चे सच सोहिला जिते सच्चे का हुए विचारू राम होमे सब किलविख काटे साच रखिया उर तारे राम सच रखिया उर तारे दुत्तर तारे फिर भवजल तरन ना होई सच्चा सतगुर सच्ची वाणी जिन सच बखालिया सोई साचे गुण गावे सच समावे सच वेखै सब सोई नानक साचा साहिब साची नाई सच निस्तारा हुई साचै सतगुर साच बुझाया पात राखै सच सोई राम सच

है सुबा साचे ही सुख होई। साच रते भगत एक रंगी दूजा रंग ना कोई। नानक जिस को मस्तक लिखिया तिस सच प्राप्त होई। सूही महला तीजा जुग चारे तन जे भवै बिन सतगुर सुहाग न होई। राम निश्चल राज सदा हर केरा तिस बिन अवर ना कोई। राम तिस बिन अवर ना

रावे मन माने सुख होई। सतगुर सेव धन बालड़िए हर वर पाव है सोई राम। सदा होवे सुहागणी फिर मैला वेस ना होई राम। फिर मैला वेस ना होई गुरमुख बूझे।

नानक कामण पिर रावे अपना, राव रहिया प्रभ सोई। गुर की कार करे धन बालड़िए, हर वर दे मलाए राम। हर कै रंग रती है कामण, मिल प्रीतम सुख पाए राम। मिल प्रीतम सुख पाए सच समाए, सच वरतै सब थाई। सच्चा शिंगार करे दिन राती, कामण सच समाई। हर सुख दाता।

गुरमति घट चानन होआ। प्रभ रव रहिया सब थाई राम, प्रभ रव रहिया सब थाई मन वसाई। पूर्व लिखिया पाया सेज सुखाली मेरे प्रभ पाणी, सच सिंगार बनाया कामन निर्मल होमै मल खोई। गुरमत सच समाई नानक आप मलाई, करतै नाम नवै निध पाई।

शब्द रवहु, अनदिन शब्द बजाए राम, अनहद शब्द बजाए हर जियो घर आए, हर गुण गावो नारी। अनदिन भगत करह गुर आग्या, सा धन कंत प्यारी। गुर का शब्द वसिया घट अंतर, से जन शब्द सुहाई। नानक तिन घर सद ही सोहिला, हर कर किरपा घर आई। भगता मन आनंद भया, हर नाम रहे लिवलाए राम। गुरमुखे मन निर्मल हुआ, निर्मल हर गुण गाए राम। निर्मल गुण गाए नाम मन वसाए, हर की अमृत बाणी। जिन मन वसिया से जन निस्तरे, घट घट शब्द सुमाणी। तेरे गुण गाव है सहज समाव है, शब्दे मेल मलाए। नानक सफल जन्म तिन केरा, जे सतगुर हर मार्ग पाए। संत संगत स्यों मेल भया, हर हर नाम समाए राम। गुर कै शब्द सद जीवन मुक्त भये, हर कै नाम लिव लाए राम। हर नाम चित लाए गुर मेल मलाए, मनुआ रत्ता हर नाले। सुखदाता पाया मोह चकाया, अनदिन नाम संभाले। गुर शब्दे राता सहजे माता, नाम मन वसाए। नानक तिन घर सद ही सोहिला, जे सतगुर सेव समाए। बिन सतगुर जग भरम भुलाया,

मुख गवाया जां हर मन पाया सदा गावह रंग राते हर के भगत सदा जन निर्मल जुग जुग सद ही जाते साची भगत करह दर जापह घर दर सच्चा सोई नानक सच्चा सोहिला सच्ची सच बाणी शब्दे ही सुख होई सूही महला तीजा जे लोड़ है वर बालड़िए ता गुर चरणी चित लाए राम सदा होवह सुहागणी हर जियो मरे ना जाए राम हर जियो मरे ना जाए गुर कै सहज सुपाई सा धन कंत प्यारी सत संजम सदा है निर्मल गुर कै शब्द शिंगारी मेरा प्रभ साचा सद ही साचा जिने आपे आप उपाया नानक सदा।

गुरमति मन आनंद भया, तित तन मैल न राती राम, तित तन मैल न राती हर प्रभ राती, मेरा प्रभ मेल मलाए, अन दिन रावे हर प्रभ अपना, विचो हो आप गुआए, गुरमत पाया सहज मलाया, अपने प्रीतम राती, नानक नाम मिले वडियाई, प्रभ रावे रंग राती।

हर मन तनोह गुरमुख भीजै, राम नाम प्यारे राम, राम नाम प्यारे सब कुल उधारे, राम नाम मुख बाणी आवन जान रहे सुख पाया, कर अनहद सुरत सुमाणी।

प्रभ अत ऊंचा क्यों कर मिलिया जाए राम। गुर मेली बहु कृपा तारी हर कै शब्द सुपाए राम। मिल शब्द सुपाए आप गवाए रंग स्यों रलिया माणी। सेज सुखाली जा प्रभ पाया हर हर नाम सुमाणी। नानक सुहागन सावड भागी

ताटक ते सबना विच एको एको राम पतारो राम इकना प्रभ दूर वसै इकना मन आधारो राम इकना मन आधारो सिरजन हारो वडभागी गुर पाया घट घट हर प्रभ एको स्वामी गुरमुख अलख लखाया सहजे आनंद हुआ मन मानिया नानक ब्रह्म बिचारो घट घटे सबना विच एको एको राम पतारो राम गुर सेवन सतगुर दाता हर हर नाम समाया राम हर धूड़ देव हो मैं पूरे गुर की हम पापी मुक्त कराया राम पापी मुक्त कराए आप गुआए निज कर पाया वासा बबेक बुद्धि सुख रैन विहानी गुरमत नाम परगासा हर हर आनंद भया दिन राती।

परम गत पाई, पंच मिले सुहाया गया क्रोध ममता तन नाथी, पाखंड भरम गवाया हौ मैं पीर गई सुख पाया, अरोगत भये शरीरा गुर प्रसादी ब्रह्म पछाता, नानक गुणी गहीरा मनमुख विछड़ी दूर, महल ना पाए बल गई बलराम जियो अंतर ममता कूर, कूड़ विहाजे कूड़ लई बलराम जियो, कूड़ कपट कमावे महा दुख पावे, विन सतगुर मग ना पाया उज्जड़ पंथ भ्रमै गावारी, खिन खिन धक्के खाया आपे दया करे प्रभदाता, सतगुर पुरख मलाए जन्म जन्म के विछड़े जन मेले, नानक सहज सुभाए आया लगन गणाए, हिरदय धन ओमाहिया बलराम जियो, पंडित पांदे आन पत्ती बह वाचाइया बलराम जियो, पत्ती वाचाई मन बजी वधाई, जब साजन सुने घर आए गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए वर पाया पुरख अगम अगोचर, सद नवतन बाल सिखाई,

वेद धर्म दृढ़ हो पाप तो जाया बलराम जियो धर्म दृढ़ हो हर नाम त्याव हो सिमरत नाम दृढ़ाया सतगुरु गुरु पूरा आराध हो सब किल विख पाप गुआया सहज आनंद हुआ बड़ भागी।

परपूरे अंतर बाहर हर प्रभ एको मिल हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाम चलाई अनहद शब्द बजाए हर तीजड़ी लाम मन चाओ भया बैरागिया बलराम जियो संत जना हर मेल हर पाया बडभागिया बलराम जियो निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी संत जना बडभागी पाया हर कथिया अकथ कहानी हृदय हर हर हर धुन उपजी हर जपिए मस्तक भाग जियो जन नानक बोले तीजी लावे हर उपजे मन बैराग जियो हर चौथड़ी लाम मन सहज भया हर पाया बलराम जियो गुरमुख मिलिया सुपाए हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अन दिन हर लिव लाई मन चिंदिया फल

हर पाया प्रभ अविनाशी, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। राग सूई संत महला चौथा, कर दूजा गुरमुख हर गुण गाए, हृदय रसन रसाए, हर रसन रसाए मेरे प्रभ पाए। मिलिया सहज सुपाए, अन दिन भोग भोगे सुख सोवे, शब्द रह लिवलाए। वड्डे भाग गुरपूरा पाईए, अन दिन नाम त्याए, सहजे सहज मिलिया जग जीवन, नानक सुन समाए। संगत संत मलाए, हर सर निर्मल नाए, निर्मल जल नाए मैल गवाए। भये पवित शरीरा, दुर्मत मैल गई भ्रम भागा, हम मैं बिनठी पीरा। नदर प्रभु सत संगत पाई, निज कर होआ वासा, हर मंगल रस रसन रसाई। नानक नाम परगासा, अंतर रतन बीचारी, गुरमुख नाम प्यारी, हर नाम प्यारी शब्द निसतारी। अज्ञान अंधेर गवाया, ज्ञान प्रचंड बलिया घट चानन, कर मंदर सोहाया। तन मन अर्प शिंगार बनाई, हर प्रभ साचे पाया, जो प्रभ कहे सोई पर कीजै, नानक अंक समाया। हर प्रभ काज रचाया, गुरमुख व्याहन आया, व्याहन आया गुरमुख हर पाया।

आवहु संत जन हो गुण गाव है गोविंद के रे राम। गुरमुख मिल रही है कर वाज है शब्द कनेरे राम। शब्द कनेरे हर प्रभ तेरे तू करता सब थाई। ऐनस जपी सदा सालाही साच शब्द लिवलाई। अन दिन सहज रह रंग राता राम नाम रिद पूजा। नानक गुरमुख एक पछाणे अवर ना जाने दूजा। सब मह रव रहया सो प्रभ अंतर जामी राम। गुर शब्द रवै रव रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम। प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी कट कट रवया सोई। गुरमत सच पाई सहज समाई तिस बिन अवर ना कोई। सहजे गुण गावा जे प्रभ पावा आपे लय मलाए। नानक सो प्रभ शब्दे जापे अहनस नाम त्याए। एहो जगो दुत्तर मनमुख पार न पाई राम। अंतरे हों मैं ममता काम क्रोध चतुराई राम। अंतर चतुराई थाए ना पाई बिरथा जन्म गवाया। जम मग दुख पावे चूटा खावे अंत गया पछताया। बिन नावे को बेली नाही पुत कटंब सुत पाई।

राम सतगुर पाए चलो हो जीवत्या इव मरिया राम जीवत्या मरिया पौ जल तरिया गुरमुख नाम समावै पूरा पुरख पाया बड़ भागी सच नाम लिव लावै मत परगास भई मन मानिया राम नाम वडियाई नानक प्रभ पाया शब्द मलाया।

प्रवत्याया जिन प्रवत्याया तिन सुख पाया वडभागी दर्शन पाई है थियो नमाणा सद कुरबाणा सगला आप मिटाई है ओह धन भाग सुदा जिन प्रभ लद्दा हम तिस पह आप विचाया नानक दीन सरन सुख सागर राख लाज अपनाया सूही महला पंजवां हर चरण कमल की टेक सतगुरु दित्ती तुस कै बलराम जीओ हर अमृत भरे भंडार सब किश है घर तिस कै बलराम जीओ बाबुल मेरा वड समरथा करन कारण प्रभारा जिस सिमरत दुख कोई न लागे भौजल पार उतारा आदि जगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा नानक नाम।

निर्जनहारा जिसते खाली कोई नाहीं, ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मिल मंगल गाया, दिन रहन आस तुम्हारी, सफल दर्श भेटिया गुरपूरा, नानक सद बलिहारी। संभलिया सच थान मान महत, सच पाया बलराम जियो, सतगुर मिलिया दयाल, गुण अविनाशी गाया बलराम जियो। गुण गोविंद गाओ नित नित,

नासी रहस उपजै मन घना मन तन निर्मल देख दर्शन नाम प्रभ का मुख भणा होए रेण साधु प्रभ आराधु अपने प्रभ पावा बिनवंत नानक दया धारहु सदा हर गुण गावा गुर मिल सागर तरिया हर चरण जपत निस तरिया हर चरण त्याए सब फल पाए मिटे आवन जाना पाए भगत सुपाए हर जप अपने प्रभ पावा जप एक अलख अपार पूर्ण तिस बिना नहीं।

अमृत दृष्ट निमुख प्रभ जीव सर्व रंग रस मान चरण सरनी दास दासी मन मौल तन हरिया नानक ठाक।

वन्या तू पर्वत मेरा ओला राम हौ बल जाई लख लख लख बरिया जिन भ्रम परदा खोला राम मिटे अंधारे तजे बिकारी ठाकुर सिउ मन माना प्रभ जी पाणी पई निकाणी सफल जन्म परवाना पई अमोली पारा तोली मुकत जुगत दर खुला कहो नानक हौ निरपो होई सो प्रभ मेरा ओला। सूही महला पंजवा साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा तिस बिन अवर न जाना राम मात पिता भाई सुत बंदप जी प्राण मन पाणा राम जियो पिंड सब तिसका दिया सर्ब गुणा पर पूरे अंतर जामी सो प्रभ मेरा सर्ब रहे पर पूरे ताकी सरन सर्ब सुख पाए हुए सर्ब कल्याण सदा सदा प्रभ कौ बलिहारे नानक सद कुर्बाना ऐसा गुर वड भागी पाईए जित मिले प्रभ जापै राम जन्म जन्म के किल विख उतर है हर संत धूड़ी नित नापै राम हर धूड़ी नाइए प्रभु त्याईए बहुड़ जोन ना आईए गुर चरणी लागे भ्रम पौ भागे मन चिंदिया फल पाईए हर गुण नित गाए नाम त्याई।

आया हर पूरन कृपा तारी सफल जन्म हुआ पौ भागा हर भेटिया एक मरारी जिसका साथ नहीं मेल लिया ज्योति ज्योत समाया नानक नाम निरंजन जपिए मिल सतगुर सुख पाया गाओ मंगलो नित हर जनो।

आया सगल मनोरथ पाई शांत सहज आनंद कनेरे गुर चरणी मन लाए पूर रहया घट घट अबनासी थान थनंतर साई कहो नानक कार्य सगले पूरे गुर चरणी।

हर गुण सुनिए है अबलासी राम। सुन सुन एहो मन निर्मल हुआ, कटिए काल की फांसी राम। कटिए जम फांसी सिमर अबनासी, सगल मंगल सुगयाना। हर हर जप जपिए दिन राती, लागे सहज ध्याना। कलमल दुख जारे प्रभु चितारे, मन की दुर्मत नासी। कहो नानक प्रभु कृपा की जय, हर गुण सुनिए अवनासी।

मार्ग राम पवजल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे महाविकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे मन बांचत फल पाए सगले कुदरत कीम अपारग कहो नानक प्रभ कृपा की जय मन सदा चले तेरे मार्ग एहो वर एहा वडियाई एहो तन हुए बडभागा राम एहो रंग एहो रस भोगा हर चरणी मन लागा राम मन लागा चरणी प्रभ की सरणी करन कारण गोपाला सब किछ तेरा तू प्रभ मेरा मेरे ठाकुर दीन दयाला मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर संत संग मन जागा तहो

तर्क सोहावी ताल सोहावा विच अमृत जल छाया राम अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया सगल मनोरथ पूरे जय जयकार पया जागे अंतर लाथे सगल विसूरे पूर्ण पुरखा चुत अबनासी जस वेद पराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम त्याया नवनिध सिद्ध रिद दीने करते तोट न आवै काई राम खात खर्चत बिलशत सुख पाया करते की दात सवाई राम दात सवाई न खुट न जाई अंतर जामी पाया कोट बिगन सगले उठ नाठे दुख ना नेड़े आया शांत सहज आनंद कनेरे बिनसी भूख सबाई नानक गुण गावह स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम जिसका कार्य तिन्ही किया मानस क्या वेचारा राम भगत सोहन हर के गुण गावह सदा करह जयकारा राम गुण गाए गोविंद आनंद उपजे साध संगत संग बनी जिन उद्म किया ताल केरा तिसकी उपमा क्या गनी अठ सत तीरथ पुन किरिया महानिर्मल चारा पतत पावन बिरद स्वामी नानक शब्द अधारा।

दान की जय बिसर नाही एक खिनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाइय अन दिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तन अमृत पीजै दिनवंत नानक इच पुन्नी पेख दर्शन जीजै राग सूही महला पंजवां संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिट

अवगण को नाच तारी, पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं पन्ने काली, कट कट वासी सर्ब नवासी, नेरा ही ते नेरा, नानक दास सदा सरनागत, हर अमृत सज्जन मेरा, हौ बिस्म भई जी, हर दर्शन देख अपारा, मेरा सुंदर स्वामी जी, हौ चरण कमल पग शारा, प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा, तिस जे वड़े अवर ना कोई, आदि अंत मद प्रभ रविया, जल कल मही अल सोई, चरण कमल जप सागर तरिया, पव जल

प्राण अधारु गुर सतगुर कहे आजी साचा अगम बीचारु मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख नाथे सहज सुख आनंद कनेरे हौ मैं बिनठी गाठे सब कै मद सब हूं ते बाहर राग दुख ते न्यारू नानक दास गोविंद सरनाई हर प्रीतम मने सधारू मैं खोजत खोजत जी हर निश्चल सो कर पाया सब आत्रो डिथे जियो तां चरण कमल चित लाया प्रभ अवनासी हौं तिसकी दासी मरै न आवै जाए धर्म अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छ पुजाए श्रुत सिमरत गुण गावह करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक सरन कृपा निज स्वामी वड भागी हर हर गाया।

लाल हुआ रसना रति गुण सार सदा सुहागण शब्द मन पै पाई करे सिंगार नानक करमी महल पाया।

0: हुआ नानक सो सलाही है जिन कारण किया पौड़ी सच ध्यान से सच्चे
1: गुर शब्द विचारी
0: हम मैं बाहर मन निर्मला हर नाम पुरतारी कोठे मंडप माड़िया लग पए गावारी जिनकी ये तिसह ना जाननी मन मुख गोबारी जिस बजाए सो बुझसी सच्चिया
1: क्या जंत विचारी।
0: श्लोक महला तीजा काम तो शिंगार कर जा पहला कंत मनाए मत से जय

पुरख सजान गुर प्रसादी सेवी सच शब्द निशान पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान अगम अगोचर अलख है गुरमुख हर जान।

तीर्थी मन खोटे तन चोर एक भाव लथी नातिया दोए भा चढ़ी अस होर बाहर धोती तू मड़ी अंदर वेसने कोर साध भले अनातिया चोर से चोरा चोर पौड़ी आपे हुक्म चलाएंदा जग तंदे लाया एक आपे ही आप लायन गुरते सुख पाया दह दिस इहो मन धामदा गुर ठाक रहाया नावैनू सब लोच दी गुरमति पाया तुर लिखिया मेट न सकी है जो हर लिख पाया।

निशान नानक नाम लाहा परवान घर आए बजी वधाई सच नाम की मिली वड्याई महला पहला राती होवन कालिया सोपेदा सेवन देहु बग्गा तपै घणा कालिया काले वन अंधे अकली बाहरे मूर्ख अंध ज्ञान नानक नदरी बाहरे कबह ना पावह मान पौड़ी काया कोटर चाहया हर सच्चै आपे एक दूजे भाए खुआयन होमै विच व्यापे यो मानस जन्म दलंब सा मनमुख संतापे जिस आप बुझाए सो बुझसी जिस सतगुर थापे सब जग

मत दिन पी जाए, भवर गए बग बैठे आए रहाव। काकै करवै रह ना पानी, हंस चलिया काया कुमलानी। कुआर कन्या जैसे करत शिंगारा, क्यों रलिया मान बाज पतारा। काग उडावत भुजा पिरानी, कह कबीर ए कथा सिरानी। सूही कबीर जियो हमल सरानो लेखा देना, आए कठन दूत जम लेना। क्या तै खटिया कहां गवाया, चलो सताप दीवान बुलाया। चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फरमान दरगाह का आया रहाव। करो अरदास गाम किश बाकी, लेओ नबेर आज की राती। किस पी खर्च तुम्हारा सारो, सुबह निवाज सराय गजारो। साध संग जाको हर रंग लागा, तन तन सो जन पुरख सुभागा। ईत ऊत जन सदा सुहेले, जन्म पदार्थ जीत अमोले। जागत सोया जन्म गवाया, माल धन जोरिया भया पराया। कहो कबीर तेई नर भूले, खसम बसार माटी संग रूले। सूही कबीर जियो ललित, थाके नैन श्रवण सुन थाके। थाकी सुंदर काया, जरा हाक दी सब मत थाकी। एक ना थाकस माया।

परे वहो जब लग घट मह सासा जे घट जाए ता भाव ना जासी हर के चरण निवासा जिस कौ शब्द बसावे अंतर चूकै तिसह प्यासा हुक्म बूझै चौपड़ खेलै मन जिन ताले पासा जो जन जान भजह अवगत कौ तिनका कछु ना नासा कहो कबीर ते जन कबो ना हारह ताल जो जान पासा सूही ललत कबीर जियो एक कोट पंच सिकदार।

सह की सार सुहागण जाने, तज अभमान सुख रलिया मान, तन मन दे न अंतर राखै, अवरा देख न सुने अपाखै, सो कत जाने पीर पराई, जां कै अंतर दर्द ना पाई, रहाउ दुखी दुहागण दोए पख हीनी, जिन नाहा निरंतर भगत ना कीनी, पुरसलात का पंथ दुहेला, संग न साथी गमन अकेला, दुखिया दर्द वंद दर आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया, कह रवदास सरन प्रभ तेरी, ज्यों जान हो त्यों कर गत मेरी, सूही जो दिन आवह सो दिन जाही, करना कूच रहन फिर नाही, संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना, क्या तू सोया जाग आना, तै जीवन जग सच कर जाना, रहाउ जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावै, सब घट भीतर हाट चलावै।

सोई, एक करी फुन रहन ना होई। इहु तन ऐसा जैसे कास की टाटी, जल गयो कहास रल गयो माटी। रहाव भाई बंद कटंब सहेरा, वे पी लागे काट सवेरा। घर की नार उरह तन लागी, ओह तो भूत भूत कर भागी। कह रवदास सबे जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग सूही बाणी शेख फरीद जी की। तप तप लोहे लोहे हाथ मरोरो, बावल हुई सो सहो लोरो। तै सह मन मह किया रोस, मुझे अवगन सह नाही दोस। तै साहिब की मैं सार ना जानी, जोबन खोए पाछे पछतानी। रहाओ काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हों बिरह जाली। बिरह बहून कतह सुख पाई।

ललत बेड़ा बंद ना सक्यो बंधन की वेला पर सरवर जब उछले तब तरन दुहेला हाथ ना लाए कुसुम्बड़े जल जासी ढोला।

मूर्ख कहन ना जाई, तेरे गुण गावा दे बुझाई, जैसे सच मैं रहूं रजाई रहाऊ, जो किश होआ सब किश तुझते, तेरी सब असनाई।

तन ताई भगत हीन नानक जे होएगा ता खसमै नाओ ना जाई। बिलावल महला पहला मन मंदर तन वेस कलंदर घट ही तीर्थ नावा एक शब्द मेरा प्राण बस्त है बहुहर जन्म ना आवा।

रहाउ अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करहु हमारी जल थल मही अल भरपुर लीना घट घट जोत तुम्हारी सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदर छावा तेरे तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे जी जंत सब सरन तुम्हारी सर्ब चिंत तुद पासी

अलख अपेओ रहाओ, माया मोहतर कटी नार, पूंडी कामन कामन यार, राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चानन अंधियार, चख छोड़ी सहसा नहीं कोई, बाप दिसै वे जात ना हुए, एक एक नाही पौ कोई, करता करे करावे सोए, शब्द मोए मन मन ते मारिया, थाक रहे मन साचे तारिया, अवर न सूजे गुर को वारिया, नानक नाम रते निसतारिया, बिलावल महला पहला, गुरबचनी मन सहज ध्यानी, हर कै रंग रत्ता मन मानी, मन मुख परम भुले बौरानी, हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछानी, बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर बिन जियरा रह ना सके, छिन सत गुर बूझ बुझाई रहा, मेरा प्रभ बिसरे हो मरो दुखाली, सास ग्रास जपो अपने हर पाली, सद बैरागन हर नाम निहाली, अब जाने गुरमुख हर नाली, अकथ कथा कहिए गुर पाए, प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए, बिन गुर करनी क्या कार कमाए, हों मैं मेत चले गुर शब्द समाए, मनमुख विछड़े खोटी रास, गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा धारी दासन दास, जन नानक हर नाम धन रास, बिलावल महला तीजा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़े अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कतंब सहत सियों, जित हुण खसम ना पाया, पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवे, पहला जन्म गवाया, दूजा भाऊ ना देई लिव लागण, जिन हर के चरण वसारी।

जंत विचारी मुक्त बंद सब तुझ ते होए ऐसा आख बखाणी गुरमुख हो ऐसो मुक्त कही है मनमुख बंद विचारी सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रह हर नाली तिनकी गहन गत कही ना जाई सच्चे आप सुवारी परम पलाणी से मनमुख कही है ना उरवार ना पारी जिसनो नदर करे सोई जन पाई गुर का शब्द संभाली हर जन माया माहे निस्तारी नानक भाग हुए जिस मस्तक काल है मार बदारी बलावल महला तीजा अतुल क्यों तुल।

गुर प्रसाद वस्से मन आई, ताको जाने दुबदा जाय रहाउ। आप सराप कसवट्टी लाय, आपे परखे आप चलाय, आपे तोले पूरा होए,

लाई चूकै मन अभमाना कहत सुनत सबे सुख पावे है मानत पाहे निदाना बलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित घर बलावल गुर शब्द सुहाए मंगल नारी गावे आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए हौ तिन बलिहारै जिन हर मन वसाए हर जन को मिलिया सुख पाइए हर गुण गावे सहज सुपाई रहाउ सदा रंग राते तेरे चाय हर जीव आप वसे मन आए आपे सोभा सद ही पाई गुरमुख मेले मेल मलाई गुरमुख राते शब्द रंगाई निज कर वासा हर गुण गाई रंग चलूले हर रस पाई एहो रंग कदे न उतरै साच समाई अंतर शब्द मिटिया अज्ञान अंधेरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा जो सच राते तिन बहुड़ ना फेरा नानक नाम दृढ़ाए पूरा गुर मेरा बलावल महला तीजा पूरे गुर ते वडियाई पाई अचिंत नाम वस्या मन आई हो मैं माया शब्द जलाई दर साचै गुर ते सोभा पाई जगदीश सेवो मैं अवर न काजा अन दिन आनंद हुए मन मेरे गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाउ मन की प्रतीत मन ते पाई पूरे गुर ते शब्द बुझाई जीवन मरन को समसर वेखै बहुड़ ना मरे ना जम पेखै घर ही मैं सब कोट निदान सतगुर दिखाए गया अभमान सद ही लागा सहज ध्यान अन दिन गावे एको नाम इस जुग मह वडियाई पाई पूरे गुर ते नाम ते आई जह देखा तह रहया समाई।

लाया, नानक त्रिशन बुझी मन तन सुख पाया, राग बलावल महला चौथा घर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, उदम मत प्रभ अंतर जामी, ज्यों प्रेरे त्यों करना, ज्यों नटुआ तंत बजाए तंती, ज्यों वाजह जंत जना, जप मन राम नाम रसना, मस्तक लिखत लिखे गुर पाया, हर हृदय हर बसना रहाउ, माया ग्रस्त भ्रमत है प्राणी, रख ले वह जन अपना, ज्यों प्रहलाद हर नाकस ग्रस्यो, हर राख्यो हर सरना, कवन कवन की गत मित कही है, हर किए पतत पवन्ना, ओह ढोए ढोर हाथ चम चमरे, हर उदर्यो परयो सरना।

हम पापी राख पपना हर दासन दास दास हम करियो जन नानक दास दसन्ना बलावल महला चौथा हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान मति शरणागत पुरख अजन्मा कर कृपा रख लेवो मेरे ठाकुर हम पात्र हीन अकर्मा मेरे मन भज राम नाम रामा गुरमत हर रस पाईऐ होर त्यागो निफल कामा रहाउ हर जन सेवक से हर तारी हम निर्गुण राख उपमा तुझ बिन अवर ना कोई मेरे ठाकुर हर जपिया वड्डे कर्मा नाम हीन त्रिग जीवते तिन वड दुख सहमा ओए फिर जोन पवाई है मंद भागी मूड अकर्मा हर जन नाम आधार है तुर पूर्व लिखे वड कर्मा गुर सत गुर नाम दरड़ाया जन नानक सफल जनम्मा बलावल महला चौथा हमरा चित लुभत मोहे बिखिया बहु दुर्मत मैल परा तुमरी सेवा करना सकह प्रभ हम क्यों कर मुग्ध तरा मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा जानी ऊपर कृपा प्रवतारी मिल सतगुर पार परा रहाउ हमरे पिता ठाकुर प्रभ स्वामी हर देहो मत्ती जस करा तुमरे संग लगे से उदरे ज्यों संग काष्ट लोहो तरा साकत नर होछी मत मद्दम जिन हर हर सेव ना करा ते नर भागहीन दोहचारी होए जन्म मोए फिर मरा जिनको तुम हर मेलो स्वामी ते नाए संतोख गुर सरा दुर्मत मैल गई हर भजिया जन नानक पार परा बलावल महला चौथा आवहु संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर कथा करहु हर हर नाम बोहित है कल युग खेवट गुर शब्द तरहु मेरे मन हर गुण हर उच्चरहु मस्तक लिखत लिखे गुण गाय मिल संगत पार परहु रहाउ काया नगर मह राम रासी उत्तम क्यों पाईऐ उपदेश जन करहु सतगुर सेव सफल हर दर्शन मिले अमृत हर रस पीयो हर हर नाम अमृत हर मीठा हर संतोह चाख दिखो गुरमत हर रस मीठा लागा तिन बिसरे सब बिख रसो राम नाम रस राम रसायन हर सेव हो संत जन हो चार पदार्थ चारे पाए गुरमत नानक हर भजो हो बलावल महला चौथा खत्री ब्राह्मण सूद वैस को जापै हर मंत्र जपैनी गुर सत गुर पार ब्रह्म कर पूजो हो नित सेव हो दिन सब रैनी हर जन देखो सत गुर नैनी जो इच्छो हो सोई फल पाव हो हर बोलो हो गुरमत बैनी रहाव अनक उपाव चित भी यह बहु तेरे सा हुऐ जे बात हुऐनी अपना भला सब कोई बांछै सो करै जे मेरा चेतना चेतैनी मन की मत त्याग हो हर जन एहा बात कठैनी अन दिन हर हर नाम त्याग हो गुर सत गुर की मत लैनी मत समत तेरे वस स्वामी हम जंत तू पुरख जंतैनी जन नानक के प्रभ करते स्वामी।

हर हर नाम गोबिंदे वडभागी गुर सतगुर पाया गुण गाई परमानंदे रहाओ साकत मूड माया के बदक विच माया फिर है फिरंदे तृष्णा जलत किरत के बांदे ज्यो तेली बल्द पवंदे गुरमुख सेव लगे से उदरे वडभागी सेव करंदे जिन हर जपया तिन फल पाया सब तूते माया फंदे आपे ठाकुर आपे सेवक सब आपे आप गोविंदे जन नानक आपे आप सब वरतै ज्यो राखै तिवें रहंदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बलावल महला चौथा पड़ताल कर तेरवा बोलो भैया राम नाम पतत पावनु हर संत भगत तारनु हर भर पुरे रहया जल थले राम नाम नित गाइया हर दुख बसारनु रहाओ हर किया है सफल जन्म हमारा हर जपया हर दुख बसारन हारा गुर भेटिया है मुक्त दाता हर की हमारी सफल जाता मिल संगती गुण गावनु मन राम नाम कर आसा पाओ दूजा बिनस बनासा विच आसा हुए निरासी सो जन मिलिया हर पासी कोई राम नाम गुण गावनु जन नानक तिस पग लावनु राग बलावल महला पंजवा चौपदी घर पहला

कर कृपा मोहि मार्ग पावहु साध संगत कै अंचल लावहु क्यों तरिये बिख्या संसार सतगुरु बोहित पावे पार रहाउ पवन किलारी माया दे हर के भगत सदा थिर से हरख सोग ते रह निरारा सिर ऊपर आप गुरु रखवारा पाया वेड़ माया सर्ब पोयंगा हम पचे दीपक देख पतंगा सगल सिंगार करे नहीं पावे जा हुए कृपाल ता गुरु मलावे हों फिरो उदासी मैं एक रतन दसाया निर्मूलक हीरा मिले ना उपाया हर का मंदिर तिस महलाल गुर खोलिया पड़ता देख पई निहाल जिन चा

पंजवा सर्व कल्याण किए गुरुदेव सेवक अपनी लायो सेव विघ्न ना लागे जप अलख अपेव तरत पनीत भई गुण गाय दुर्त गया हर नाम त्याय रहाव सबनी थाई रवे आप आद जगाद जाका वड प्रताप गुर प्रसाद ना हुए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न हुए सब थाई बूठे सब सुख पाए सतगुर तूठे पार ब्रह्म प्रभ भय रखवाली जितै कितै दिसह नाली नानक दास खसम प्रतपाली बिलावल महला पंजवां सुख निधान प्रीतम प्रभ मेरे अगणत गुण।

गए पूरे कर्म कमावा। नानक की बेनती स्वामी तेरे जन देखन पावा। वड भागी से कांडी है प्यारी संत संगत जिन्ना वासु। अमृत नाम अराधी है निर्मल मन हुए परगासु। जन्म मरण दुख काटी है प्यारी चूकै जम की कानी। तिना प्राप्त दर्शन नानक जो प्रभ अपने पाणी। पूछ अपार बे अंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे। गावते उधर है सुनते उधर है बिनस है पाप कनेरे। पशु परेत मुग्ध कौ तारे पाहन पार उतारे। नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहारे। बलावल महला पंजवा विखे बन फीका त्यागरी सखिए। नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली। सुखी ना होवत जियो मान महत ना सकते ही काई। साधा दासी थियो नानक से दर सोभावंते जो प्रभ अपने कियो। हर चंदौरी चित भ्रम सखिए मृग तृष्णा द्रुम छाया। चंचल संगना चालती सखिए अंत तज जावत माया। रस भोगण अत रूप रस माते इन संग सूख ना पाया। धन धन हर साध जन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया। जाए बसो वड भागनी सखिए संता संग समाइए। तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापै चरण कमल लिव लाइए। तह जन्म ना मरण ना आवन जाना निश्चल सरनी पाइए। प्रेम बशोहो ना मोह ब्यापै नानक हर एक त्याईए। दृष्ट धार मन बेदया प्यारी रतड़े सहज सुपाए। सेज सुहावी संग मिल प्रीतम आनंद मंगल गुण गाए। सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच्छ पजाए। नानक अचरज अचरज स्यों मिलिया

आप ही जुगता, नानक के प्रभ सद ही मुक्ता। बलावल महला पंजवा, आप उपावने आप सधरना, आप करावन दोष न लेना, आपन बचन आप ही करना, आपन विभव आप ही जरना, रहाऊ आप ही मस्त आप ही बोलना, आप ही अशालना जाई शलना, आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप अलिपना, आपे अवगत आप संग रचना। कहो नानक प्रभ के सब जचना, बलावल महला पंजवा, भूले मार्ग जिने बताया, ऐसा गुरु वड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारी, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारी। रहाउ काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म फुन मुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, अग्न सागर बूढ़त संसारा, नानक बाहा पकर सतगुर निस्तारा। बलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पौ सब अपना, कमल सो मत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रभ मांगन, तुम पेखत सोबा मेरे आंगन। रहाउ अनक जुगत कर बहुत बिचारों, साध संग इस मन है उधारों, मत बुद्ध सुत नाही चतराई, ता मिलिए जा लय मलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया। कहो नानक सफल सो आया, बलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ न माया, साध संग सब दुख मिटा।

बहु तपत व्यापिया शीतल भये हर हर जस जापिया कोट जतन संतोख ना पाया मन त्रिपतान।

मिलै निस्तरिया बिलावल महला पंजवा गुर का शब्द हृदय महचीना सगल मनोरथ पूर्ण आसीना संत जना का मुख उज्जल कीना कर कृपा अपना।

तुम ही जानो अपनी पूजा, आप हो कछु ना होवत पाई, जिस प्रभ देवै सो नाम पाई। कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण नदान प्रभ तिन ही पाया। बिलावल महला पंजवा, मात गर्भ मह हाथ दे राखिया, हर रस छोड़ बिख्या फल चाखिया। पज गोविंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए संघारे मूड़े, तब तन बिन सजाए बेहाल रहाव। तन मन धन अपना कर थापिया, करन हार एक निमख ना जापिया। महा मोह अंध कूप परिया, पार ब्रह्म माया पटल बिसरिया। वड्डे भाग प्रभ कीर्तन गाया, संत संग नानक प्रभ पाया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत बंधप पाई, नानक होआ पार ब्रह्म सहाई। सुख सहज आनंद घणे, गुरपूरा पूरी जाकी बाणी। अनक गुणा जाके जाहि ना गणे रहाव। सगल सरंजाम करे प्रभ आपी, भय मनोरथ सो प्रभ जापी। अर्थ धर्म काम मोख का दाता, पूरी भई सिमर सिमर बेधाता। साध संग नानक रंग माणिया, कर आया पूरे गुर आणिया। बिलावल महला पंजवा, सर्व निधान पूर्ण गुरदेव रहाव। हर हर नाम जपत नर जीवे, मर खवार साख नर थीवे। राम नाम होआ रखवारा, चख मारो साकत बेचारा। निंदा कर कर पचह कनेरे, मृतक फास गले सिर पैरी। कहो नानक जपह जन नाम, ताके निकट न आवे जाम। राग बुलावल महला पंजवा, कर चौथा दुपदी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कवन संजोग मिलो प्रभ अपने। पल पल निमख सदा हर जपने, चरण कमल प्रभ के नित ध्यावो। कमन सो मत जित प्रीतम पावो रहाओ। ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, हर नानक बिसर न काहू बेरे। बिलावल महला पंजवा, चरण कमल प्रभ हृदय त्याय। रोग गए सगले सुख पाए, गुर दुख काटिया दीनो दान। सफल जन्म जीवन परवान रहाव। अकथ कथा अमृत प्रभ बाणी, कहो नानक जप जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवा, शांत पाई गुर सतगुर पूरे। सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाव। ताप पाप संताप बनासे, हर सिमरत किल विख सब नासे। आनंद करहु मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मेरी पैज सुवारी। बिलावल महला पंजवा, ममता मोह त्रोह मद माता। बंधन बांधिया अत बिकराल, दिन दिन सिजत बकार करत औद। फाही फाथा जम कै जाल, तेरी शरण प्रभ दीन दयाला। महा बिखम सागर अत भारी, उधरहु साधु संगर वाला रहाव। प्रभ सुखदाते समरथ स्वामी, जियो पिंड सब तुमरा माल। भ्रम के बंधन काटहु परमेश्वर, नानक के प्रभ सदा कृपाल। बिलावल महला पंजवा, सगल आनंद किया परमेश्वर। अपना बिरद समारिया, साध जना हुए कृपाला। बिगसे सब परवारिया, कारज सतगुर आप सुवारिया। वड्डी आर जा हर गोबिंद की, सुख मंगल कल्याण बिचारिया रहाव। वण तेण त्रे भवन हरिया होए, सगले जी साधारिया। मन इच्छे नानक फल पाए, पूर्ण इच्छ पुजारिया। बिलावल महला पंजवा, जिस ऊपर होवत दयाल। हर सिमरत काटे सो काल रहाव। साध संग भजिए गोपाल, गुण गावत टूटे जम जाल। आपे सतगुर आपे प्रतपाल,
नानक जाचै साधरवाल बलावल महला पंजवा मन मै सिंचहो हर हर नाम अन दिन कीर्तन हर गुण गा

नानक जाके निर्मल भाग, हर चरणी ताका मन लाग। बलावल महला पंजवा, रोग गया प्रब आप गवाया, नींद पई सुख सहज घर आया। रहाउ राज राज भोजन खावो मेरे भाई, अमृत नाम हृदय माहि त्याई। नानक गुरु

गुर अमर कराया, सो जानै जिन चाखिया हर नाम अमोला। कीमत कही ना जाइए क्या कह मुख बोला, सफल दर्श तेरा पार ब्रह्म गुण निद तेरी बाणी। पावो तूर तेरे दास की नानक कुरबाणी। बलावल महला पंजवा, राख हो अपनी सरन प्रभ मोहे कृपा तारी। सेवा कछु ना जानू नीच मूरखारी, मान करो तुदे उपरे मेरे प्रीतम प्यारे। हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारी। रहाओ हम अवगन करह असंख नीत तुम निर्गुण दातारे। दासी संगत प्रभु त्याग हे कर्म हमारे। तुम देव हो सब किश दया तार हम अकिरत किनारे। लाग परे तेरे दान स्यों नह चित खसमारे। तुझ ते बाहर किश नहीं भव काटन हारे। कहो नानक सरन दयाल गुर लेहो मुगद उधारे। बलावल महला पंजवा, दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याईए। जित सेवे सुख होए कना मन सोई गाइए। कहिए काए प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी। सब अवगुण हमा रहाओ ज्यों तुम राख हो त्यों रहा। अवर नहीं चारा ने धरिया धर तेरिया एक नाम आधारा। जो तुम करहो सोई भला मन लेता मुक्ता। सगल समगरी तेरिया सब तेरी जुगता। चरण पखारो कर सेवा जे ठाकुर पावै। हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावे। बलावल महला पंजवा, मृत हसै श्री उपरे पशुआ नहीं बूझै। बाद साध अहंकार मह मरना नहीं सूझै। सतगुर से ओह अपना काहे फिर हो अभागे। देख कसुम्बा रंगुला काहे भूल लागे। रहाओ कर कर पाप दर्ब किया वर्तन कह ताई। माटी स्यो माटी रली नांगा उठ जाई। जा कह किए श्रम करे ते बैर बरोधी। अंतकाल भज जाहेंगे काहे जलो क्रोधी। दास रेन सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा। कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की सरना। बलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्भ कीता। अंधले त्रे पवन सूजिया गुर पेट पनीता। महमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पे कीता। रहा ऐसी भगत गोविंद की पीत हस्ती जीता। जो जो कीनो अपनो तिस अपै दान दीता। सिंह बलाई होए गयो त्रिण मेर दखीता। श्रम करते दम आड़ को ते गनी तनीता।

मिलहु दयाल। निस्बासर मन आनंद होत चितवत कृपाल रहाव। जगत उदाहरण साध प्रभ इन लागो पाल। मोको दीजै दान प्रभु संतन पागराल। उकत सियानप कछ नहीं नाही कछ काल। परम पै राखो मोहते।

कह जमदूत छड जाए तुमरी कृपा ते छूती है बिनसै अहमेव सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव रहाऊ खोजत खोजत खोजिया नामै बिनकूर जीवन सुख सब साध संग प्रभ मनसा पूर जित जित लाभ हो तित तित लग है स्यानप सब जाली जात कात तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली सब किश तुम ते मांगना वड भागी पाए नानक की अरदास प्रभ जीवा गुन गाए बलावन महला पंजवा साध संगत कै बास बै कल मल सब नसना प्रभ सेती रंग रातिया ताते गर्भ ना ग्रसना नाम कहत गोबिंद का सूची पई रसना मन तन निर्मल हुई है गुर का जप जपना रहा हर रस चाखत त्रापिया मन रस लै हसना बुद्ध प्रगास प्रगट पई उल्ट कमल बिगसना शीतल शांत संतोख होए सब बूझी तृष्णा दह दिस धावत मिट गए निर्मल थान बसना राखन हारे राखिया पई भ्रम पसना नाम निधान नानक सुखी एक साध दर्शना बलावल महला पंजवा पानी पखा पीस दास कै तब होहे निहाल राज मिलक सिकदारियां अग्नि मह जाल संत जना का शोहरा इस चरणी लाग माया तारी शत्रपत तिन छोड़ो त्याग रहाऊ संतन का दाना रूखा सो सर्ब निदान ग्रह साकत शक्ति ही प्रकार ते बिखू समान भगत जना का लूघरा ओड नग्न ना होई साकत सिर पाओ रेशमी पहरत पत खोई साकत स्यों मुख जोरे है अद विचो टूटे हर जन की सेवा जो करे इत उत छूटे सब किश तुम ही ते होवा आप बनत बनाई दर्शन भेटत साधका नानक गुण गाई बलावल महला पंजवा सर्वनी सुनो हर हर हरे ठाकुर जस गावो संत चरण कर सीस तर हर नाम त्यावो कर कृपा दयाल प्रभ एह निध सिद्ध पावो संत जना की रेणुका लै माथे लावो रहाओ नीच ते नीच अत नीच होए कर बिनो बलावो पाव मनोवा आप त्याग संत संग समाओ सास सास नह विसरे अनकत है ना तामो सफल दर्शन गुर पेटी है मान मोह मटावो सत संतोख दया धर्म सिंगार बनावो सफल सुहागन नानका अपने प्रभ पावो बलावल महला पंजवा अटल बचन साधु जना सब मह प्रगटाया जिस जन होवा साध संग तिस भेटै हर राया एह प्रतीत गोविंद की जप हर सुख पाया अनक बातां सब कर रहे गुर घर लै आया रहाउ सरन परे की राखता नाही सहसाया कर्म भूम हर नाम बोए अवसर दुलभाया अंतर जामी आप प्रभ सब करे कराया पतत पनीत घने करे ठाकुर बिरदाया मत भूलो मनुख जन माया परमाया नानक तिस पत राखसी जो प्रभ पहराया बलावल महला पंजवा माटी ते जिन साजिया कर दुर्लभ दे अनक सिदर मन मैं ढके निर्मल दृष्टि क्यों बिसरे प्रभ मने ते जिसके गुण ए प्रभ ताज रचे जे आनस्यो सोरलिय खे रहाउ सिमरहो सिमरहो सास सास मत बिलम करे छोड़ पर पंच प्रभ स्यो रचो ताज कूड़े ने जिन अनक एक बहुरंग किए है होसीये कर सेवा तिस पार ब्रह्म गुरते मत ले ऊचे ते ऊंचा वड्डा
सब संग बरने दास दास को दासरा नानक कर ले। बलावल महला पंजवा। एक टेक गोविंद की त्यागी अनियास सब ऊपर समरथ प्रभ पूरन गुणतास। जन का नाम आधार है प्रभ सरणी पाहे

सास सास सुमारे करनहार जो कर रहे आ साई वड्याई गुर पूरे अपदेसिया सुख खसमर जाई चिंत अंदेसा गणत ताज जन हुक्म पछाता नह बिन सह नह छोड़ जाए नानक रंग राता बिलावल महला पंजवा महा तप्त ते भई शांत परसत पाप नाठी अंड कूप मैं गलत थे काढे दे हाथे ओए हमारे साजना हम उनकी रेन जिन भेटत होवत सुखी जी दान देन रहाओ परा पूर्व ला लिखिया मिलिया अब आए बस्त संग हर साधकै।

मन नाम नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार करन कारण समरथ प्रभ हरे अगम अपार बलावल महला पंजवा सोई मलीन दीन हीन जिस प्रभ बिसराना करने हारना बूझई आप गने बिगाना दुख तदे जद विसरे सुख प्रभ चेते आई संतन कै आनंद एहो नेत हर गुण गा।

नानक परिया साध संग हर हर गुण गाओ। बलावल महला पंजवा। कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, महा मोहनी मोहया नरक की रीत। मन खुटहर तेरा नहीं बसास, तू महा उदमादा। खर का पैखर तो छुट्टै जो ऊपर लादा रहाउ। जप तप संयम तुम खंडे जम के दुख डांड, सिमर है नाही जोन दुख निरलजे पांड। हर संग सहाई महामीत तिस स्यों तेरा भेद, बीदा पंच बटवारे उपजियो महाखेद। नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस कीना, तन तन सरबस अपना प्रभ जन को दीना। बलावल महला पंजवा। उदम करत आनंद भया सिमरत सुख सार, जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, पार ब्रह्म अराधते मुख अमृत पीवा रहाउ। जी जंत सब सुख बसे सब कै मन लोच, पर उपकार नित चितवते नाही कछ पोच। धन सो थान बसंत धन जह जपिय नाम, कथा कीर्तन हर अत घना।

पंजवा खोजत खोजत मैं फिरा खोजो बन थान अशल अशेद अभेद प्रभ ऐसे भगवान कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग जागण ते सुपना भला बसिए प्रभ संग रहा वर्ण आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास रूप नारेख ना पंच तत् ठाकुर अविनाश ओह स्वरूप संतन कह विरले जोगीसर कर कृपा जा कहो मिले तन तन ते ईश्वर सो अंतर सो बाहरे बिनसे तह परमा नानक तिस प्रभ भेटिया जाके पूर्ण कर्मा बलावल महला पंजवा जी जंत सो प्रसन्न भय देख प्रभ परताप करज उतारिया सतगुरु करिया हर आप खात खर्चत निबहत रह गुर शब्द अखूट पूर्ण भई समग्री कबहू नहीं टूट रहा साध संग आराधना हर निद अपार धर्म अर्थ अर काम मूख देते नहीं बार भगत आराध है एक रंग गोविंद गोपाल राम नाम धन।

रह राखिया अपनी करमया रहाउ बाह पकड़ प्रभ काढ़िया कीना अपनया सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरभया बलावल महला पंजवां कर तर मस्तक था।

प्रभ राखता भगतन की आन, जो जो चितव है साध जन सो लेता मान रहाओ। शरण परे चरनार बिन जन प्रभ के प्राण, सहज सुपाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बलावल महला पंजवा चरण कमल का आसरा, दीनो प्रभ आप प्रभ शरणागत जन परे ता का सद प्रताप। राखनहार अपार प्रभ ताकी निर्मल सेव, राम राज राम दासपुर कीने गुरदेव रहाओ। सदा सदा हर त्याई है किस बिघन ना लागे, नानक नाम सलाही है भय दुश्मन भागे। बलावल महला पंजवा मन तन प्रभ आराधी है, मिल साध समागे। उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम भागे, राम नाम जो जन जपै अन दिन सद जागे। तंत मंत नह जो हुई

राम रंग नानक सरन लागे बलावल मोहल्ला पंजवा जी जुगत वस प्रभु कै जो कह सो करना पये प्रसन्न गोपाल राय पहु किश नहीं करना दुख ना लागे कदे तुद पार ब्रह्म चितारे जम कंकर नेड़ ना आवे गुर सिख प्यारे रहाओ कर्म कारण समरथ है तिस बिन नहीं होर नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर बलावल महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ अपना नाठा दुख ठाओ विश्राम पाए मिल साध संग ताते बहुड़ ना ताओ बलिहारी गुरे अपने चरणन बल जाओ आनंद सुख मंगल बने देखत गुण गाओ रहाओ कथा कीर्तन राग नाद धुन एहो बनियो सुवाओ नानक प्रभ सो प्रसन्न पए बाँचत फल पाओ बलावल महला पंजवा दास तेरे की बेनती रिद कर परगास तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दुखन को नाश।

चरण कमल काया सदा प्रभ पुरख गुणतास कीर्तन नाम सिमरत रहूं जब लग घट सास रहाऊ मात पिता बंदब तू है तू सर्व निवास नानक प्रभ शरणागति जाको निर्मल जास बलावल महला पंजवा सर्व सिद्ध हर गाइए सब भला मनावे साध साध मुख ते कहे सुन दास मलावे सुख सहज कल्याण रस पूरे गुर कीन जी सगल दयाल भए हर हर नाम चीन रहाउ पूर रहेउ सर्वत्र मैं प्रभ गुणी गहीर नानक भगत आनंद मैं पेख प्रभ की तीर बलावल महला पंजवां अरदास सुनी दातार प्रभ होए कृपाल राख लिया अपना सेव को मुख निंदक शार तुझे ना जो है को मीत जन तू गुर का दास पार ब्रह्म तू राखिया दे अपने हाथ रहाओ जीयन का दाता एक है दिया नहीं होर नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर बलावल महला पंजवा मीत हमारे साजना राखे गोविंद निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद रहाओ सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव जय जय कार जगत में सफल जाकी सेव ऊच अपार अगंत हर सब जी जिस हाथ नानक प्रभ शरणागति जत कत मेरे साथ बलावल महला पंजवा गुरपुरा आराध्या होए कृपाल मार्ग संत बताया टूटे जम जाल दुख भूख संसा मिटिया गावत प्रभ नाम सहज सुख आनंद रस पूरन सब काम रहाउ जलन बुझी शीतल भए राखे प्रभ आप नानक प्रभ शरणागति जा का वड प्रताप बलावल महला पंजवा तरत सुहावी सफल थान पूर्ण भए काम पौ नाथा प्रम मिट गया रव्या नित राम साध जना कै संग बस्त सुख सहज विश्राम साई कड़ी सुलखणी सिमरत हर नाम रहाव प्रगट भए संसार मह फिरते पहनाम नानक तिस शरणागति घट घट सब जान बलावल महला पंजवा रोग मटाया आप प्रभ उपजिया सुख शांत वड प्रताप अचरज रूप हर कीनी दात गुरु गोविंद कृपा करी राख्या मेरा भाई हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाई रहाउ बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास नानक जोर गोविंद का पूरन गुणतास बलावल महला पंजवा मर मर जन्मे जिन बिसरिया जीवन का दाता पार ब्रह्म जन सेविया अन दिन रंग राता शांत सहज आनंद घना पूर्ण भई आस सुख पाया हर साध संग सिमरत गुणतास रहाओ सुन स्वामी अरदास जन

रोग मटाए जिवालियन जा कावड परताप दोख हमारे बख्शियन अपनी कल तारी मन बाचत फल दितियन नानक बलिहारी। राग बलावल महला पंजवां चौपदे दो पदे कर शेवां।

दाती मिल संगत हर गुण गाय रसना अगह अगह गुण राती नैन दर्स रंग लाए हो कृपाल दीन दुख भंजन मोहे चरण हृदय वसाई सबहु तले तले सब ऊपर ए दृष्ट दृष्टाय अभमान खोए खोए खोए खोई हौ मोको सतगुर मंत्र दरडाई अतुल अतुल अतुल नह तुलिय भगत वछल कृपाई जो जो शरण परयो।

बार दंडौत बंदना अनकबार जाओ बारे रहाओ उठत बैठत सोवत जागत एहु मन तुझह चितारे सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सारे तू मेरी ओट बाल बुद्ध धन तुम ही तुम्हें मेरे परवार है जो तुम करहो सोई भल हमरे देख नानक सुख चरनारे बलावल महला पंजवा सुनियत प्रभ तो सगल उदाहरण मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मन है बसारन रहाओ संच बिख्याले ग्राह जतीनी अमृत मन ते डारन काम क्रोध लोभ रात

पूर रही दिनस अर रात रहाउ, कर कृपा अपने प्रभ कीने, नाम अपने की कीनी दात। आठ पहर गुण गावत प्रभ के, काम क्रोध इस तन पे जात। तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन, अमृत हर रस भोजन खात। चरण सरन नानक प्रभ तेरी, कर कृपा संत संग मलात। बलावल महला पंजवा, राख लिए अपने जन आप। कर कृपा हर हर नाम दीनो, बिनस गए सब सोग संताप। रहाओ गुण गोविंद गाव हो सब हर जन, राग रतन रसना आलाप। कोट जन्म की तृष्णा निवरी, राम रसायन आत्म त्राप। चरण गहे सरन सुख दाती,

घर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर शब्द उजारो दीपा बिनसे अंधकार ते मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा रहाओ बिस्मन बिस्म पए जो पेखियो कहन ना जाए वडियाई मगन पए उहां संग माते पोत पोत लपटा।

अपर अपारा एक बस तीरन एक संपूर्ण एक है प्राण अधारा निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूचो सूचा अंत न अंता सदा बेअंता कहो नानक ऊचो ऊचा। बिलावल महला पंजवा बिन हर काम न आवत हे जां स्यो राच माच तुम लागे ओहो मोहनी महावत हे रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिनह मैं जावत हे उर्ज रहियो इंद्री रस प्रेरियो।

पड़ मह ऐठ हठीलो फूल फूल क्या पावत ही पंच दूत मूंड पर ठाटे केस गहे फेरावत ही दृष्ट न आवह अंध अज्ञानी सोए रहो मद मावत ही जाल पसार चोग बिस्थारी पंखी ज्यों फहावत ही कहो नानक बंधन काटन को मैं सतगुर पुरख त्यावत ही बिलावल महला पंजवा हर हर नाम अपार अमोली प्राण प्यारू मन है अधारू चीत चितवो जैसे पान तंबोली रहाऊ सहज समायो गुरह बतायु रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रिय मुख लागू जो वड भागो सुहाग हमारू कतो ना डोली रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली कहो नानक प्रिय रवि सुहागन अतनी की मेरी बनी खटोली बिलावल महला पंजवा गोविंद गोविंद गोविंद मई जब ते भेटे साध दयारा तब ते दुर्मत दूर पई रहाऊ पूर्ण पूर रहो संपूरन शीतल शांत दयाल दई काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तन ते होए सगल खई सत संतोख दया धर्म सोच संतन ते एहो मंत लई कहो नानक जिन मनो पछानिया किनको सगली सोज पई बिलावल महला पंजवा क्या हम जी जंत बेचारी वर्ण ना साकह एक रुमाई ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंदिरा बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई क्या कथिय किस कथन ना जाई जह जह देखा तह रहया समाई रहाओ जह महाभयान दुख जम सुनिए तह मेरे प्रभ तू है सहाई शरण परयो हर चरण गहे प्रभ गुरु नानक कौ बूझ बुझाई बिलावल महला पंजवा अगम रूप अबनासी करता पतत पवित एक निमुख जपाई है अचरज सुनियो प्राप्त भेटले संत चरण चरण मन लाई है कित विधिया कित संयम पाई है कहो सुरजन कित जुगती त्याई है रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा ओह तिसकी लई लई फुन जाई है नानक सरन सरन सुख सागर मोहे टेक तेरो एक नाई है बिलावल महला पंजवा संत सरन संत टहल करी धंद बंद अर सगल जंजारू अवर काज ते छूट परी रहाओ सूख सहज अर कनो अनंदा गुरते पायो नाम हरी ऐसो हर रस बन ना साको गुरपूरे मेरी उल्ट तरी पेखियो मोहन सब कै संगे ऊन ना काहू सगल भरी पूर्ण पूर रहो कृपा नित कहो नानक मेरी पूरी परी बिलावल महला पंजवा मन क्या कहता हौ क्या कहता जान परवीन ठाकुर प्रभ मेरे तिस आगे क्या कहता रहाउ अनबोले को तुही पछान है जो जीन मह होता रे मन काए कहां लो डह कह जो पेखत ही संग सुनता ऐसो जान भये मन आनंद आन ना बियो करता कहो नानक गुर भये

अल जावो दर्शन साधु कै जे प्रसाद हर नाम लीना कहो नानक ठाकुर परोसै कहू ना मान्यो मन सीना बलावल महला पंजवा गुरपूरै मेरी राख लई अमृत नाम हृदय मैं दीनो जन्म जन्म की मैल गई रहाओ निवरे दूत दुष्ट बैराई गुरपूरे का जपया जाप कहा करे कोई बेचारा प्रभ मेरे का बड परताप सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल रख मन माही।

जरा मरा कछ दुख न व्यापै, आगे दरगाह पूर्ण काम रहाउ। आप त्याग परियै नित सरनी, गुर ते पाइय एहो निदान। जन्म मरण की कटिय फांसी, साची दर

पंजवा अच्युत पूजा जोग गोपाल मन तन अर्प रखो हर आगै सर्व जिया का है प्रतपाल रहाउ सरन समरथ अकत सुख दाता कृपा सिंध बड़ो दयाल कंठ लाए राखै अपने को तिसनो लगे ना ताती बाल दामोदर दयाल स्वामी सर्वस संत जना धन माल नानक जाचक दर्श प्रभ मांगे संत जना की मिले रवाल बलावल महला पंजवां सिमरत नाम कोट जतन भए साध संग मिल हर गुण गाए जम दूतन को त्रास अहे रहाओ जेते पुनः चरण से कीने मन तन प्रभ के चरण गहे आवन जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे निरपौ होए भजो जगदीसै इहो पदार्थ वड भाग लहे कर कृपा पूर्ण प्रभ दाते निर्मल जस नानक दास कहे।

खसम सिर काटिया, हिन मह हुए गया है खाक। मंदा चितवत चितवत पचिया, जिन रचिया तिन दीना ताक। पुत्र मीत धन किशु ना रहो, सो छोड़ गया सब भाई साक। कहो नानक तिस प्रभ बलिहारी, जिन जन का कीनो पूर्ण वाक। बलावल महला पंजवा, पूरे गुर की पूरी सेव। आपे आप वरतै स्वामी, कार्ज रास किया गुरुदेव। रहाउ आद मद।

भास्त प्रभ दीने जगत उधार नव खंड प्रताप दुख बिन से सुख अंध प्रवेशा त्रिशन बुझे मन तन सच त्राप नाथ को नाथ सरण समरथा सगल श्रेष्ठ को माई बाप भगत वचल पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक अलाप बलावल महला पंजवा जिसते उपजिया तह पछान पार ब्रह्म परमेश्वर त्याया कुशल खेम हुए कल्याण रहाओ गुरपुरा पेट्यो बड़ भागी अंतर जामी सुगड़ सुजान हाथ दे राखे करे अपने बड़ समरथ नमाणिया को मान ब्रह्म पै बिन सगए खिन पीतर अंधकार प्रगटे चानान सास सास अराध नानक सदा सदा जाइए कुर्बान बलावल महला पंजवा दोवें थाम रखे गुरसूरे हलत पलत पार ब्रह्म

पाई। जन्म मरण के मिटे बिसूरे, भ्रम पै तरे छुटे पै जम के, घट घट एक रहया पर पूरे, नानक सरण परयो दुख भंजन, अंतर बाहर पेख हजूरे। बलावल महला पंजवा, दर्शन देखत दुख नस्ते, कभो न हो वो दृष्ट अगोचर, जी कै संग बसे रहाओ, प्रीतम प्राण आधार स्वामी, पूर रहे प्रभ अंतर जामी, क्या गुण तेरे सार समारी, सास सास प्रभ तुझे।

अनक प्रकार भोजन नित खाते मुख दंता कस खीन खया मेरी मेरी कर कर मूठो पाप करत नह परी दया महाविकार घोर दुख सागर तिसमह प्राणी गलत पया शरण परे नानक स्वामी की बहा पकर प्रभ काढ लया बिलावल महला पंजवां अपना प्रभ आया चीत दुश्मन दुष्ट रहे झख मारत कुशल भया मेरे भाई मीत रहाउ गई ब्याद अपाद सब नासी अंगीकार कियो करतार शांत सुख अर आनंद कनेरे प्रीतम नाम हृदय उरहार जियो पिंड तन रास प्रभ तेरी तू समरथ स्वामी मेरा दास अपने को राखन हारा नानक दास सदा है चेरा बिलावल महला पंजवां गोविंद सिमर हुआ कल्याण मिटी अपाद भया सुख सच।

मणि रहाउ तोरी ना टूटे शोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंच तनी दिन सरैन मन माही बस्त है तू कर कृपा प्रभे अपनी बल बल जाओ श्याम सुंदर को कथ कथा जा की बात सुनी जन नानक दासन दास कहियत है।

अपार ब्रह्म परमेश्वर ताका हिरदय धर मन ध्यान रहाउ। सिमर सिमर सिमर सुख दाता जाका किया सगल जहान। रसना रवहु एक नारायण साची दरगाह पावु मान। साधु संग परापत जाको तिन्ही पाया इहो निदान। गावो गुण कीर्तन नित स्वामी कर कृपा नानक दीजै दान। बलावल महला पंजवां राख लिए सतगुर की शरण। जय जयकार हुआ जागे अंतर पार ब्रह्म मेरु तारन तरन रहाउ। विश्वंबर पूर्ण सुख दाता सगल समगरी पोखण भरन। थान थनंतर सर्व निरंतर बल बल जाई हर के चरण। जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करन। आद जुगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं डरन। राग बलावल महला पंजवां दुपदे घर अठवां। इक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा। ईक है निर्गुण ऊग है सरगुण केल करत बिच स्वामी मेरा रहाव। नगर मैं आप बाहर थुन आपन

पतचपावन प्रभ बिरद तुम्हारु हमरे दुख हृदय मत तारु जीवन प्राण हर धन सुख तुम ही हम मैं पटल कृपा कर जारु जल बिहून मीन कत जीवन दूध बिना रहन कत बारु जन नानक प्यास।

कुशल पया गुर पूरै पूरी सब राखी पार ब्रह्म प्रभु कीनी मया रहाउ मन तन रव रहया हर प्रीतम दुख दर्द सगला मिट गया शांत सहज आनंद गुण गाए दूत दुष्ट सब हुए खया गुण अवगुण प्रभु कछ ना बिचार्यो कर कृपा अपना कर लया अतुल बढ़ाई अचुत अभनासी नानक उचरै हर की जया बलाव महला पंजोआ बिन पै भगती तरन कैसी करहु अनग्रहु पतत उदाहरण राख स्वामी आप परोसे रहाओ सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत बिख्या राता स्वान जैसी औध बिहावत अधिक महावत पाप कमावत बुढ़े ऐसी सरन दुख भंजन पुरख निरंजन साधु संगत रमन जैसे केशव कलेश नास अग खंडन नानक जीवत दर्श दिसे राग बलावल महला पंजवा।

जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ। ताजे अभिमान अरचिंत बरानी साध है शरण पाए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खाए। महामुगद अजान अज्ञानी राखे तार दए, कहो नानक गुर पूरा पिट्यो आवन जान रहे। बलाव महला पंजवा जीवों नाम सुनी, जो सो प्रसन्न पए गुर पूरे तब मेरी आस पुनी। रहाओ पीर गई बांदी मन तीरा, मोहे हो आनंद तुनी उपजे हो चाओ मिलन प्रभ प्रीतम रहन ना जाए खिनी। अनक भगत अनक जन तारी।

सहाई संतना अब चरण गहे रहाउ। आहे मन अवर ना पावे चरनावे चरनावे, उलझियो अलम करंद कमल जियो। अन रस नहीं चाहे एक हर लाहे, अन ते टूटी है रिख ते छूटी है। मन हर रस घूटी है

देखै सब सोई गुरमुख विरला बूझै कोई बिन भै पै भगत ना हुई शब्द रते सदा सुख होई ऐसा ज्ञान पदार्थ नाम गुरमुख पावस रस रस मान रहाउ ज्ञान ज्ञान कथै सब कोई कथ कथ बाद करे दुख होई कथ कहने ते रहे न कोई बिन रस राते मुक्त न होई ज्ञान ध्यान सब गुरते होई साची रहत साचा मन सोई मनमुख कथनी है पर रहत न होई नाम भूले थाओ न कोई मन माया बंदेओ सर जाल घट घट व्याप रहो बिख नाल जो आंजै सो दिसै काल कारज सीधो हृदय संभाल सो ज्ञानी जिन शब्द लिव लाई मनमुख होमै पत गवाई आपे करतै भगत कराई गुरमुख आपे दे वडियाई रैन अंधारी निर्मल ज्योत नाम बिना

को दूजा देख कहों पावे मन सोए। नानक कह अवर नहीं कोई बलावल महला पहला। मन का कहया मनसा करे इहो मन पुन पाप उच्चरे। माया मद माते तृप्त ना आवे तृप्त मुकत मन साचा पावे। तन तन कलत सब देख अभमाना।

आप न बूझे लोक बुझावे, मन का अंधा अंध कमावे, दर कर महल ठौर कैसे पावे, हर जियो सेविया अंतर जामी, घट घट अंतर जिसकी जोत समानी, किस नाल क्या चले पहनामी, साचा नाम साचा शब्द जाने, आपे आप मिले चूके अभमाने, गुरमुख नाम सदा सदा बखाने, सतगुर सेवे है दूजी दुरमत जाई, औगण काट पापा मत खाई, कंचन काया ज्योति ज्योत समाई, सतगुर मिले वड्डी वड्याई।

द्वार गुरमत मान्या मोख द्वार नानक गुरमत मान्या परवार साधार बलावल महला चौथा अष्टपदिया घर ग्यारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आपे आप खाए हों मेटे अन दिन हर रस गीत गवैया गुरमुख परचै कंचन काया निरपौ ज्योति जोत मलैया मैं हर हर नाम आधार रमैया खिन पल रह ना सको बिन नावे गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रहाओ एक गिरहो दस द्वार है जाकी अहनस तस्कर पंच चोर लगैया धर्म अर्थ सब हिर ले जावे मनमुख अंदले खबर ना पैया कंचन कोट बहु मानक भरिया जागे ज्ञान तत लिव लैया तस्कर हेरू आए लुकाने गुर कै शब्द पकड़ बंद पैया हर हर नाम पोत बोहिता खेवट शब्द गुर पार लंघैया जम जगाती नेड़ ना आवे ना को तस्कर चोर लगैया हर गुण गावे सदा दिन राती मैं हर जस कहते अंत ना लहिया गुरमुख मनुआ इकत घर आवे मिलो गोपाल निशान बजैया नैनी देख दर्श मन तृप्तै श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया सुन सुन आत्म देव है पीने रस रस राम गोपाल रवैया त्रै गुण माया मोहे व्यापे तुरिया गुण है गुरमुख लहिया एक दृष्ट सब सम कर जाने नदरी आवे सब ब्रह्म पसरिया राम नाम है जोत सबाई गुरमुख आपे लख लखैया नानक दीन दयाल भए है भगत पाए हर नाम समैया बलावल महला चौथा हर हर नाम शीतल जल त्यावहु हर चंदन वास सुगंध गंधैया मिल सत संगत परम पद पाया मैं हिरड पलास संग हर बुहिया जप जगन्नाथ जगदीश गुसैया सरल परे से जन उबरे ज्यों प्रहलाद उधार समैया रहाओ पार अठारह मह चंदन उत्तम चंदन निकट सब चंदन हुईया साकत कूड़े ऊब सुख हुए मन अभमान विछड़ दूर गईया हर गतमित करता आपे जाने सब बिद हर हर आप बनैया जिस सतगुर भेटे सो कंचन होवे जो तुर लिखिया सो मिटै ना मटैया रतन पदार्थ गुरमत पावे सागर भगत पंडार खलैया गुर चरणी एक शरदा उपजी मैं हर गुण कहते तृप्त न पैया परम बैराग नित नित हर त्याय मैं हर गुण कहते भावनी कहिया बार बार खिन खिन पल कहिए हर पार न पावे परे परैया शास्त्र वेद पुराण पकार है धर्म करहो खट कर्म दृढ़ैया मनमुख पाखंड परम विगूते लोभ लहर नाव भार बढ़ैया नाम जपहो नामे गत पावहो सिमरत शास्त्र नाम दृढ़ैया हम मैं जाए ता निर्मल होवे गुरमुख परचै परम पद पैया एहो जग वर्ण रूप सब तेरा जित लावह से कर्म कमैया नानक जंत बजाए वाजह जित पावै तित राहि चलैया बलावल महला चौथा गुरमुख अगम अगोचर त्याया हों बल बल सतगुर सत पुरखैया राम नाम मेरे प्राण वसाई सतगुर परस हर नाम समैया जान की टेक हर नाम टिकैया।

परैया, राम गुर मोहन मोहे मन लैया, हम आकल बिकल पई गुर देखे, हम लोट पोट होए पैया रहाओ, हम निरखत फिरौं सब देश दसंतर, मैं प्रभ देखन को बहुत मन चैया, मन तन काट देऊं गुरे आग्या, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखैया, कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा, हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया, मस्तक काट देऊं चरना तल, जो हर प्रभ मेले मेल मलैया, चल चल सखी हम प्रभ प्रबुद्ध है, गुण कामन कर हर प्रभ लहिया, भगत वचल ओवा को नाम कहियत है, शरण प्रभु तिस पाछे पैया, थिमा शिंगार करे प्रभ खुशियां, मन दीपक गुर ज्ञान बलैया, रस रस भोग करे प्रभ मेरा, हम तिस आगे जियो कट कट पैया, हर हर हार कंठ है बनिया, मन मोती चूर वड गहन गहनैया, हर हर शरदा सेज वछाई, प्रभ छोड़ ना सके बहुत मन पैया, कह प्रभ अवर अवर किस कीजै, सब बाद शिंगार फोकट फोकटैया, कियो शिंगार मिलन कै ताई, प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पैया, हम तेरी तो अगम गुसाई, क्या हम करह तेरे वस पैया, दया दीन करहो रख लेव हो, नानक हर गुर शरण समैया, बलावल महला चौथा, मैं मन तन प्रेम अगम ठाकुर का, खिन खिन शरदा मन बहुत उठैया, गुर देखे शरदा मन पूरी, ज्यो चात्रक प्रियो प्रियो बूंद मुख पैया, मिल मिल सखी हर कथा सुनैया, सतगुर दया करे प्रभ मेले, मैं तिस आगे सिर कट कट पैया, रहाओ रोम रोम मन तन एक बेदन, मैं प्रभ देखे बिन नींद ना पैया, वैदिक नाटक देख पुलानी, मैं हृदय मन तन प्रेम पीर लगैया, हौ खिन पल रह ना सको बिन प्रीतम, ज्यों बिन अमल अमली मर गईया, जिनको प्यास हुए प्रभ केरी, तिन अवर ना पावे बिन हर को दुईया, कोई आन आन मेरा प्रभु मलावे, हौ तिस विट हो बाल बाल घुम गईया, अनेक जन्म के विछड़े जन मेले, जहां सत सत सत गुर शरण पवैया, सेज एक एको प्रभ ठाकुर, महल ना पावे मन मुख परमैया, गुर गुर करत शरण जे आवे, प्रभ आए मिले खिन ढील ना पैया, कर कर किरिया चार वधाए, मन पाखंड कर्म कपट लो भैया, बेसवा कह कर बेटा जन्मिया, पिता ताहे क्या नाम सदैया, पूर्व जन्म भगत कर आए, गुर हर हर हर हर भगत जमैया, भगत भगत करते हर पाया, जां हर हर हर हर नाम समैया, प्रभ आन आन मेहंदी पसाई, आपे कोल कोल अंग लैया।

तार बिखिया कूप तम अज्ञान मोहत कूप गह पुजा प्रभ जी ले हो हर नाम अपना दे हो प्रभ तुझ बिना नहीं ठाओ नानका बल बल जाओ लोभ मोहे बांदी दे बिन भजन होवत खे जमदूत महाभयान चित गुप्त कर मह जान दिन रैन साख सुनाए नानका हर सरनाए पै भंजना मरार कर दया पतत उदार मेरे दुख गने ना जाहे हर बिना कतह समाए गह ओट चित वी नाथ नानका दे रख हाथ हर गुण निदे गोपाल सर्ब घट प्रतपाल मन प्रीत दर्शन प्यास गोविंद पूर्ण आस एक निमक रहन ना जाए वड भाग नानक पाए प्रभ तुझ बिना नहीं होर मन प्रीत चंद चकोर ज्यो मीन जल स्यो हेत अल कमल भिन्न ना भेत ज्यो चकवी सूरज आस नानक।

ज्यो महा खुदयारथ भोग ज्यो बात पूतै हेत हर सिमर नानक नेत ज्यो दीप पतन पतंग ज्यो चोर हित न संग मैगल है कामै बंद ज्यो ग्रस्त बिखरी।

गोविंद भजन रंग रसना बखाने नाम नानक दर्शन दान गुण गाए सुन लिख दे सो सर्ब फल हर ले कुल समूह करत उदार संसार उतरस पार हर चरण बोहित ताहे मिल साध संग जस गाहे हर पैज रखे मरार हर नानक सरन द्वार बलावन महला पहला थिती घर दसवां जत एक ओंकार सतगुर प्रसाद एकम एकंकार निराला अमर अजोनी जात ना जाला अगम अगोचर रूप ना रेखिया खोजत खोजत घट घट देखिया।

गुर कै शब्द महल घर दिसै रहाउ, दूजै पाए लगे पछताणे, जम दरबांदे आवन जाने, क्या लै आव है क्या ले जाहे, सिर जमकाल से चोटा खाहे, बिन गुर शब्द ना छूटस कोए, पाखंड कीने मुक्त ना होए, आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़, तरत आकाश किए बैसन कौ थाऊ, रात दिनंत किए पौ पाऊ।

कीमत पाए रहया भरपूर, किस नेड़ै किस आखां दूर, चौथ अपाए चारे बेदा, खानी चारे बाणी भेदा,

मुख शरीर सात समुंड भरे निर्मल नीर मज्जन सील सच हृदय विचार गुर कै शब्द पावे सब पार मन साचा मुख साचो पाय सच निशाने ठाक न पाए अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधे सच निह केवल कर्म अरादे पौन पानी अग्नि बिसराऊ तही निरंजन साचो नाउ किसमें मनुआ रहे लिव लाए प्रणवत नानक काल न खाए नाउ नौमी नवे नाथ नव खंडा घट घट नाथ।

फल जाए, रस कस खाए साध गवाए, कूड़ै लालच लपटै लपटाए, छूटै गुरमुख साच कमाए, द्वादश मुद्रा मन अवतूता, ऐन सजागै कभै ना सूता, जागत जागत

डर जाने तख्त नवास सच मन भाण चौदस चौथे थावे लह पावे राजस तामस सतकाल समावे ससियर कह कर सूर समावे जोग जुगत की कीमत पावे चौदस भवन पताल समाई खंड ब्रह्मांड रहया लिवलाई अमावस्या चंद गुप्त गैनार बूझ हो ज्ञानी शब्द विचार ससियर गगन जोत तिहो लोई कर कर वेख करता सोई गुरते दिसै सो तिस ही माही मनमुख भूलिया।

समाई, आप अपाए सब कीमत पाई, गुरमुख हो ऐसो करे विचार, सच संयम करनी है कार, वर्त नेम नेता प्रत पूजा।

0: बार बार
1: दिन सरहण तिमें संसार आवागौन किया करतार निश्चल साच रहया काल तार नानक गुरमुख बूझै को शब्द विचार बिलावल महला तीजा आद पुरखे आपे श्रेष्ठ साजे जी जंत माया मोहे पाजे दूजे पाए परपंच लागे आवह जावह मरह अपागे सतगुर भेटे सोजी पाए परपंच चूकै सच समाए जाकै।

काई, परमे पूला आवे जाय। सतगुर सेवै सो जन बूजै, हमें मारे तां दर सूजै। एकस ते सब दूजा हुआ, एको वरतै अवर ना बिया। दूजे ते जे एको जाने, गुर कै शब्द हर दर निशाने। सतगुर भेटे।

कह कोई साहिब की सेवक रह सरनाई आपे बख्शे दे वड्याई किसते ऊपर नाही कोए कौन डरे डर किसका हो।

माय नानक गुरमुख वेखै हदूर मेरा प्रभ सद रहिया भरपूर एक सेवक एक भरम पलाय आपे करे हरे आप।

है मुग्ध गुवार। नानक गुरमुख बूजै सूजी पाए, इकत नाम सदा रहे आसमाय। बलावल महला पहला, शंत दखनी

हर धरी हर लिवलाई राम लिवलाई हर स्यो रही गोयल सहज शब्द शिंगारिया कर जोड़ गुर पह कर बेनंती मिलो साच प्यारिया तन पाए भगती देख प्रीतम काम क्रोध निवारिया नानक मुंद

मोहियाड़ी फिर संग सूती राम गुर कै भाई चलो साच संगूती राम तन साच संगूती हर संग सूती संग सखी सहेलिया एक पाए एक मन नाम वसिया सत गुरु हम मेलिया दिन रहन घड़ी ना चसा विसरै सास सास निरंजनो शब्द जोत जगाए दीपक नानका पौ भंजनो जोत सबाएड़िए त्रिभवन सारे राम घट घट रव रहिया अलख अपारे राम अलख अपार अपार साचा आप मार मलाई है हौ मैं ममता लोभ जालो शब्द मैल चुकाई है दर जाए दर्शन करी पाण तार तार नहारिया हर नाम अमृत चाख तृप्ति नानका उरतारिया बलावल महला पहला मैं मन चाऊ घणा।

तिसह भावै सो थीऐ, किरपाल सदा दयाल दाता, जिया अंदर तू जीऐ, मैं अवर ज्ञान ना ध्यान पूजा, हर नाम अंतर वस रहे, पेख पवनी हठ ना जाना, नानका सच गह रहे, पिंडरी रहन भली दिन सुहाए राम, निज कर सूतड़िए इरम जगाए राम, नवहान नव धन शब्द जागी, अपने पिर पाणिया, तज कूड़ कपत सुभाऊ दूजा, चाकरी लोकानिया, मैं नाम हर का हार कंठे, साच शब्द निशानिया, कर जोड़ नानक साच मांगै, नदर कर तुद पाणिया, जाग सलो नड़िए, बोलै गुरबाणी राम, जिन सुन मन्याड़ी, अकथ कहानी राम, अकथ कहानी पद निर्वाणी, को विरला गुरमुख बूजे, ओ शब्द समाए आप गवाए, रे पवन सोजी सूजे, रह अतीत परंपर राता, साच मन गुण सारिया, ओह पूर रहया सर्ब ठाई, नानका उर तारिया, महल बुलाएड़िए, भगत स्नेही राम, गुरमत मन रहसी, सीजस देही राम, मन मार रीजै, शब्द सीजै, त्रै लोक नाथ पछाणे, मन दीक डोल।

अविनाशी वर सुनिया मन उपजया चाया राम मन प्रीत लागे वड्डे भागे कब मिलिया पूर्ण पति सहजे समाइये गोविंद पाइये देहो सखिए मोहे मते दिन रहन थाडी करो सेवा प्रभ कमन जुगती पाया बिनवंत नानक करो कृपा लहू मोहे लड़ लाया भया समाहड़ा हर रतन वसाहा राम खोजी खोज लद्दा हर संतन पाहा राम मिले संत प्यारे दया धारे कथ है अकथ बिचारू एक चित एक मन त्याए स्वामी लाए प्रीत प्यारू कर जोड़ प्रभ पह कर बेनंती मिले हर जस लाहा बिनवंत नानक दास तेरा मेरा प्रभ अगम अथा।

आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिए। आप करता आप भुगता आप कारण किया। बिनवंत नानक।

वास आओ सखी असि तिरका मंगल गावह तजमान सखी तजमान सखी मत अपने प्रीतम भाव है तजमान मोह बेकार दूजा सेव एक निरंजनो लग चरण सरन दयाल प्रीतम सगल दुर्त बिखंडनो हुए दास दासी तज उदासी बहुड़ विधि ना तावां।

मुखो नह चतर सुगर सजान बेती मोहे निर्गुण गुण नहीं नह रूप धूप ना नैन बंके जह पावे तह रख तू ही जय जय जय अम्पह सगल जाको करना पत गत किन लखो हो।

सगला बानहरा हर हरा स्वामी सुखागामी आनंद मंगल रस घना नवल नवतन नाह बाला कवन रसना गुण भणा मेरी सेज सोही देख मोही।

जियो सुख सागर प्रभ भेटिया नानक सुखी होत एहो जियो संत सुख सागर प्रभ पाई जब होवे पागो राम मानन मान वंजाई है हर चरनी लागो राम छोड़ सियान पचातुरी दुर्मत बुद्ध त्यागो राम नानक पवो सरनाई राम राय फिर हुए सुहागो राम सो प्रभ तज कत लागी है जिस बिन मर जाइए राम लाज ना आवे ज्ञान मती दुर्जन बिरमाइए राम पतत पावन प्रभ त्याग करे कहो कत ठहराइए राम नानक भगत पाओ कर दयाल की जीवन पद पाइए राम श्री गोपाल ना उचरह बल गईये दोहचार नरसना राम प्रभ भगत बछल न सेवही काया काक ग्रसना राम प्रम मोही दुख ना जानही कोट जोनी बसना राम नानक बिन हर अवर जे चाहना बिस्ता क्रिम पसमा राम लाए बिरो भगवंत संगे होए मिल बैरागण राम चंदन चीर सुगंध रसा हौ मैं बिख त्यागण राम ईत ऊत नह डोलिए हर सेवा जागण राम नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागण राम बलावल महला पंजवा हर खोज हो वडभागी हो मिल साधु संगे राम गुण गोविंद।

नानक प्रभ शरणागती जप अनत तरंगे राम एक तिल प्रभु ना विसरै जिन सब किछ दीना राम बड़ भागी मेला वड़ा गुरमुख पिर चीना राम।

कह सको प्रभ अंतर जामी राम सिमर सिमर नारायण भय पार ग्रामी राम गुण गावत गोविंद के सब इच्छ पजामी राम नानक उदरे जप हरे सबहू का स्वामी राम रस तिन्हड़े अपने राम संगे से लोयन नीके राम प्रभ देखत इच्छा पुनिया मिल साजन जी के राम अमृत रस हर पाया बिखिया रस फीके राम नानक जल जल

सबना जिया विच हर आप सो भगतां का मित हर सब कोई हर कै वस भगतां कै आनंद घर हर भगतां का मेली सरबत सोन सल जन टंग धार हर सबना का है खसम सो भगत जन चित कर तुझे अपड़ कोई ना सकै सब चख चख पवै झाड़। श्लोक महला तीजा ब्रह्म बिन्द है ते ब्राह्मणा जे चल सतगुर पाई।

फित की है सच भगत वडियाई सच साहेब सच्चा न्याओ है सिर निंदक शाई जन नानक सच अरादिया गुरमुख सुख पाई। श्लोक महला तीजा पूरे भाग सतगुर पाई है जे हर प्रभ बख्श करे उपावा सिर उपाऊ है नाम प्राप्त होए।

कडिए हर हर कृपाल हुआ भगत जना उपर हरे अपनी कृपा कर हरे आप रख लिए। श्लोक महला तीजा। अंदर कपट सदा दुख है मनमुख ध्यान न लागे दुख विच कार कमावनी दुख वरतै दुख आगे करमी सत गुर भेटी ता सच नाम लिव लागे नानक सहजे सुख होए अंदरों भ्रम भौ भागे। महला तीजा। गुरमुख सदा हर रंग है हर का नाउ मन पाया गुरमुख वेखण बोलना नाम जपत सुख पाया नानक गुरमुख ज्ञान परगासिया तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। महला तीजा। मनमुख मैले मरह गवार गुरमुख निर्मल हर राखिया उरतार भणत नानक सुनो जन भाई सतगुर सेवे हो हऊ मैं मल जाई। अंदर संसा दुख व्यापे सिर धंधा नित मार दूजे पाए सूते कबहू ना जाग है माया मोह प्यार। नाम ना चेत है शब्द ना विचार है इह मनमुख का विचार हर नाम ना पाया बिरथा जन्म गवाया नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। जिसनो हर भगत सच बख्शियन सो सच्चा साहु तिसकी महताजी लोक कढ़दा होर तहट ना वथ ना विसाहु। भगत जना को सन्मुख होवे सो हर रास लए वेमुख।

इस जोग में भगती हर धन खटिया होर सब जगत परम भलाया गुर प्रसादी नाम मन वसिया अन दिन नाम त्याया बिख्या माही उदास है हम शब्द जलाया आप तरिया कुल उदरी धन जनेंदी माया सदा सहज सुख मन वसिया सच्चे स्यों लिवलाया ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रै गुण भुले हम मोह वधाया पंडित पढ़ पढ़ मोनी भुले दूजे पाए चित लाया जोगी जंगम सन्यासी भुले विण गुर तत न पाया मनमुख दुखिए सदा ब्रह्म भुले तिन्नी बिरथा जन्म गवाया नानक नाम रते सही जन समधे जे आपे बख्श मलाया महला तीजा नानक सो सलाही है जिस वस सब किश होए।

हुए कहना किसू ना जाए। नानक तिनका आख्या आप सुने, जे लयन पन्ने पाए महला तीजा। काल मार मनसा मनह समाणी, अंतर निर्मल नाव। अन दिन जागे कदे ना सोए, सहजे अमृत पियाओ। मीठा बोले अमृत बाणी, अन दिन हर गुण गाओ। निज कर वासा सदा सुंदे, नानक तिन मिलिया सुख पाओ। पौड़ी हर तन रतन जवेहरी, सो गुर हर धन हर पासों देवाया। जे किसै किहो दिस आवै, ता कोई किहो मंग लए। अकै कोई किहो देवाए, इहो हर धन जोर कीतै किसै नाल ना जाए बंडाया। जिसनो सतगुर नाल हर शरदा लाए, तिस हर धन की वंड हाथ आवै। जिसनो करतै तुर लिख पाया, इस हर धन का कोई शरीक नाही। किसै कै खत नाही, किसै कै सीव बन्ने रोल नाही। जे को हर धन की बखीली करे,

आरे सतगुर सुख विखालिया सच्चा शब्द बिचार नानक अवर ना सुजई हर बिन बख्शन हार महला तीजा हमे माया मोहनी दूजे लगे जाए ना ए मारी ना मरे ना ए हट बकाए गुर कै शब्द पर जालिए ता ए विचों जाए तन मन होवे उजला नाम वसे मन आए नानक माया का मारन शब्द है गुरमुख पाया जाई पौड़ी सतगुर की वड़िया।

का अभिमान जिथे को वेख तिथे मेरा सतगुरु हर बख्शियोस सब जहान जे सतगुरु नो मिल मन्ने सो हलत पलत सिजे जे वेमुख होवे सो फिरे प्रिष्ट थान जन नानक कै बल हुआ मेरा स्वामी हर सज्जन पुरख सुजान पौंदी भित देख कै सब आए पए।

तिस सास ग्रास सदा मन वसै जम जोहे न सकै तिस हृदय हर हर नाम रस कबला सेवक तिस हर दासां का दास हुए परम पदार्थ तिस नानक मन तन जिस प्रभ वसै हम सद कुर्बान है तिस जिनको पूर्व लिखिया रास संत जना स्यो तिस पौड़ी जो बोले पूरा सतगुरु सो परमेश्वर सुनिया सोई वर्तिया जगत मह कट कट मुख भणिया बहुत वड्याईया साहिब है नह जाही गणिया सच सहज आनंद सतगुरु पास सच्ची गुरमणिया नानक संत सवारे पार ब्रह्म सच्चे ज्यों बनिया।

मनमुख जन्म गवाया झूठै लालच कूर नानक बख्श मलायन सच्चै शब्द हदूर महला।

आनंद वडभागी हर पाया पूरन परमानंद जन नानक नाम सलाहया बहुड़ नाम मन तन भंग पौड़ी कोई निंदक होवे सतगुरु का फिर शरण गुर आवे पिछले गुनहा सतगुरु बख्श लय सत संगत नाल रलावे ज्यो मीह उठे गलिया नालियां टोबिया का जल जाए पवे विच सुरसरी सुरसरी मिलत पवित्र पावन होए जावे यह वडियाई सतगुर नरवैर विच जित मिले तिसना भुख उतरै हर शांत तड़ आवै।

जो हर पाए तिनकी कथा नरारी रे आवह ना जाहे ना कबहू मरते पार ब्रह्म संगारी रे पुत्र।

सुनहो देरानी, अचर्ज एक भयो, सात सूत इन मुंडिये खोए, यह मुंडिया क्यों नाम होयो, सर्व सुखा का एक हर स्वामी, सो गुर नाम दयो, संत प्रहलाद की पैज जिन राखी, हर नाखस नाख बिदरियो, घर के देव पितर की छोड़ी, गुर को शब्द लयो।

भेख तारी, आसन पवन दूर कर बबरे, छोड़ कपट नित हर भज बबरे रहाउ। जेहे तू जाच है सोते पवन भोगी,

चरण कमल जा कह हृदय बस है, सो जन क्यों डोले देव, मानव सब सुख नौ निदता कै, सहज सहज जस बोले देव रहाउ, तब एह मत जो सब में

बर्ण अबर्ण रंक नहीं ईश्वर बिमल बास जानिए जग सोए रहाउ ब्राह्मण बैस सूद अर क्षत्री डोम चंडार मलेश मन सोए हुए पुनीत भगवंत भजन ते आप तार तारे कुल दोए धन सो गाओ धन सो ठाओ धन पुनीत कतंब सब लोए जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे बिख खोए पंडित सूर सतर पत राजा भगत बराबर और ना कोए जैसे परैन पात रह।

की कार में एक भया भेख धारी कामार्थी स्वार्थी वाकी पैज सवारी तब गुण कहां जगत गुरा जो कर्म ना नासे सिंह शरण कत जाइए जो जम्बुक ग्रासे रहाउ एक बूंद जल कारणी चात्रिक दुख पावे।

कर पहला जे मन चित आस रखे हरि ऊपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई हर जाने सब किस जो जिए वरते प्रभ घालिया किसे का एक तिल ना गवाई हर तिसकी आस की जय मन मेरे जो सब मह स्वामी रहे आसमाई मेरे मन आसा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की जय सा निःफल आस सब बिरथी जाई रहाऊ जो दिसे माया मोह कटंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई इनके किस हाथ नहीं कहां करह एह बपड़े इनका वाहया काश ना वसाई मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारे तेरा कटंब सब छड़ाई जे किस आस अवर करह परमित्री मत तू जानह तेरे कितए काम आई ए आस परमित्री भाव दूजा है खिनमह झूठ बिनस सब जाई।

ऐसी मेरा सतगुर बूझ बुझाई, जन नानक की आस तू जान है, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा। ऐसा हर सेविया नित त्याई है, जो खिन मैं किलविक सब करे बनासा। जे हर त्याग अवर की आस कीजै, तां हर निफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवे हो सुख दाता स्वामी, जिस सेवे है सब भुख लहासा। मेरे मन हर ऊपर की जय परवासा, जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी। हर अपनी पैज रखे जन दासा रहाओ, जे अपनी बिरथा कहो अबरा पह, ता आगे अपनी बिरथा बहो बहुत कढ़ासा। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पह, जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कही है, अवरा पह कह मन लाज मरासा। जो संसार के कटम मित्र भाई दी सह मन मेरे, ते सब अपने स्वाई मलासा। जित दिन उनका सुआओ होए ना आवे, तित दिन नेड़े को ना टुकासा। मन मेरे अपना हर सेव दिन राती, जो तुद उपकरे दुख सखासा। इसका प्रवासा क्यों कीजै मन मेरे, जो अंति अवसर रख ना सकासा। हर जप मंत गुर उपदेश लै जप हो, तिन अंत छडाए जिन हर प्रीत चितासा। जन नानक अन दिन नाम जप हो हर संत हो, इहो छूटण का साचा परवासा। गोंड महला चौथा। हर सिमरत सदा हुए आनंद, सुख अंतर शांत शीतल मन अपना। जैसे सकत सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना। मेरे मन अन दिन त्याए नाम हर जपना, जहां कहां तुझ राखै सब ठाई। सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ, जा मह सब निदान। सो हर जप मन मेरे गुरमुख खोज लहो हर रतना, जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी। इनके चरण मलहो हर दसना, शब्द पिशान राम रस पाव हो। ओह उत्तम संत भयो बड़ बड़ना, किस जन की वड़ियाई हर आप बधाई। ओह कटे ना किसे की कटाई, एक तिल तिल तिल ना। जिस ते सुख पावे मन मेरे, सो सदा त्याए नित कर जुरना। जन नानक कहो हर दान एक दीजै, नित बस हृदय हरी मोहे चरना। गोंड महला चौथा। जितने शाह पातशाह उमराव सिकदार चौधरी, सब मिथ्या झूठ।

जो हर जन नीच जात सेवकान, गोंड महला चौथा, हर अंतर जामी सब तह वरतै, जिहा हर कराए तिहा को करइय, सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे, जो तुदनो सब दू रख लइय, मेरे मन हर जप हर नित पड़इय, हर बिन को मार्ग वाल ना साकै, ता मेरे मन कायत कड़इय रहाउ, हर परपंच किया सब करतै, विच आपे अपनी जोत तरई है, हर एक को बोले हर एक बुलावे, गुर पूरे हर एक दिखइए, हर अंतर नाले बाहर नाले, कहो तिस पासो मन क्या चोरई है, निह कपट सेवा कीजे हर केरी, ता मेरे मन सर्ब सुख पइए, जिस दे वास सब किश सो सब दू वड्डा, सो मेरे मन सदा त्यई है, जन नानक सो हर नाल है तेरे, हर सदा त्याए तू तुद ले छड़ई है, गोंड महला चौथा।

मेरा वीर, मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुर की मत तीर, जन नानक की हर आस पुजावहु, हर दर्शन शांत शरीर, शका एक राग गोंड महला पंजवा, चौपदे कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सब करता सब भुगता रहाउ, सुनतो करता पेखत करता, अदृष्टो करता दृष्टो करता, ओपत करता परलो करता, व्यापत करता लिपतो करता, भक्तो करता बूजत करता, आवत करता जात पी करता, निर्गुण करता सरगुण करता, गुरु प्रसाद नानक समदृष्टा, गोंड महला पंजवा, फाक्यो मीन कपक की न्याई, तू उर्ज रहो संपाए ले, पग धारह सास लेख लै, तो उदरह हर गुण गाए ले, मन समझ छोड़ आवाए ले, अपने

राग गोंड महला पंजवा चौपदेक हर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जी प्राण किए जिन साज माटी में जोत रखी निवाज बर्तन को सब किश भोजन पुगाए सो प्रभ तज मूड़े कत जाए पार ब्रह्म की लागो सेव गुरते सुजै निरंजन देव रहाओ जिन किए रंग अनक प्रकार उपत पर लो निमख मजार जा की गत मित कही ना जाए सो प्रभ मन मेरे सदा त्याय आए न जावे निश्चल कनी बेअंत गुना ताके केतक गनी लाल नाम जा कह परे पंडार सगल कटां देवे आधार सत पुरख जा को है नाओ मिटे कोट अग निमख जस गाओ बाल सिखाई भगतन को मीत प्राण आधार नानक हित चीत गोंड महला पंजवा नाम संग कीनो व्यवहार नामो ही इस मन का आधार।

बिहाय। काटे अवकट जट कतह सहाय रहाउ। रंक राहु जाके एक समान, कीत हस्त सगल पुराण। बियो पूछना मसलत तरे, जो किछ करे सो आपे करे। जा का अंत न जान सकोए, आपे आप निरंजन सोई। आप अकार आप निरंकार, काट काट काट सब काट आधार। नाम रंग भगत भय लाल, जस करते संत सदा निहाल। नाम रंग जन रहे अगाए, नानक तिन जन लागे पाए। गोंड महला पंजवा, जा कै संग इहो मन निर्मल। जा कै संग हर हर सिमरन, जा कै संग किल बिख होहे नास। जा कै संग हृदय परगास, से संतन हर के मेरे मीत। केवल नाम गाइए जा कै नीत रहाउ। जा कै मंत्र हर हर मन वसै, जा कै उपदेश परम पौ नसै। जा कै कीर्त निर्मल सार, जा की रेन बांछै संसार। कोट पतत जा कै संग उधार, एक निरंकार जा कै नाम आधार। सर्ब जिया का जानै पेओ, कृपा निदान निरंजन देव। पार ब्रह्म जब पए कृपाल, तब पेटे गुर साध दयाल। दिन रैन नानक नाम ते आए, सुख सहज आनंद हर नाय। गोंड महला पंजवा, गुर की मूरत मन मह ध्यान।

गुर के सेवक की पूरन का हाल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापे, गुर का सेवक दह दिस जापे, गुर की महिमा कथन ना जाए, पार ब्रह्म गुर रहे आसमाय। कहो नानक जाके पूरे पाग, गुर चरणीता का मन लाग, गोंड महला पंजवा, गुर मेरी पूजा गुर गोविंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देव अलख अपेव, सर्ब पूज चरण गुर सेव, गुर बिन अवर नाही मैं थाओ, अन दिन जपो गुरु गुर नाओ रहाओ, गुर मेरा ज्ञान गुर हृदय ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान, गुर की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर बोहित तारे भव पार, गुर सेवा जमते छुटकार, अंधकार में है गुर मंत्र उजारा, गुर कै संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाई है बड़ भागी,

नानक दास गोंड महला पंजवां उनको खसम कीनी ठाक हारी दास संग ते मार बदारी गोविंद भगत का महल ना पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल सृष्ट के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार रहाओ जगत पास्ते लेते दान गोविंद भगत को करहे सलाम लूट ले साकत पत खोवे सात जना पग मल मल धोवे पंच पूत जने एक माए उत्पुज खेल कर जगत व्याए तीन गुणा कै संग रच रसी इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए छाए जिसके सेत न रखे हटाए कहो नानक भगत प्रभ सार बिन भगती सब हुए खुआर गोंड महला पंजवां कल कलेश मिटे हर नाई दुख बिन से सुख की नो ठाओ जप जप अमृत नाम अगाई संत प्रसाद सगल फल पाई राम जपत जन पार परी जन्म जन्म के पाप हरी रहाओ गुर के चरण हृदय उर तारी अग्न सागर ते उतरे पारी जन्म मरण सब मिटी उपाद प्रभ स्यों लागी सहज समाद थान थनंतरे को स्वामी सगल कटा काय अंतर जामी।

पातार पांच दूत भागे बिकराल जुआ जन्म ना कबहू हार नानक का अंग किया करतार गोंड महला पंजवा कर कृपा सुख अनद करे बालक राख लिए गुरुदेव प्रभ कृपाल दयाल गोबिंद जी जंत सगले बख्शिंद तेरी शरण प्रभ दीन दयाल पार ब्रह्म जप सदा निहाल रहाओ प्रभ दयाल दूसर कोई नाही घट घट अंतर सर्ब समाही अपने दास का हलत पलत सुवार पतत पावन प्रभ बिरद तुम्हार औखद कोट सिमर गोविंद तंत मंत भजिय भगवंत रोग सोग मिटे प्रभ त्याए मन बाशत पूरन फल पाए कर्म कारण समरथ दयार सर्व निदान महा विचार नानक बख्श लिए प्रभ आप सदा सदा एको हर जाप गोंड महला पंजवा हर हर नाम जपो मेरे मीत निर्मल होए तुम्हारा चीत मन तन की सब मिटै बलाई दुख अंधेरा सगला जाए हर गुण गावत तरियै संसार वडभागी पाइय पुरख अपार रहाओ जो जन करै कीर्तन गोपाल तिसको पोहे ना सकै जमकाल जग मह आया सो परवान गुरमुख अपना खसम पछान हर गुण गावै संत प्रसाद काम क्रोध मिटहै उन्माद सदा हजूर जान भगवंत पूरे गुर का पूर्ण मंत हर कन खाट किए पंडार मिल सतगुर सब काज सुवार हर के नाम रंग संग जागा हर चरणी नानक मन लागा गोंड महला पंजवा पव सागर बोहित हर चरण सिमरत नाम नाही फिर मरन।

नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन वस्त अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गई गोंड महला पंजवा जां को राखे रखन हार तिसका अंग करे निरंकार रहाउ मात गर्भ में अग्न ना जो है काम क्रोध लोभ मोह ना पो है साध संग जपै निरंकार।

जाए, जो जो गर्भ करे सो जाए, गरीब दास की प्रभु शरणाए, जो जो शरण पया हर राय, सो दास रखिया अपने कंठ लाई, जे को बहुत करे अहंकार, ओह खिन महरो ताखा कूनाल, है पी साचा होवन हार, सदा सदा जाई बलिहार, अपने दास रखे कृपा तार, नानक के प्रभ प्राण आधार, गोंड महला पंजवां।

जागे, चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रौ सच व्यापार, दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तूर, राग गोंड अष्टपदियां।

उमराओ पतियाई, दुष्ट अहंकारी मार पचाई, निंदक कै मुख कीनो रोग, जय जय कार करे सब लोग, संतन कै मन महा आनंद, संत जप है गुरुदेव भगवंत, संगत के मुख उजल पए, सगल थान निंदक के गए, सास सास जन सदा सलाही, पार ब्रह्म गुर बे परवाही, सगल पै मिटे जाकी सरन, निंदक मार पाए सब धर्म।

कहे किन विद सागर तरिये जीवत्या नह मरिये रहाउ दुख दरवाजा रूह रखवाला आस अंदेसा दोए पट जड़ी माया जल खाई पानी घर बांधिया सत कै आसन पुरख रहे किंते नामा अंत ना जानिया तुम सर नाही अवर हरे ऊंचा नहीं कहना मन मह रहना आपे जाने आप करे जब आसा अंदेसा तब ही क्यों कर एक कह आसा भीतर रह निरासा तो नानक एक मिले इन बिद सागर तरिये जीवत्या इओ मरिये रहाउ दूजा राम कली महला पहला सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजे लोक सुने पत झोड़ी मंगन कै ताई भीख्या नाम पड़े बाबा गोरख जागे गोरख सो जिन गोए उठाली करते बार ना लागे रहाउ पानी प्राण पवन बंद राखी चंद सूरज मुख दिए मरण जीवन कौ धरती दीनी एते गुण विसरे सिद्ध साधक अर जोगी जंगम पीर पुरुष बहु तेरे जे तिन मिला ता कीरत आखा ता मन सेव करे कागद लून रह कृत संगे पानी कमल रह ऐसे भगत मिल है जन नानक तिन जम क्या करे राम कली महला पहला सुनमा शिंदरा नानक बोले वसगत पंच करे नह डोले ऐसी जुगत जोग कौ पाले आप तरह सगले कुल तारे सो अवतूत ऐसी मत पावे अहंस सुन समाध समावे रहाउ भिख्या पाए भगत पै चले हुए सो तृप्त संतोख अमूल्य।

निरास बलाए निश्चो नानक करते पाए प्रणवत नानक अगम सुनाए गुर चेले की संद मलाए दीखिया दारू भोजन खाए छे दर्शन की सोजी पाए राम कली महला पहला हम डोलत बेड़ी पाप भरी है पवन लगे मत जाई सनमुख सिद्ध भेटन को आई निश्चो देह वड्याई गुर तार तारन हारिया देह भगत पूर्ण अवनासी हौ तुझको बलिहारिया रहाउ सिद्ध साधक जोगी अरजंगम एक सिद्ध जिन्नी त्याया परसत पैर सिजत ते स्वामी अखर जिनको आया जप तप संयम कर्म ना जाना नाम जपी प्रभ तेरा गुर परमेश्वर नानक भेट्यो साचै शब्द नवेरा राम कली महला पहला सुरती सुरतर लाइय एत तन कर तुलहा लंघ जेत अंतर पाहे तिसै तू रख अहनस दीवा बले अथक ऐसा दीवा नीर तराए जित दीवे सब सोजी पाए रहाओ हसी मिट्टी सोजी होए ताका किया माने सोए करनी ते कर चको ढाल एथे उथे निभही नाल आपे नदर करे जा सोए गुरमुख विरला बूझै कोए तित घट दीवा निश्चल होए पानी मरे ना बुझाया जाए ऐसा दीवा नीर तराए डोले वाओ ना वड्डा होए जापै ज्यो संघासन लोए खतरी ब्राह्मण सूद के वैस निरत ना पाइया गणी सहंस ऐसा दीवा बाले कोए नानक सो पारंगत होए राम कली महला पहला तुदनो निमन मनन तेरा नाऊ साच भेट बैसन को थाऊ सत संतोख होवे अरदास ता सुन सत बहाले पास नानक बिरथा कोए ना होए ऐसी दरगाह साचा सोए रहाउ प्राप्त पोता कर्म पसाउ तू देव है मंगत जन चाउ भांडे भाउ पवे तित आए तुरते छोड़ी कीमत पाए जिन किश किया सो किश करे अपनी कीमत आपे तरे गुरमुख प्रगट हुआ हर राय ना को आवे ना को जाए लोक तकार कह मंगत जन मांगत मान ना पाया सहकियां गल्ला दर कियां बातां तैं तां कहन कहाया राम कली महला पहला सागर मह बूंद बूंद मह सागर कमन बुझै बिद जाने उत पुज चलत आप कर कीने आपे तत पछाने ऐसा ज्ञान बिचारे कोई तिस्ते मुक्त परम गत होई रहाउ दिन मह रैन रैन मह दिनियर उसन सीत बिद सोई ताकी गतमित अवर न जाने गुर बिन समझ न होई पुरख मह नार नार मह पुरखा बूझो हो ब्रह्म ज्ञानी तुन मह ध्यान ध्यान मह जानिया गुरमुख अकथ कहानी मन मह जोत जोत मह मनुआ पंच मिले गुर पाई नानक तिनकै सद बलिहारी जिन एक शब्द लिवलाई राम कली महला पहला जा हर प्रभ कृपा तारी ता हो मैं विचो मारी सो सेवक राम प्यारी जो गुर शब्दी बिचारी सो हर जन हर प्रभ पावे अहनस भगत करे दिन राती लाज छोड़ हर के गुण गावे रहाओ तुन वाजे अनहद घोरा मन मानिया हर रस मोरा गुर पूरे सच समाया गुर आद पुरख हर पाया सब नाद बेद गुरबाणी मन राता सारंग पानी तह तीर्थ वर्त तप सारी गुर मिलिया हर निस्तारी जह आप गया पौ भागा गुर चरणी सेवक लागा
गुर सतगुर परम चुकाया, कहो नानक शब्द मलाया। राम कली महला पहला, साधन भोजन मांगत भागे, खुदिया दुष्ट जलै दुख आगै। गुरमत नहीं लीनी दुरमत पत खोई, गुरमत भगत पावै जन कोई। जोगी जुगत सहज घर वासै, एक दृष्ट एको कर देखिया। भीखिया पाए शब्द त्रिपतासै रहाउ, पंच बैल गडिया देह धारी। राम कला निबहै पत सारी, धर टूटी गाडो सिर भार। लकड़ी बिखर जरी मंज भार, गुर का शब्द विचार जोगी। दुख सुख सम करना सोग बियोगी, भुगत नाम गुर शब्द बिचारी। अस्थिर कंध जपै निरंकारी, सहज जगोटा बंधन ते छूटा। काम क्रोध गुर शब्दी लूटा, मन मह मुंदरा हर गुर सरना। नानक राम भगत जन तरना, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राम कली महला तीजा घर पहला, सत जुग सच कह सब कोई। घर घर भगत गुरमुख होई, सत जुग धर्म पैर है चार। गुरमुख बूझै को बीचार, जुग चारे नाम वडियाई होई। जे नाम लागै सो मुक्त होवै, गुर बिन नाम ना पावै कोई। रहाउ त्रेतै एक कल कीनी दूर, पाखंड वर्त्या हर जानन दूर। गुरमुख बूझै सो जी होई, अंतर नाम वसै सुख होई। द्वापर दूजै दुबदा होई, परम पलानी जानह दोए। द्वापर धर्म दोए पैर रखाए, गुरमुख होवै ता नाम दृढ़ाए। कलयुग धर्म कला एक रहाए, एक पैर चलै माया मोह वधाए। माया मोह अत गुबार, सतगुर भेटै नाम उधार। सब जुग मह साचा एको सोई, सब मह सच दूजा नहीं कोई। साची कीरत सच सुख होई, गुरमुख नाम बखाणै कोई। सब जुग मह नाम उत्तम होई, गुरमुख विरला बूझै कोई। हर नाम त्याए भगत जन सोई, नानक जुग जुग नाम वडियाई होई। राम कली महला चौथा घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जे वड भाग हुए वड भागी,

हृदय प्रगास हुए लिव लागे, गुरमत हर हर नाम सुमानी रहाओ, हीरा रतन जवे हर माणक, बहु सागर भरपूर किया, जिस वड भाग हुए वड मस्तक, तिन गुरमत कड कड लिया, रतन जवेहर लाल हर नामा, गुर काड तली दिखलाया, भाग हीन मनमुख नहीं लिया, त्रिन उले लाख छपाया, मस्तक भाग हुए तुर लिखिया, ता सतगुर सेवा लाए, नानक रतन जवे हर पावे, तन तन गुरमत हर पाए, राम कली महला चौथा, राम जना मिल भया आनंदा, हर नीकी कथा सुनाई, दुर्मत मैल गई सब निकल, सत संगत मिल बुद्ध पाए, राम जन गुरमत राम बुलाए, जो जो सुने कह सो मुक्ता, राम जपत सोहाए रहाउ, जे वड पाग हो वह मुख मस्तक, हर राम जना पेटाए, दर्शन संत देहो कर कृपा, सब दालत दुख लह जाए, हर के लोग राम जन नीके, भाग हीन ना सुखाए, ज्यों ज्यों राम कह जन ऊचे, नर निंदक डंस लगाए, त्रिग त्रिग नर निंदक जिन जन नहीं पाए, हर के सखा सखाए, से हर के चोर वे मुख मुख काले, जिन गुर की पैज ना पाए, दया दया कर राख हो हर जियो, हम दीन तेरी सरनाए, हम बारक तुम पिता प्रभ मेरे, जन नानक बख्श मलाई, राम कली महला चौथा, हर के सखा साध जन नीके, तिनी ऊपर हाथ बतावे, गुरमुख साध से प्रभ पाए, कर कृपा आप मलावे, राम मोको हर जन मेल मन पावे, अमयो अमयो हर रस है मीठा, मिल संत जना मुख पावे रहाउ, हर के लोग राम जाने उत्तम, मिल उत्तम पदवी पावे, हम होवत चेरी दास दासन की, मेरा ठाकुर खुशी करावे, सेवक जन सेव है सेवड भागी, हृदय

सुख होई, जो इच्छो हो सोई फल पावहु, फिर दुख न व्यापै कोई रहाउ। काचे भांडे साज नवाजी, अंतर जोत समाई, जैसा लिखत लिखिया धुर करतै, हम तैसी किरत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना, एहो आवन जाना, जिन दिया सो चेतना आवै, मोहे अंध लपटाना।

ऊपर आवहु, ऐसी सेव कमावहु, आपस ते ऊपर सब जानहु, तौ दरगाह सुख पावहु। संतो ऐसी कथो कहानी, सुर पवित्र नर देव पवित्रा, खिन बोलहो गुरमुख बाणी रहाव। परपंच छोड़ सहज कर बैसो, झूठा कहो ना कोई, सतगुर मिलहो नवे निध पावहो, इन बिद तत बिलोई। परम चकावहो गुरमुख लिव लावहो, आत्म चीनो पाई, निकट कर जानहो सदा प्रभ हाजिर,

भरपूर भंडारा ऐसा रस अमृत मन चाखिया तृप्त रहे आगाई कहो नानक मेरी आशा पूरी।

गहिरा तुम पूर्ण पूर रहे संपूर्ण हम पी संग अगाए मिलत मिलत मिलत मिल रहया नानक कहन ना जाए।

तुने अगाजा निर्त करे कर मनुआ नाचे आनी घुंगर साजा राम को नृत्यकारी पेखै पेखनहार दयाला जेता साज सिंगारी रहाउ अखार मंडली तरन सबाई ऊपर गगन चंदोवा पवन विचोला करत अकेला जल के ओपत होआ पांच तत् कर पुतरा कीना किरत मलावा होआ चांद सूरज दोए जरे चरागा चौहों कुंट पीतर राखे दस पातों पांच संगीता एक है पीतर साथे पिन पिन हुए भाव दिखावे सब हो नरारी पाखे कर कर नृत हो दिन राती कट कट वाजे तूरा एक लचाव है एक पवाव है एक आई जाए होए तूरा कहो नानक सो बहुर ना नाचे जिस गुर भेटे पूरा राम कली महला पंजवा ओ अंकार एक धुन एक है एक है राग अलापै।

कब ही एक शब्द बंद पाल नार दी नर हर जान हदूरे उंगर खड़क त्याग विसूरे सहज आनंद दिखावे पावे एहो नित कारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकुर भावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत की

कोई बादशाह पिसत कोई सुरगिंदु। कहो नानक जिन हुक्म पछाता प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। राम कली महला पंजवां पवन मैं पवन समाया ज्योति मैं ज्योत रल जाया। माटी माटी हुई एक रोवन हारे की कवन टेक। कौन मुआ रे कौन मुआ ब्रह्म ज्ञानी मिल कर हो बिचारा। एहो तौ चलत भया रहाउ अगली किश खबर न पाई। रोवन हार पे उठ सदहाई परम मोह के बांधे बंद। सुपन भया पखलाए अंध एहो तौ रचन रचिया कर।

महला पंजवा करन करावन सोई आन ना दिसै कोई ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना ऐसो रे हर रस मीठा गुरमुख किनै विरलै दीठा रहाउ निर्मल ज्योत अमृत हर नाम पीवत अमर भये निह काम तन मन सी तले अग्न निवारी अनंद रूप प्रगटे संसारी क्या देवो जा सब किस तेरा सद बलिहार जाऊ लख बेरा तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर किरपा ते नीच निवाजिया फूल कुवारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया कहो ना।

देव अमृत नाम दियो मुख देव सगली चिंता आप नवारी किस गुर को हौ सद बलिहारी काज हमारे पूरे सतगुर बाजे अनहद तूरे सतगुर रहाओ महिमा जा की गहर गंभीर।

प्रभु की आज्ञा लगी प्यारी। जो किस करै सो मन मेरे मीठा, ता एहो अचरज नैनो डीठा। अब मोहि जानी रे मेरी गई बलाई, बुझ गई तृष्ण नवारी ममता। गुरपूरै लियो समझाए रहाओ, कर कृपा राखियो गुर सरना। गुर पकर

करतार जिसै सहाई होए भगवान अनक जतन वाकै सरंजाम रहाउ करता राखै कीता कौन कीरी जीतो सगला भवन बेअंत महिमा ता की केतक वर्ण बल बल जाइए ता के चरण तिन्ही किया जप तप ध्यान

जाग, हर हर जाप जपला, गुर कृपा ते हृदय वासै, पौजल पार परला रहाओ, नाम निदान त्याए मन अटल, तां छूटह माया के पटल, गुर का शब्द अमृत रस पियो, तां तेरा हुए निर्मल जियो, सोदत सोदत सोद बीचारा, बिन हर भगत नहीं छुटकारा, सो हर भजन साध कै संग, मन तन रापै हर कै रंग, छोड़ सियाणप बहु चतराई, मन बिन हर नावै जाए ना काई, दया तारी गोविंद गुसाई।

सुख घर में आया, संत प्रसाद कमल बिगसाया, नाम रतन जिन पाया दान, तिस जन होए सगल निदान।

जस हृदय वसाई, नानक ते जने उत्तम पाई। राम कली महला पंजवा, गौ कर पकरी ना आई हाथ। प्रीत करी चाली नहीं साथ, कहो नानक जो त्याग दई। तब ओ चरणी आए पई, सुन संतो हो निर्मल विचार। राम नाम बिन गत नहीं काई, गुर पूरा भेटत उदार। रहाओ जब उसको कोई देवे मान, तब आपस ऊपर रखे गमान। जब उसको कोई मन पर हरे, तब ओ सेवक सेवा करे।

हित, हर का नरास नरास एह बित, काटी बंद हर सेवा लाई, हर हर भगत राम गुण गाई, बाजे अनहद बाजा, रसक रसक गुण गावे है हर जन, अपने गुरुदेव निवाजा रहाउ, आए बनियो पूर्वला भाग, जन्म जन्म का सोया जाग, गई गलान साध कै संग, मन तन रातो हर कै रंग, राखे राखन हार दयाल, ना किस सेवा ना किस काल, कर कृपा प्रभ कीनी दया, बूढ़त दुख मह काढ़ लया, सुन सुन उपजियो मन मह चाऊ।

पूर्ण परमेश्वर हर ना चेत्यो मन माही रहाओ। अमृत कौरा बिखिया मीठी साकत की बिद नैनो दीठी कूड़।

कबह न उस्तत करे, निरपहो निरंकार दातार, इस सियो प्रीत न करे गवार, सब साहा सिर साचा साह, वे मोहताज पूरा पातशाह, मोह मगन लपटयो भ्रम ग्रह, नानक तरिया तेरी मेहर, राम कली महला पंजवा, रैन दिनस जपो हर नाव, आगे दरगाह पावो थाव, सदा आनंद न होवी सोग, कबू न व्यापै हो मैं रोग, खोजो संत हो हर ब्रह्म ज्ञानी, बिस्मन बिस्म पये बिस्मादा, परम गत पावह।

सगल उपावना चालह संग भवजल तरिय प्रभ कै रंग देही धोए न उतरे मैल हौमै व्यापै दुबदा फैल हर हर औखद।

नानक की प्रभ शरदा पूर राम कली मोहल्ला पंजवां तेरी शरण पूरे गुरुदेव तुद बिन दूजा नाही कोई तू समरथ पूर्ण पार ब्रह्म सो त्याए पूरा जिस कर्म तरन तारन प्रभ तेरो नाओ एका शरण गही मन मेरा तुद बिन दूजा नाही ठाउ रहाओ जप जप जीवा तेरा नाओ आगे दरगाह पावो ठाउ दुख अंधेरा मन ते जाए दुर्मत बिन सह राचे हर नाए चरण कमल स्यों लागी प्रीत गुरपुरे की निर्मल रीत पवो भागा निरपो मन बसे अमृत नाम रसना नित जपे कोट जन्म के काटे फाहे पाया लाभ सच्चा धन लाहे टूट न आवे अखुट भंडार नानक भगत सोह हर द्वार राम कली महला पंजवां रतन जवे हर नाम सत संतोख ज्ञान सुख सहज दया का पोता हर भगता हवाले होता मेरे राम।

सुन सुन अवर बखाने रहाउ संकरा नहीं जाने पेव खोज तहारे देव देवियां नहीं जाने मर्म सब ऊपर अलख पार ब्रह्म अपने रंग करता केल आप बिछोरै आपे मेल एक परमे एक भगती लाए।

मत सार जित हर सिमरीजै कर कृपा जिसे आपे दीजै सुख सहज आनंद हर नाओ नानक जपया गुरु।

नानक पाया एहो निदान हरे हर निर्मल नाम जो जपै तिसकी गत होए नानक कर्म प्राप्त होए राम कली महला पंजवा दलाब दे सवार जाहे ना दरगाह हार हलत पलत तुद होए वडे।

तिसका सब कोए, तिसह अराध सदा सुख होए। काहे भ्रम भ्रम है बेगानी, नाम बिना किस काम ना आवे। मेरा मेरा कर बहुत पछताने रहाऊ, जो जो करे सोई मान ले हो। बिन माने रल हो वह खेह, किसका पाणा।

जिस चित आए बिन सह दुखा, हलत पलत तेरा पूजल मुखा, कौन कौन उधरे गुण गाए, गणन ना जाई कीम ना पाए, बूढ़त लोह साध संग करै, नानक जिसह प्राप्त करै, राम कली महला पंजवा, मन माहे जाप भगवंत, गुरपुरै इहो दीनो मंत, मिटे सगल पै त्रास, पूर्ण होई आस, सफल सेवा गुरदेवा, कीमत किछ कहन ना जाई, साचे सच अलग

सच सहज सुख पावे मीत, साहिब मेरा अत पारा, किन मैं थापियो थाप नहारा, किस बिन अवर न कोई, जन का राखा सोई, कर कृपा अरदास सुनीजै, अपने सेवक को दर्शन दीजै, नानक जापी जप जाप, सब ते ऊच जा का प्रताप, राम कली महला पंजवा, बिरथा परवासा लोक, ठाकुर प्रभ तेरी टेक, अवर छूटी सब आस, अचिंत ठाकुर भेटे गुणतास, एको नाम त्याए मन मेरे, कार्य तेरा होवे पूरा, हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ, तुम ही कारण करन, चरण कमल हर सरन, मन तन हर ओही त्याया, आनंद हर रूप दिखाया, तिस ही की ओट सदीव, जाके कीने है जीव, सिमरत हर करत निदान, राखन हार निदान, सर्व की रेण हवीजै, आप मटाए मलीजै, आनंदेन त्याय नाम, सफल नाम।

चित लागा तन तन संयोग सुभागा संत की धूर लागी मेरे माथे तिल विख दुख सगले मेरे लाथे साध की सच टहल कमानी तब होए मन शुद्ध परानी जन का सफल दर्श डीठा।

हाथी मछली का जाला टूटा, सूखे काष्ट हरे चलूल, ऊंचे थल फूले कमल अनूप, अग्न नवारी सतगुर देव, सेवक अपनी लायो सेव, किरत कणा का करे उदार, प्रभ मेरा है सदा दयार, संत जना का सदा सहाई, चरण कमल नानक सरनाई, राम कली महला पंजवां, पंच सिंह राखे प्रभ मार, दस बिघियाड़ी ले

चिंत जाल काल चक्र पेल, हर चरण कमल सरनाए मना, राम नाम जप संग सहाई, गुरमुख पावह साच तना रहाऊ, ऊणे काज न होवत पूरे, काम क्रोध मद सद ही चूरे, करे बिकार जियरे कैताई, गाफल संग न तसुआ जाई, तरत तो हो अनक छल जानै,

पार ब्रह्म जब भये दयाल इह मन हुआ सादरवाल हस्त कमल लड़ लीनो लाए नानक साचे सा

साध संग दुख जाए रहाओ, जां कै राम बसै मन माही, सो जन दुत्तर पेखत नाही, सगले काज सुवारे अपने, हर हर नाम रसन नित जपने, जिसकै मस्तक हाथ गुर धरै,

साध संग सो भव जल तरै अमृत पीवो साध प्यारे मुख उजल साचै दरबारे आनंद करहो तज सगल विकार नानक हर जप उतरोह पार राम कली महला पंजवा ईंदन ते बैसंतर भागै माटी को जल दह दिस त्यागै ऊपर चरण तलै आकाश घट मह सिंध कियो परगास ऐसा समरथ हर जियो आप निमख न बिसरै जी भगतन कै।

गर्भ जोन में किरत पया पूर्व कमाणी छोड़ह नाही। जमदूत ग्रास्यो महा भया बोले झूठ कमावे अवरा। कृष्ण ना बूझे बहुत हया असाध रोग उपजे।

ते अब कीजे जाते दुर्मत सगल बनासे राम भगत मन पीजे रहाउ मन माया मह उर्ज रहियो है बूझे नह कछ ज्ञाना कौन नाम जग जा कह सिमरे पावे पद निर्वाणा पई दयाल कृपाल संत जानू।

सुबासुर मह निमक एक उर तार है, जम को त्रास मिटे नानक तेहे अपनो जन्म सवार है। राम कली महला नवा प्राणी नारायण सुदले, छिन छिन औध कटे निसबासुर बिरथा जात है दे रहाओ। तरनापो बिखिन स्यो खोयो बालपन अज्ञाना, बिरद भयो अजहू नहीं समझे कौन कुमत उरजाना। मानस जन्म दियो जेह ठाकुर सो तै क्यों बिसरायो, मुक्त होत नर जा कै सिमरै

नानक कहत चेत चिंता मन होए है अंत सहाई। राम कली महला पहला अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सोई चंद चढ़े से तारे सोई दिन यर तपत रहै सा धरती सो पौन चुलारे। जुग जी खेले थाम कैसे जीवन तलब निवार। होए परवाना करै तिंगाना कल लखन विचार रहाऊ। कितै देश न आया सुनिए तीर्थ पास न बैठा। दाता दान करे तह नाही महल उसार न बैठा। जे

वेद अथर्वण करनी कीरत लहया पातविण पूजा सतविण संयम जातविण काहे जनेऊ नाव हो तो वो तिलक चढ़ाव हो सोचविण सोच ना होई कल परवान कते बकरान पोथी पंडत रहे पुराण नानक नाव पया रहमान कर करता तू एको जान नानक नाम मिले वडियाई एदू उपर कर्म नहीं जे घर हुंदे मंगण जाइए फिर ओ लामा मिले तही राम कली महला पहला जग प्रबोध है मड़ी बंधावे है।

दुबदा दुख भागे, धर कर मांगत लाज ना लागे रहाउ। गावह गीत ना चीनह आप, ज्यों लागी निवरै प्रताप। गुर कै शब्द रचै मन पाए, भिख्या सहज विचारी खाए। पसम चढ़ाए करह पाखंड, माया मोहे सह जमदंड। फूटै खापर भीख न पाई, बंधन बांधिया आवे जाए। बिंद न राख है जति कहावह, माई मांगत त्रै लभावह। निर्दया नहीं जोत उजाला, बूढ़त बूढ़े सर

कैसे उतर सपारी, मुंदरा पटक बनाई कान, मुक्त नहीं विद्या विज्ञान, जेवा इंद्री साध लुभाना, पशु पये नहीं मिटे निशाना, त्रेभिद लोगा त्रेभिद जोगा, शब्द विचार चूक ससोगा, उजल साच सो शब्द होए, जोगी जुगत विचारी सोए, तुझ पह नौ निद तू करने जोग, थाप उथापे करे सो होग, जात सत संयम सच सुचीत, नानक जोगी त्रे पवन मीत, राम कली महला पहला, खट मट देही मन बैरागी, सुरत शब्द धुन अंतर जागी, वाजै अनहद मेरा मन नीना, गुरबचनी सच नाम पतीना, प्राणी राम भगत सुख पाईऐ, गुरमुख हर हर मीठा लागै, हर हर नाम समाईऐ रहाउ, माया मोह विवर्ज समाए, सतगुर भेटै मेल मलाए, नाम रतन निर्मूलक हीरा, तितराता मेरा मन तीरा, हऊ मैं ममता रोग न लागै, राम भगत जम का पौ भागै, जम जंदार न लागै मोहे, निर्मल नाम हृदय हर सोहे, शब्द विचार पय निरंकारी, गुरमत जागे दुरमत परहारी, अन दिन जाग रहे लिवलाई, जीवन मुकत गत अंतर पाई, अलिपत गुफा मह रह निरारी, तस्कर पंचो शब्द संघारी, पार कर जाए ना मन डुलाए, सहज निरंतर रहो समाय, गुरमुख जाग रहे अवतूता, सद बैरागी तत् परोता, जग सूता मारे आवे जाए, बिन गुर शब्द ना सोजी पाए, अनहद शब्द बजै दिन राती, अवगत की गात गुरमुख जाती, तौ जानी जा शब्द पछानी, एको रव रहिया निर्वाणी, सुन समाद सहज मन राता।

जाय, चार सपव नसंघासन पी जाय, न्योली कर्म खट कर्म करी जाय, राम नाम बिन बिरथा सास लीजै, अंतर पंच अगन क्यों तीर्ज तीजै, अंतर चोर क्यों साध लीजै, गुरमुख होए काया गढ़ लीजै, अंतर मैल तीर्थ परमीजै।

दर दुंदर पास तरी जय तुरकी सेवा राम रवि जय नानक नाम मिले कृपा प्रभु की जय राम कली महला पहला अंतर उत्पुज अवर न कोई जो कही है सो प्रभ ते होई जुगहा जुगंतर साहिब सच सोई उत्पत पर लहो अवर न कोई ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर

साचा साहिब अमर अतोल, जेवा सूची साचा बोल, घर दर साचा नाही रोल। एक बन मह बैस है डूंगर अस्थान, नाम बसार पच है अभमान, नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान, गुरमुख पाव है दरगह मान, हठ अहंकार करे नहीं पावे, पाठ पढ़े ले लोक सुनावे, तीरथ भरमस ब्याद ना जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे ना रहाई, मनुआ डोले नरके पाई, जमपुर बहादुर लह सजाई, बिन नामे जियो जल बल जाई।

मन तन निर्मल अभिमान अभिवा कर्म मिले पावे सच नाउ तुम शरण लागत रहूं स्वभाव तुम ते उपजो भगति पाओ जप जापो गुरमुख हर नाउ हो मैं गर्भ जाए मन पीने झूठ ना पावस पाखंड कीने बिन गुर शब्द।

भया, ज्यो रस भोग किए तेता दुख लागै, नाम विसार भवजन पया, तन तन देखत गर्भ गया, कनक कामनी स्यो हेत वधाई है, की नाम विसार है परम गया रहाऊ, जत सत संजम सील ना राखिया, प्रेत पिंजर मह काष्ट भया, पुन दान इशनान ना संजम, साध संगत बिन बात जया, लालच लागै नाम बसारियो, आवत जावत जन्म गया, जां जम धाए केस गह मारै, सुरत नहीं मुख काल गया, अहनस निंदा तात पराई, हिरदै नाम ना सर्ब दया, बिन गुर शब्द न गत पत पावह, राम नाम बिन नरक गया, खिन मैं वेस करह नटुआ ज्यो, मोह पाप मह गलत गया, हित उत माया देख पसारी, मोह माया कै मगन भया, करह विकार वथार कनेरे, सुरत शब्द बिन भरम पया, हौं मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत लेव हो रोग गया, सुख संपत को आवत देखै, साकत मन अभमान पया, जिसका एहो तन तन सो फिर लेवै, अंतर सहसा दुख पया, अंत काल किस साथ ना चालै, जो दिसै सब तिसह मया, आद पुरख अपरंपर सो प्रभ, हर नाम हृदय लै पार पया, मुए को रोवह किसै सुनावह, पै सागर असराल पया, देख कटंब माया ग्रह मंदर, साकत जंजाल पराल पया, जां आए तां तिनै पठाए, जाले तिनै बलाए लया, जो किस करना सो कर रहया, बख्शन हारै बख्श लया, जिन एहो चाख्या राम रसायन, तिन की संगत खोज पया, रिद सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया, मुक्त पदार्थ सरन पया, दुख सुख गुरमुख सम कर जाना, हरख सोग ते बिरकत पया, आप मार गुरमुख हर पाई, नानक सहज समाई लया, राम कली दखनी महला पहला, जात सत संजम साच दृढ़ाया, साच शब्द

दृष्ट समय सर अनहत शब्द रंगीना सात बंद कुपीन भरपुर लीना जेवा रंग रसीना मिलै गुर साचे जिन रच राचे किरत वी चार पतीना एक मह सर्ब सर्ब मह एका एह सतगुर देख दिखाई जिन किए खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन ना जाई दीपक ते दीपक परगासिया त्रिपवन ज्योत दिखाई।

काट काट कुंगरी वाई नानक शरण प्रभु की छूटे सतगुर सच सिखाई राम कली महला पहला आओ हठ हस्त मड़ी कर छाया तरण गगन कल तारी गुरमुख केती शब्द उधारी संत हो रहाओ ममता मार हूं मैं सुख है तेरे भवन जोत तुम्हारी मनसा मार मन मह राख सतगुर शब्द विचारी सिंह सुरत अनाह दवाजे कट कट जोत तुम्हारी परपंच बेन तही मन राखिया ब्रह्म अग्न पर जारी पंच तत् मिल अहनस दीपक निर्मल ज्योत अपारी राव सस लोके इहो तन किंगरी वाजै शब्द निरारी शिव नगरी मह आसन औदू अलख अगम अपारी काया नगरी इहो मन राजा पंच वसह विचारी शब्द रवै आसन घर राजा अदल करे गुणकारी काल बकाल कहे कह बपुरी

ना पाखांडे औदु गुरमुख शब्द बिचारी गुरमुख जोग कमावे औदु जात सत शब्द बिचारी शब्द मरे मन मारे औदु जोग जुगत बिचारी माया मोह भवजल है अवदु शब्द तरे कुल तारी शब्द सूर जुग चारे औदु बाणी भगत बिचारी एहु मन माया मोहया औदु निकसै शब्द बिचारी आपे बख्शे में मलाए नानक सरन तुम्हारी राम कली महला तीजा अष्टपदियां।

विभूत लाए जोगी ता तीन भवन जन लाया ऐसी किंगरी बजाए जोगी जित किंगरी अनहद वाजै हास्यो रह लिव लाए रहाओ सत संतोख पत कर झोली जोगी अमृत नाम भुगत पाई ध्यान का कर डंडा जोगी सिंही सुरत बजाई मन दृढ़ कर आसन बैस जोगी ता तेरी कल्पना जाई काया नगरी मह मंगन चढ़ जोगी ता नाम पल्ले पाई इत किंगरी ध्यान न लागै जोगी ना सच पल्ले पाए इत किंगरी शांत न आवै जोगी अभमान ना विचों जाए पाओ पाओ दोए पत लाए जोगी एहो शरीर कर डंडी गुरमुख होवै ता तंती वाजै इन

जोग जुगत एव पाए, नदरी आवंदा सब किश बिनसै, हर सेती चित लाए, सतगुर नाल तेरी भावनी लागै, तां एह सोझी पाए। एहो जोग ना होवै जोगी, जे कटंब छोड़ पर भवन करहै, ग्रह शरीर मह हर हर नाम, गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लह। एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी, इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया, अनेक जतन भेख करे जोगी, रोग ना जाए गवाया। हर का नाम औखद है जोगी,

परम पलाय उपदेश कह किस पाई भगत जना की उत्तम बाणी जुग जुग रही समाई बाणी लागे सो गत पाए शब्दे सच समाई काया नगरी शब्दे खोजे नाम नमंग निद पाई मनसा मार मन सहज समाना बिन रसना उस्तत कराई लोयन देख रहे बिस्मादी केता अधिष्ट लगाई अधिष्ट सदा रह निरालम ज्योति ज्योत मलाई हो गुर सलाही सदा अपना

भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सखाई सब किसे आपे आप वरतै नानक नाम वडियाई राम कली महला तीजा हम कुचल कचील अत अभमानी मिल शब्दे मैल उतारी संत हो गुरमुख नाम निसतारी सच्चा नाम वस्या घट अंतर करतै आप सवारी रहाओ पारस परसे फिर पारस हुए हर जीव अपनी कृपा तारी एक भेख करह फिर है अभमानी इन जुए बाजी हारी एक अन दिन भगत करह दिन राती राम नाम उरत हारी अन दिन राते सहजे माते सहजे हो मैं मारी पै बिन भगत न होई कब ही पै पाए भगत सवारी माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत बीचारी आपे आप कराए करता आपे बख्श पंडारी तिस क्या गुणा का अंत ना पाया औगावा शब्द बीचारी हर जियो जपी हर जियो सालाही विच हो आप निवारी नाम पदार्थ गुरते पाया अखुट सच्चे पंडारी अपनिया भगतानो आपे तुठा अपनी कृपा कर कल तारी तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी जियो पिंड सब किश है तिसका आखन बिखम बीचारी शब्द लगे से जन निस्तरे भौजल पार उतारी बिन हर साचे को पार ना पावे बूजै को विचारी जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सवारी काया कंचन शब्दे राती साचे नाई प्यारी काया अमृत रही परपूरे पाईऐ शब्द विचारी जो प्रभ खोज है से ही पाव है और फूट मुए अहंकारी बादी बिन सह सेवक सेव है गुर कै हेत प्यारी सो जोगी तत ज्ञान विचारी हम मैं तृष्णा मारी

अहंकारी जिचर अंतर सास तिचर सेवा कीच जाए मिलिया राम रारी अन दिन जागत रह दिन राती अपने प्रिय प्रीत प्यारी तन मन वारी वार कमाई अपने गुर बिटो बलिहारी माया मोह बिनस जाएगा उभरे शब्द विचारी आप जगाए से जागे गुर कै शब्द विचारी नानक से मुए जे नाम ना चेत है भगत जीवे विचारी राम कली महला तीजा नाम खजाना गुरते पाया कृपत रहे आघाई संत हो गुरमुख मुक्त गत पाई एक नाम वस्या घट अंतर।

पावै नहीं सीजै, कार्ज सबरे मन प्रभति आइजै, इहां उहां एकै ओही, जत कत देखिए तत तत तोही, तिस सेवत मन

राम सगल उदार, ज्यो पावक संग सीत को नास, ऐसे प्रासत संत संग बनास, ज्यो साबुन का परिउजल होत, नाम जपत सब भ्रम पहु खोत, ज्यो चकवी सूरज की आस, ज्यो चात्रिक बूंद की प्यास, ज्यो क्रंक नाद करन समाने, त्यों हर नाम हर जन मन है सुखाने, तुमरी कृपा ते लागी प्रीत दया।

कोट जाने ऊपर नानक वंज वारना राम कली महला पंजवा अष्टपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दर्शन भेटत पाप सब नास है।

आन अंधेर बंजाई करण कारण समरथ स्वामी नानक तिस सरनाई बंधन तोड़ चरण कमल दिरडाई एक शब्द लिवलाई अंधकूप बिख्या ते काढ़ियो।

जन्म मरण की टेक, मुख उज्जल सदा सुखी, नानक सिमरत एक, मन तन राता राम प्यारी, हर प्रेम भगत बन आई संतो, सतगुरु खेप निबाही संतो, हर नाम लाहा दास को दिया, सगली तृष्ण उलाही संतो, रहाउ खोजत खोजत।

सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावणे आईयां शब्दो ता गावो हरि केरा मन जिन्नी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले।

संतोह शब्द करहु प्यारु साचा नाम मेरा आधारु वाजे पंच शब्द तित कर सा भागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको ते नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमाणी देह निमाणी लिवै बाजो क्या करे बेचारिया तुद बाज समरथ कोई नाई किरपा कर बनवारिया एस नौ होर थाऊ नाही शब्द लाग सवारिया।

विचारिया। एक भरम पूले फिर दह देश एक नाम लाग सुआरिया। गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना पाणा पावे। कह नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे। आव हो संत प्यारे हो अकथ की करह कहानी। करह कहानी कथ केरी कित द्वारे पाई है। तन मन तन सब सौंप गुर को हुक्म मन्ने है पाई है। हुक्म मन्ने हो गुरु केरा गाव हो सच्ची बाणी। कह नानक सुनो संत हो कथे हो अकथ कहानी। ए मन चंचला चतुराई किने ना पाया। चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरिया। ए माया मोहनी जिन एत परम पलाया। माया ता मोहनी तने कीती।

सुरलार मुन जाने अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया, जी जंत सब तुद उपाय, एक वेख परसन आया, लब लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया, कह नानक जिसनु आप तुठा, तिन अमृत गुर ते पाया, भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी, विखव मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तज तृष्णा,

कित संयम धोता जाय, मन तो वो शब्द लागो हर सिंह रहो चित लाय। कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, एहो सहसा इव जाय। जियो मैले बाहर हो निर्मल, बाहर हो निर्मल जियो ता मैले। तिन्नी जन्म जू ऐ हारिया, ए तिसना वड्डा रोग लगा। मरन मनो वे सारिया।

जन्म जुए हारिया, जियो निर्मल बाहरो निर्मल, बाहरो ता निर्मल जियो निर्मल, सतगुर ते करनी कमाणी, कूड़ की सोए पहुंचे नाई, मनसा सच समाणी, जन्म रतन

सेती सन्मुख होवै, होवै ता सन्मुख सिख कोई, जियो रह गुर नाले, गुर के चरण हृदय त्याए, अंतर आत्मै सुमाले, आप छड सदा रह परनै, गुर बिन अवर न जाने कोई, कह नानक सुनो संत हो, सो सिख सन्मुख होए, जे को गुर ते वे मुख होवै, बिन सत

दाता जे अगन मह आहार पहुंचावे उसनो केहो पोहे ना सकी जिसनो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाई गुरमुख सदा सुमहली है कह नानके वड़दाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अगन उधर मह तैसी बाहर माया माया अगन सब इको जेही करता खेल रचाया जां तिस भाणा ता जम्मिया परवार भला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह उपजै भाओ दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया हर आप अमुल कहै मुल ना पाया जाई मुल ना पाया जाई किसे विटहु रहे लोक बिललाई ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनों सिर सौंपिए विचों आप जाई।

मेरी मन वणजारा, हर रास मेरी मन वणजारा, सतगुर तेरा आस जानी, हर हर रित जपे हो जियो, लाहा खटे हो दिहाड़ी, एहो धन तिना मिलिया, जिन हरे आपे

प्यास न जाए, प्यास न जाए हूत कित, जिचर हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पीए हर रस, बहुड़ ना तृष्णा लागे आए, एहो हर रस करमी पाईए, सतगुर मिले जिसे आई, कह नानक होर आन रस सब विसरे, जां हर वसे मन आई, ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी, तां तू जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच, तां तू जग मह आया, हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाय जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया, तां चलत हुआ चलत नदरी आया, कह नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी तां तू जग मह आया, मन चाओ पया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनिया, हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सभागे, अपना फिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो।

कर्मक माया, ते कर्मक माया तुझ शरीरा, जा तू जग मह आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूर्व लिखिया पाया, कह नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया, ए नेत्र हो मेरे हो, हर तुम मह जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर ने हालिया, एहो विश संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई, कह नानक एह नेत्र अंध से, सतगुर मिले दे।

भए सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहया परपूरे विनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे राम कली सत एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वसल त्यो लोए जियो गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोई जियो अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम त्यावहे प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो सतगुर करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज राखो हर जनह केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चल दिया हुए बेली जमदूत काल निखंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर धार कृपा सतगुरु मिलाया तन तन कह साबास जियो मेरे सिख सुनो पुत भाई हो मेरा हर भाणा आओ मैं पास जियो हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावई आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मिलावे तुसी पुत भाई परवार मेरा मन वेखो कर निरजास जियो तुर लिखिया परवाणा फिरै नाही गुर जाए हर प्रभ पास जियो सतगुर पाणे अपने बह परवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल ना पाया मित पैजै मित बिगसै जिस मित की पैज पावे तुसी विचार देखो पुत भाई हर सतगुरु पैदावे सतगुरु प्रतख होंदे बहराज आप टकाया सब सिख बंधप पुत भाई रामदास पैरी पाया अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो केसो गोपाल पंडित सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर रंग गुर पावे पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो सतगुर पुरख जे बोलिया गुरसिखा मन लई रजाए जियो मोहरी पुत सनमुख होया रामदास पैरी पाए जियो सब पवै पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया कोई कर बखीली निवै नाही फिर सतगुरु आन निवाया हर गुरह भाणा दी वडियाई तुर लिखिया लेख रजाए जियो कह सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो राम कली महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोयड़ा मेरा साजनड़ा जानियड़ा हर जानियड़ा नैन अलोयड़ा हर जानियड़ा नैन अलोया कट कट सोया हत अमृत प्रिय गूड़ा नाल होंदा लह ना सकंदा सुआओ ना जाने मूड़ा माया मद माता होची बाता मिलन न जाई परम तड़ा कहो नानक गुरबिन नाही सूजै हर साजन सब कै निकट खड़ा गोविंदा मेरे गोविंदा
प्राण आधारा मेरे गोविंदा, कृपाला मेरे कृपाला, दान दातारा मेरे कृपाला, दान दतारा अपर अपारा, कट कट अंतर सोहनिया, एक दासी तारी सबल पसारी, जी जंत लै मोहनिया, जिसनो राखै सो सच भाखै, गुर का शब्द बीचारा, कहो नानक जो

सुगड़ सुजान। सुगड़ सुजाना सद परधाना, अमृत हर का नामा, चाख अगानी सारंग पाने, जिनके भाग मथाना। तिन ही पाया तिन्ह ते आया, सगल तिसे का माणु, कहो नानक थिर तख्त निवासी, सच तिसे दी बाणु। मंगला हर मंगला, मेरे प्रभ कह सुनिए मंगला, सोहिलड़ा प्रभ सोहिलड़ा, अनहद तुनिए सोहिलड़ा, अनहद वाजे शब्द अगाजे, नित नित जिसे वधाई, सो प्रभ त्याई है सब किश पाई है, मरे ना आवे जाई, चूकी प्यासा पूर्ण आसा, गुरमुख मिल निर्गुणी।

रखिन ना विसारी है। राम रामा राम रमा कंठ उर तारी है। उर तार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो। पै दूर करता पाप हरता दुसह दुख भव खंडनो। जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारी है। बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरैन चतारी है। चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिलक भंडार नाम अनंत धरा। नाम नरहर निधान जिनकै रस भोग एक नारायणा। रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्याणा। किल विखहरना नाम पुनः चरना नाम जम की त्रास हरा। बिनवंत नानक रास जन की चरण कमल है आसरा। गुण बेअंत स्वामी तेरे कोई ना जाने। देख चलत दयाल सुन भगत बखाने। जी जंत सब तुझ त्यावह पुरख पत परमेश्वरा। सर्व जाचिक एक दाता करुणा मैं जगदीशरा। साधु संत सुजान सोई जिसे प्रभ जी माने। बिनवंत नानक करहो कृपा सोए तुझ पछाने। मोहे निर्गुण अनाथ सरनी आया बल बल बल गुरुदेव जिन नाम दृढ़ाया। गुरु नाम दिया कुशल थिया सर्व इच्छा पुनिया। जल ने बुझाई शांति आई मिले चिरी बछुनिया। आनंद हरख सहज साचे महामंगल गुण गाया। बिनवंत नानक नाम प्रभ का गुरपुरे ते पाया। राम कली महला पंजवा रुण चुनो शब्द अनाहद। नित उठ गाइय संतन कै किल वेख सब दुख बनासन। हर नाम जपिय गुरमंतन कै हर नाम लीजै अमयो पीजै। रैन दिनस अराधिय जोग दान अनेक क्रिया। लग चरण कमल है सादी है पाओ भगत दयाल मोहन। दुख सगले पर हरै बिनवंत नानक तरै सागर। त्याए स्वामी नर हरै सुख सागर गोविंद सिमरन। भगत गावह गुण तेरे राम अंद मंगल गुर चरणी लागे। पाए सुख कनेरे राम सुख निधान मिलया दुख हरिया। कृपा कर प्रभ राखिया हर चरण लागा भ्रम पौ भागा। हर नाम रसना भाखिया हर एक चितवै प्रभ एक गावै। हर एक दृष्टि आया बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा। पूरा सतगुर पाया मिल रही है प्रभ साध जना। मिल हर कीर्तन सुनिए राम दयाल प्रभु दामोदर माधो। अंत न पाइए गुनिए राम दयाल दुख हर सरन दाता। सगल दुख निवारनो मोह सोग बकार बिखड़े। जपत नाम उदारनो सब जी तेरे प्रभु मेरे। कर कृपा सब रेन थीवा बिनवंत नानक प्रभ मया कीजै। नाम तेरा जप जीवा राख लिए प्रभ भगत जना। अपनी चरणी लाए राम आठ पैर अपना प्रभ सिमरह। एको नाम त्याए राम त्याए सो प्रभ तरे भवजल। रहे आवन जाना सदा सुख कल्याण कीर्तन। प्रभ लगा मीठा पाना सब इच्छ पुन्नी आस पूरी। मिले सतगुर पूरिया बिनवंत नानक प्रभ आप मेले। फिर नाही दुख वसूरिया राम कली महला पंजवा। संत सलोक चरण कमल शरणागति आनंद मंगल गुण गाम। नानक प्रभ आराधी है विपत निवारन राम। संत प्रभ विपत निवारनो तिस बिन अवर ना कोई जियो। सदा सदा हर सिमरी है जल थल महियल सोए जियो। जल थल महियल पूर रहया
एक निमख मनहु ना विसरै, गुर चरण लागे दिन सा भागे, सर्व गुण जगदीसरै, कर सेव सेवक दिन सरैणी, तिस भावै सो होए जियो, बल जाए नानक सुख है दाते, परगास मन तन होए जियो। सलोक हर सिमरत मन तन सुखी, बिनसी दुतिया सोच, नानक टेक गोपाल की, गोविंद संकट मोच। शंत पै संकट काटे, नारायण दयाल जियो, हर गुण आनंद गाए, प्रभ दीना नाथ प्रतपाल जियो। प्रतपाल अचुत पुरख एको, तिसह स्यों रंग लागा, कर चरण मस्तक मेल लीने, सदा अन दिन जागा। जियो पिंड ग्रह थान तिसका, तन जोबन धन माल जियो, सदा सदा बल जाए नानक, सर्ब जिया प्रतपाल जियो। सलोक रसना उचरै हर हरि, गुण गोविंद वखियान, नानक पकड़ी टेक एक, परमेश्वर रखै निदान। शंत सो स्वामी प्रभ रख को, अंचल तांकै लाग जियो, भज साधु संग दयाल देव, मन की मत त्याग जियो। एक ओट की जय जियो दीजै, आस एक धरनी धरै, साध संगे हर नाम रंगे, संसार सागर सब तरै, जन्म मरण बेकार छूते, फिर ना लागै दाग जियो, बल जाए नानक पुरख पूरन, फिर जाका सुहाग जियो। सलोक धर्म अर्थ हर काम मोख, मुक्त पदार्थ नाथ, सगल मनोरथ पूरिया, नानक लिखिया माथ। शंत सगल इच्छ मेरी पुनिया, मिलिया निरंजन राय जियो, आनंद भया वडभागी हो, ग्रह प्रगटे प्रभ आए जियो। ग्रह लाल आए पुरब कमाए, ताकि उपमा क्या गणा, बेअंत पूर्ण सुख सहज दाता, कवन रसना गुण भणा, आपे मलाए गह कंठ लाए, तिस बिना नहीं जाए जियो। बल जाए नानक सदा करते, सब मह रहया समाए जियो। राग राम कली महला पंजवा, रण झुंझनड़ा गाओ सखी, हर एक त्यावो, सतगुरु तुम सेव सखी, मन चिंदियाड़ा फल पावो। राम कली महला पंजवा, रुति सलोक एक ओंकार, सतगुर प्रसाद कर बंधन प्रभ पार ब्रह्म, बांछो साधा धूर, आप निवार हर हर भजो, नानक प्रभ भरपूर। किलविख काटन पै हरन, सुख सागर हर राय, दीन दयाल दुख भंजनो, नानक नीत त्याए। संत जस गाव हो वडभागी हो, कर कृपा भगवंत जियो। रुति महा मूर्त घड़ी, गुण उचरत शोभावंत जियो। गुण रंग राते तन ते जन, जिन्नी एक मन त्याया, सफल जन्म भया तिनका, जिन्नी सो प्रभ पाया। पुन दान ना तुल किरिया, हर सर्ब पापा हंत जियो। बिनवंत नानक सिमर जीवा, जन्म मरण रहंत जियो। सलोक उद्दम अगम अगोचरो, चरण कमल नमस्कार, कथनी सा तुध भावसी, नानक नाम आधार। संत सरण साजन परहो, स्वामी सिमर अनंत, सूके ते हरिया थिया, नानक जप भगवंत। शंत रुत सरस बसंत माह, चेत वसाख सुख मास जियो, हर जियो नाह मिलिया, मौलिया मन तन सास जियो। कर नाह निश्चल आनंद सखिए, चरण कमल पर फुल्लिया, सुंदर सुगड़ सुजान बेता, गुण गोविंद अमूल्या, वड भाग पाया दुख गवाया,
भई पूर्ण आस जियो बिनवंत नानक सरन तेरी मिटी जम की त्रास जियो सलोक साध संगत बिन भ्रम मुई करती कर्म अनेक कोमल बंधन बांधिया नानक कर्म है लेख जो पाणे से मेलिया विछोड़े पी आप नानक प्रभ सरनागती जा का वड प्रताप संत ग्रीख मरुत अत गाखड़ी जेठ अखाड़ काम जियो प्रेम बशोह दहागनी दृष्ट ना करी राम जियो नह दृष्ट आवै मरत हावै महा गर्भ मुठिया जल बाज मछली तड़फड़ावै संग माया रुठिया कर पाप जोनी पै पीत होई दे सासन जाम जियो बिनवंत नानक ओट तेरी राख पूर्ण काम जियो सलोक शरदा लागी संग प्रीत में एक तिल रहन ना जाए मन तन अंतर रव रहे नानक सहज सुभाए कर गहलीनी साजन है जन्म जन्म के मीत चरनहा दासी कर लई नानक प्रभ हित चीत शंत रुत बरस सहेलिया सावन पादवे आनंद जियो धान उन्नम बुठे जल तल पूरिया मकरंद जियो प्रभ पूर रहिया सर्ब ठाई हर नाम नव निध ग्रह भरे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे प्रिय रंग जागे नह शिदर लागे कृपाल सद बख्शिंद जियो बिनवंत नानक हर

है कोई साजन संत जन नानक प्रभ मेलन हार बिन मिल बे शांत ना उपजै तिल पल रहन ना जाए हर साधह शरनागती नानक आस पुजाई संत रोत शरद अडम्बरु असु कट के हर प्यास जियो खोजंती दर्शन फिरत तब मिलिए गुणतास जियो बिन कंत प्यारे नह सूख सारे हार कंगन त्रिक बना सुंदर सुजान चतुर बेती सास बिन जैसे तना ईत उत दह दिस अलोकन मन मिलन की प्रभ प्यास जियो बिनवंत नानक तार कृपा।

नानक प्रभ पूरन मिले, दुतिया बिनसी प्रांत साध पठाए आप हर, हम तुम ते नाही दूर, नानक भ्रम पै मिट गए, रमण राम भरपूर शंत, रुत सिसियर सीतल हर प्रगटे मंगर पोह जियो, जलन बुझी दर्श पाया बिनसे माया त्रोह जियो, सब काम पूरे मिल हजूरे, हर चरण सेवक सेवया, हार डोर शिंगार सब रस, गुण गाओ अलख अपेवया, पाओ भगत गोविंद बांछत, जमना साकै जोहे जियो, बिनवंत नानक प्रभ आप मेली, तहना प्रेम बशोह जियो। सलोक हर तन पाया सुहागिनी, डोलत नाही कीत संत संजोगी नानका, ग्रह प्रगटे प्रभ मीत, नाद बिनोद आनंद कोट, प्रिय प्रीतम संग बनी, मन बांछत फल पाया, हर नानक नाम भने संत, हिम कर रुत मन भावती, माग फगण गुणवंत जियो, सखी सहेली गाओ मंगलो, ग्रह आए हर कंत जियो, ग्रह लाल आए मन त्याए, सेज सुंदर सोहिया, वन त्रिण त्रिपवन भये हरिया, देख दर्शन मोहिया, मिले स्वामी इच्छ पुन्नी, मन जपया निर्मल मंत जियो, बिनवंत नानक नित करो रलिया, हर मिले श्री तारकंत जियो। सलोक संत सहाई जी के, पवजल तारन हार, सब ते उचे जानिए, नानक नाम प्यार, जिन जानिया से तरे, से सूरे से वीर, नानक तिन बलिहार न, हर जप उतरे तीर, संत चरण बराजत सब उपरे, मिटिया सगल कलेश जियो, आवन जावन दुख हरे, हर भगत किया प्रवेश जियो, हर रंग राते सहज माते, टिलना मन ते बिसरे, तज आप सरनी परे चरनी, सर्व गुण जगदीसरे, गोविंद गुण निद श्री रंग स्वामी, आदको आदेश जियो, मिनवंत नानक मया तारहो, जुग जुगो एक वेश जियो। राम कली।

ब्रह्मा उत्पत्त ओंकार किया जिन चेता ओंकार सैल युग भय ओंकार वेद निर्मय ओंकार शब्द उधरी ओंकार गुरमुख तरी ओन में अखर सुनो विचार ओन में अखर त्रे पवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाउ सत्सै सब जग सहज उपाया तीन भवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवै चुन लै माणक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै सात सम्भाले बिन साचे जग काचा तद्दै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन पीरा तद्दै धूल पड़ै मुख मस्तक कंचन भय मनूरा तन धरनी तर आप अजोनी।

भाई, अंतर शब्द साच लिवलाय। रोस न कीजै अमृत पीजै, रहन नहीं संसारे,

निर्मलाय गुणवंती गुण सारे नीत नानक गुरमत मिलिया नीत काम क्रोध काया कौ गल ज्यों कंचन सुहागा ढाले कस कसवटी सह सोताओ नदर सराफ बन्नी सचड़ाओ जगत पशु अहंकाल कसाई कर कर तै करनी कर पाई जिन कीती तिन कीमत पाई होर क्या कही है किस कहन ना जाई खोजत खोजत अमृत पिया खिमा गही मन सतगुर।

या शब्द पछानिया अस्थर कीता मरन मन मानिया गुर किरपा ते नाम पछानिया गगन गंभीर गगन अंतर वास गुण गावै सुख सहज निवास गया न आवै आए न जाय गुर प्रसाद रह लिवलाय गगन अगम अनाथ अजूनी अस्थर चीत समाध सुगुनी हर नाम चेत फिर पवह ना जूनी गुरमत सार होर नाम बिहूनी घर दर फिर था की बहु तेरे जात असंख अंत नहीं मेरे केते मात पिता सुत धियां केते गुर चेले फुन हुआ काचे गुरते मुक्त ना हुआ केती नार वर एक संभाल गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल दह दिस ढूंढ करे मह पाया मेल भया सतगुरु मलाया गुरमुख गावे गुरमुख बोले गुरमुख तोल तलावे तोले गुरमुख आवे जाए न संग पर हर मैल जलाए कलंक गुरमुख नाद वेद विचार गुरमुख मज्जन चज आचार गुरमुख शब्द अमृत है सार नानक गुरमुख पावे पार चंचल चीत न रही ठाई चोरी मिर्ग अंगूरी खाए चरण कमल उर तारे चीत चिर जीवन चेतन नित नीत चिंतत ही दिसै सब कोय चित है एक तही सुख होए चित वसै राचै हर नाय मुक्त भया।

खुलै एक गंड छिया नित देखो जग हंड धूप शाम जे सम कर जान बंधन काट मुक्त कर आण छाया शूशी जगत भुलाना लिखिया किरत तुरे परवाना सीजै जोबन जरुआ सिरकाल काया सीजै पई सिबाल जापै आप प्रभु तिहु लोई।

जागत जाग रहा तुद पावा, जा तू मेलहै ता तुझै समावा। जय जय कार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीस अकीस। चख बोलन क्या जग स्यों वाद, झूर मरे देखै परमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पय आस मरासा। चुर चुर चख माटी रल जा।

गुर कहया साकार कमावहु गुर की करनी काहे तावहु नानक गुरमत साच समावहु टूटे नेहो के बोलह सही टूटे बाहा दुहू दिस गही टूट परीत गई बुर बोल दुर्मत पर हर छाडी ढोल टूटे गंठ पड़े विचार गुर शब्दी घर कारज सार लाहा साच न आवे टोटा त्रे पवन ठाकुर प्रीतम मोटा ठाको मनुआ राखो ठाई ठहक मुई अब गुण पछताय ठाकुर एक सबाई नार बहुते वेश करे कूड़ियार पर घर जाती ठाक रहाई महल बलाई ठाक न पाई शब्द सवारी साच प्यारी साई सुहागन ठाकुर तारी डोलत डोलत हे सखी फाटे चीर सिंगार दाहपन तन सुख नहीं बिन डर बिन ठी डार डरप मुई घर आपने दीठी कंत सुजान डर राख्या गुरे आपने निरपहु नाम बखान डूंगर वास तिखा कणी जब देखा नहीं दूर तिखा नवारी शब्द मन अमृत पिया भरपूर देह देह आखे सब कोई जय भावे तै दे गुरु द्वारे देवसी तिखा नवारे सोई टंडोलत टूंडत हों फिरी तह तह पवन करार पारे तहते तह पए हौले निकसे पार अमर अजाची हर मिली तिनका हों बल जाऊं तिनकी धूड़ अकुली है संगत मेल मलाऊं मन दिया गुर आपने पाया निर्मल नाऊं जिन नाम दिया तिस सेव सां तिस बलिहारे जाऊं जो असारे सो ताहसी तिस बिन अवर ना कोई गुर परसादी तिस सम्मला तां तन दुख ना होए ना को मेरा किस गही ना को हुआ ना हो।

कंध ग्रंत विण नावै क्यों छूटिए जाए रसातल अंत गणत गणावै अखरी अगणत साचा सोए अज्ञानी मतहीन है गुर बिन ज्ञान ना होए टूटी तंत्र बाब की वाजै नहीं वियोग विछड़िया मेलै प्रभु नानक कर संजोग तरवर काया पंख मन तरवर पंखी पंच तत चुगह मिले एक से तिनको फास नारंच।

हर मोए माया किसै ना साथ, हंस चलै उठ डुम्मण माया भूली आथ। मन झूठा जम जोहया अवगुण चलै नाल, मन मह मन उल्टो मरे जे गुण होवै नाल। मेरी मेरी कर मुए विण नावै दुख पाल, गढ़ मंदर महला कहां ज्यों बाजी दी बाण। नानक सच्चे नाम।

अपना तन मन आगे देव अस्त्र करता तू तनी तिस ही की मैं ओट गुण की मारी हो मुई शब्द

राह गुरा पिहावला सर ढूंगर असगाह मैं तन अवगुण चुर मुई विन गुण क्यों कर जाह गुणिया गुण ले प्रभ मिले क्यों तिन मिलो प्यार तिन ही जैसी थी रहा जप जप हृदय मुरार अवगुणी भरपूर है गुण पी वसह नाल बिन सतगुर गुण ना जापनी जिचर शब्द ना करे बीचार नस करिया घर संभले आए वजह लिखाए कार कमावे है सिर धनी लाहा पल्ले पाए लब लोभ बुरे आईया छोडे मनो विसार गढ़ दोही पातशाह की कदे ना आवे हार चाकर कहिए खसम का सौहे उत्तर दे वजहो गवाए अपना तख्त ना बैसह से प्रीतम हथ वडियाईया जय भावे तै दे आप करे किसे आखिए अवर ना कोई करे बीजो सूजै को नहीं बह दलीचा पाए नरक नवारन नरह नर साचो साचै नाय वाण त्रिण ढूंढत फिर रही मन मह करो विचार लाल रतन बहु मान की सतगुर हाथ भंडार उत्तम होवा प्रभ मिले एक मन एक पाए नानक प्रीतम रस मिले लाहा लै परथाय रचना राच जिन रची जिन सिरिया आकार गुरमुख बे अंत त्याई है अंत ना पारावार हड़ाड़े रूड़ा हर जियो सोई तिस बिन राजा अवर ना कोई हड़ाड़े गारड़ तुम सुनो हर वस्ते मन माही गुर प्रसादी हर पाई है मत को परम पलाही सो साहो साचा जिस हर धन रास गुरमुख पूरा तिस साबास रूड़ी बाणी हर पाया गुर शब्दी बीचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोयना रूपा संचिय धन का चा बिखशार साहू सदाए संच धन दुबदा हुए खुआर सचियारी सच संचिया।

साचो ठाकुर मन वसै हौं बलिहारी तिस माया ममता मोहनी जिन कीती सो जान बिख्या अमृत एक है बूझै पुरख सुजान खिमा विहूणे खप गए हूहन लख असंख गणत ना आवै क्यों गणी खप खप मुए बिसंख खसम पछाणे अपना खूलै बंद ना पाई शब्द महली खरा तू खिमा सच सुख पाई खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसह शरीर मन तन मुख जापै सदा गुण अंतर मन धीर हों मैं खपै खपाए सी बीजो वथ विकार जंत उपाय विच पायन करता अलग अपार सृष्टि प्यो न जाने कोए सृष्टा करै सुनिश्चो होए संपै को ईश्वर त्याई संपै पुरब लिखे की पाई है संपै कारण चाकर चोर संपै साथ ना चालै होर बिन साचे नहीं दरगाह मान हर रस पीवै छुटै निधान हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान हौं हौं करती मैं मुई शब्द रवै मन ज्ञान हार डोर कंकन घने कर था की शिंगार मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गलहार नानक गुरमुख पाई है हर स्यों प्रीत प्यार हर बिन किन सुख पाया देखो हो मन विचार हर पढ़ना हर बुझना हर स्यों रखो प्यार हर जपी है हर त्याई है हर का नाम आधार लेख न मिटई हे सखी जो लिखिया करतार आपे कारण जिन किया कर कृपा पग धार करते हथ वडियाईया बूझो हो गुर बीचार लिखिया फेर न सकी है ज्यों भावी त्यों सार नदर तेरी सुख पाया नानक शब्द विचार मनमुख भूले पच मोए उबरे गुर बीचार जे पुरख नदर ना आवे तिसका क्या कर कहया जाय बलिहारी गुर अपने जिन हिरदै दिता दिखाय पांदा पढ़िया आखिया विद्या विचरै सहज सुभाय विद्या सोधै तत लह राम नाम लिवलाय मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटै बिख खाय मूरख शब्द ना चीनई सूझ बूझ नह काय पांदा गुरमुख आखिया चाटड़िया मत दे नाम संभालो नाम संग्रहो लाहा जग महली सच्ची पट्टी सच मन पढ़िए शब्द सो सार नानक सो पढ़िया सो पंडित बीना जिस राम नाम गलहार राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ट एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारु तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारु मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देउ नानक संत मिले सच पाईए सहज पाई जस लेउ क्या भवी है सच सूचा होए साच शब्द बिन मुक्त ना कोए रहाओ कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआओ साच कहो अरदास हमारी हौ संत जना बल जाओ कह बैसो हो कह रही है बाले कह आवो कह जाओ नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहु घट घट बैस निरंतर रही है चल है सतगुर भाई सहजे आए हुक्म सुधाई नानक सदा रजाय आसन बैसन फिर नारायण ऐसी गुरमत पाई
गुरमुख बूझै आप पछाणै, सच्चे सच समाई दुनिया सागर दुत्तर कहियै, क्यों कर पाइयै पारू चरपट बोलै औदू नानक, देहो सच्चा बीचारू आपे आखै आपे समझै, तिस क्या उत्तर दीजै, साच कहो तुम पार गरामी तुझ क्या बैसन दीजै, जैसे जल मह कमल नरालम मुर्गाई नैसाणी, सुरत शब्द भव सागर तरियै नानक नाम वखाणी, रह एकांत एको मन वसिया आसा माही निरासू, अगम अगोचर देख दिखाए नानक ताका दासू, सुन स्वामी अरदास हमारी।

गत मित शब्दे पाई आद कौ विस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकलपत मुंदरा गुर ज्ञान विचारियले घट घट साचा सर्ब जिया गुर बचनी अवगत समाई है।

एक माया झूठे आवह ठवर ना पावह, दूजे आवागौण भया आवागौण मिटै गुर शब्दी, आपे परखै बख्श लया।

कहां मह जोगी परमाई सन्यासी से चार गुर कै शब्द जो मर जीवे सो पाए मोख द्वार बिन शब्द सब दूजे लागे देखो हृदय विचार नानक वड्डे से वड भागी जिन्नी सच रखिया उर धार गुरमुख रतन लह लिवलाय गुरमुख परखै रतन सुभाय गुरमुख साची कार कमाय गुरमुख साचे मन पतियाय गुरमुख अलख लखाए तिस भावै नानक गुरमुख चोट ना खावे गुरमुख नाम दान इशनान गुरमुख लागे सहज ध्यान गुरमुख पावे दरगाह मान गुरमुख पौ भंजन प्रधान गुरमुख करनी कार कराई नानक गुरमुख मेल मलाय गुरमुख शास्त्र सिमरत वेद गुरमुख पावे घट घट भेद गुरमुख वैर विरोध गवावे गुरमुख सगली गणत मटावे गुरमुख राम नाम रंग राता नानक गुरमुख खसम पछाता बिन गुर भरमै आवै जाई।

अपना पुन्न घट घट सुन का जाने पेव आद पुरख निरंजन देव जो जन नाम निरंजन राता नानक सोई पुरख विधाता सुनो सुन कह सब कोई अनहत सुन कहां ते होई अनहत सुन रते से कैसे जिस ते उपजे तिस ही जैसे कोई जन्म ना मरह ना आवह जाहि नानक गुरमुख मन समझाहि नौ सरस भार दसवें पूरे तह अनहत सुन बजावह तूरे साचे राचे देख हजूरे घट घट साच रहिया पर पूरे गुप्ती बाणी प्रगट होए नानक परख लए सच सोए सहज भाए मिलिए सुख होवे गुरमुख जागे नींद ना सोवे सुन शब्द अपरंपर तारे कहते मुक्त शब्द निस्तारे गुर की दीखिया से सच राते नानक आप गुआए मिलन नहीं प्रांते कबुद्ध चुआवे सो के तठाए क्यों तत न बूझे चोटा खाए जम दर बाते कोई न राखे बिन शब्द नाही पत साखे क्यों कर बूझे पावे पार नानक मन मुख ना बुझे गवार कबुद्ध मिटे गुर शब्द बीचार सतगुर भेटे मुख द्वार तत ना चीने मन मुख जल जाए दुरमत विछड़ चोटा खाए माने हुक्म सबे गुण ज्ञान नानक दरगाह पावे मान साच वखर धन पल्ले होए आप तरह तारे पी सोए सहज रत्ता बूझे पत होए ता की कीमत करे ना कोई जह देखा तह रहे आसमाए नानक पार परे सच पाए सो शब्द का कहा वास कथियले जित तरिया भवजल संसारो त्रै सत अंगुल वाई कही है तिस कहो कवन अधारो बोले खेले अस्थिर होवे क्यों कर अलख लखाए सुन स्वामी सच नानक प्रणवे अपनी मन समझाए गुरमुख शब्दे सच लिव लागे कर नदरी मेल मलाए आपे दाना आपे बीना पूरे भाग समाय सो शब्द को निरंतर वास अलखं जह देखा तह सोई पवन का वासा सुन निवासा अकाल कला धर सोई नदर करे शब्द घट मह वसै विचों भरम गवाई तन मन निर्मल निर्मल बाणी नामो मन वसाय शब्द गुरु भव सागर तरिया इत उत एको जाने चेहन वर्ण नहीं छाया माया नानक शब्द पछाण त्रै सत अंगुल वाई औदू सुन सच आहारू गुरमुख बोले तत बिरोले

नानक त्यों ते ऊपर साचा सतगुर शब्द समाय मन का जियो पवन कथि अले पवन कहां रस खाई ज्ञान की मुद्रा कवन औदू सिद्ध की कवन कमाई बिन शब्द रस न आवे औदू हम मैं प्यास न जाई शब्द रत्ते अमृत रस पाया साचे रहे अगाई कमल बुद्ध जित अस थिर रही है कित भोजन तृपता सह नानक दुख सुख सम कर जापै सतगुर ते काल ना ग्रासै रंग ना राता रस नहीं माता बिन गुर शब्द है जल बल ताता बिंद ना राखिया शब्द ना भाखिया पवन ना साध्या सच ना अराध्या कथ कथा ले सम कर रह तो नानक आत्म राम कौल है।

आत्म सुख धारी सच अराध्या गुरमुख तर तारी नानक बूझै को विचारी एहो मन मैगल कहां बसियले कहां बसै एहो पवना कहां बसै सो शब्द औदू ताको चूकै मन का पवना नदर करे ता सतगुर मेले ता निज करवासा एहो मन पाए आपे आप खाए ता निर्मल होए तावत वर्ज रहाए क्यों मूल पछाणे आत्म जाने क्यों सस कर सूर समावे गुरमुख मैं विचों खोवे तव नानक सहज समावे एहो मन निश्चल हृदय बसियली गुरमुख मूल पछाण रह नाभ पवन घर आसन बैसै गुरमुख खोजत तत लह सो शब्द निरंतर निज घर आसै त्रे भवन जोत सो शब्द लह।

सच सफाकै, सच रपै रंग कबहू ना जावै। जां एहो हिरदा देह ना होती, तौ मन कै ठै रहता। नाभ कमल अस्थंभ ना होतो, ता पवन कमन घर सहता। रूप ना हो तो रेख ना काई, ता शब्द कहां लिवलाई। रखत बिंद की मड़ी ना होती, मित कीमत नहीं पाई। वर्ण भेख असरूप ना जापी, क्यों कर जापस साचा। नानक नाम रते बैरागी, इब तब साचो साचा। हिरदा दे ना होती ओदू, तौ मन सुन रह बैरागी। नाभ कमल अस्थंभ ना होतो, ता निज कर बस तौ पवन अनरागी। रूप ना रेखिया जात ना होती, तौ अकुल लीन रहतो शब्द सोसार। गौन गगन जब तब है ना होतो, त्रे पवन ज्योत आपे निरंकार। वर्ण भेख असरूप सो एको, एको शब्द वडाणी। साच बिना सूचा को नाही, नानक अकथ कहानी। कित कित बिद जग उपजै पुरखा, कित कित दुख बिन सजाई। हम मैं विच जग उपजै पुरखा, नाम विसरे है दुख पाई। गुरमुख होवै सो ज्ञान तत बीचारै, हम मैं शब्द जलाई। तन मन निर्मल निर्मल बाणी, साचै रहै समाई। नामे नाम रहै बैरागी, साच रखिया उर धारी। नानक बिन नावै जोग कदे ना होवै, देखो हृदय बीचारी। गुरमुख साच शब्द बीचारै कोई, गुरमुख सच बाणी प्रगट होई। गुरमुख मन भीजै विरला बूझै कोई, गुरमुख निज घर वासा होई। गुरमुख जोगी जुगत पछाणै, गुरमुख नानक एको जाणै। बिन सतगुर सेवे जोग ना होई, बिन सतगुर भेटे मुक्त ना कोई। बिन सतगुर भेटे नाम पाया ना जाई, बिन सतगुर भेटे महा दुख पाई। बिन सतगुर भेटे महा गर्भ गोबार, नानक बिन गुर मुआ जन्म हार। गुरमुख मन जीता हो मैं मार, गुरमुख साच रखिया उर धार। गुरमुख जग जीता जम काल मार बिदार। गुरमुख दरगाह ना आवै हार, गुरमुख मेल मलाए सो जाणै। नानक गुरमुख शब्द पछाणै, शब्दै कान बेड़ा सुन तू औदू। बिन नावै जोग ना होई, नामे राते अन दिन माते। नामै ते सुख होई, नामै ही ते सब प्रगट होवै। नामे सोजी पाई।

सहसा गया बलाय। ना किश बीजे ना उगवै, जो बख्शे सो खाय। अम्बह सेती अम्बर अलिया, बहुड़ ना निकसिया जाय। नानक

कोई, राम कसौटी सो सहै, जो मर जीवा होए। महला तीजा, क्यों कर इहो मन मारिया, क्यों कर मृतक होए। कहया शब्द ना मानी, हऊ मैं छड्डै ना कोई, गुर प्रसादी हऊ मैं छुट्टै, जीवन मुक्त सो होए। नानक जिसनो बख्शे तिस मिलै, तिस बिघन ना लागै कोई। महला तीजा, जीवत मरना सब को कहै, जीवन मुक्त क्यों होए। भय का संयम जे करे, दारू भाउ लाए, अन दिन गुण गावै सुख सहजे, बिख भउ जल नाम तरे। नानक गुरमुख पाईऐ, जा कौ नदर करी पौड़ी, दूजा भाउ रचायो, त्रै गुण वरतारा, ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन, हुक्म कमावन कारा। पंडित पढ़ दे जोत की, ना बूझ बिचारा, सब किस तेरा खेल है, सच सिरजन हारा। जिस भावै तिस बख्श लै, सच शब्द समाई। सलोक महला तीजा, मन का झूठा झूठ कमावै, माया नू फिरै तपा सदावै। परमे भूला सब तीर्थ गह, ओह तपा कैसे परम गत लह। गुर प्रसादी को सच कमावै, नानक सो तपा मुख अंतर पावै। महला तीजा, सो तपा जे

जे पर कर भोजन करेन उदरै कारण आपणे बहले भेख करेन अभ्यागत से नानका जे आत्म गौण करेन पाल लहन सहो अपना निज कार रहन करेन पौड़ी अंबर धरत विछोड़ियन विच सच्चा असराउ घर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाउ सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच समाउ सच्चा आप तखत सच्चा वह सच्चा करे नियाउ सब सचो सच वर्तदा गुरमुख अलख लखाई।

लोग रथ विचों जाए, ज्यों बैसंतर धात सुध होए, त्यों हर का पौ दुरमत मैल गुआई। नानक तेजन सोहनी जो रते हर रंग लाए, महला तीजा राम कली राम मन वसिया, ता बनिया शिंगार गुर कै शब्द कमल बिगसिया, ता सौंपिया भगत भंडार।

सच सिफत समावे है, सच्चा गहर गंभीर है, गुर शब्द बुझाई। सलोक महला तीजा, सच्चा नाम त्याए तू, सबो वरतै सच, नानक हुक्म है जो बुझै, सो फल पाए सच। कथनी बदनी करता फिरै, हुक्म ना बुझै सच, नानक हर का पाणा मन्ने, सो भगत होए। विण मन्ने कच न कच महला तीजा, मनमुख बोल ना जाननी, ओना अंदर काम क्रोध अहंकार, होए थाओ कथाओ ना जाननी, उने अंतर लोभ विकार, होए अपने सुआए आए बह गल्ला करह, ओना मारे जम जंदार, अगे दरगाह लेखा मंगी है, मार खुआर की चह कूड़ियार, ए कूड़े की मल क्यों उतरै, कोई कड्डो एहो विचार। सतगुर मिले ता नाम दड़ाई, सब किल विख कटन हार, नाम जपे नामो अरादे, तिस जन को करहो सब नमस्कार। मल कूड़ी नाम उतारियन, जप नाम हुआ सच्यार, जन नानक जिस दे एह चलत है, सो जीवो देवन हार पौड़ी। तुद जेवन दाता नाही, किस आख सुनाई है, गुर प्रसादी पाए जिथों हो मैं जाई है, रस कस सादा बाहरा सच्ची वड्याई है, जिसनो बख्शे तिस दे आप ले मलाई है, काटे अंतर अमृत रखियोन, गुरमुख किसे प्याई। सलोक महला तीजा, बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन, जे सतगुर भावै सो मन लैन, से ही कर्म करेन। जाए पुछो सिमरत सास्त ब्यास सुख नारद, बचन सब सृष्ट करेन। सच्चै लाए सच लगे, सदा सच समालेन, नानक आए से परवान पहे, जे सगले कुल तारेन। महला तीजा, गुरु जिना का अंधला, सिख पी अंधे कर्म करेन, वे पाणे चलन अपने, नित झूठो झूठ बोलेन। कूड़ कसत कमाम दे, पर निंदा सदा करेन, कोई आप डुबे पर निंदका, सगले कुल डुबेन। नानक जित ओए लाए तित लगे, ओए बपड़े क्या करेन पौड़ी। सब नदरी अंदर रखदा, जेती सिष्ट सब कीती, एक कूड़ को सत लायन, मनमुख वे गूती। गुरमुख सदा ते आई है, अंदर हर प्रीति, जिनको पोतै पुन है, इन वात सपीति। नानक नाम त्याई है, सच सिफत सुनाई। सलोक महला पहला, सती पाप कर सत कमाही, गुर दीखिया घर देवन जाहि, स्त्री पुरखै खटिया भाव, भावै आव भावै जाओ। सास्त बेद न मानै कोई, आपो आपै पूजा होए, काजी होए कै बह न्याई, फेरे तस्बी करे खुदाई, बड्डी लै कै हक गवाए, जे को पुछै ता पढ़ सुनाई। तुरक मंत्र कन हृदय समाहि, लोक महावह चाड़ी खाहि, चौका दे कै सुचा होए, ऐसा हिंदू वेखो कोई। जोगी गिरही जटा बेपूत, आगे पाछे रोवह पूत, जोग न पाया जुगत गवाई, कित कारण सिर शाही पाई।

सो जाए सियाण, होर पकड़ हिंदू मुसलमान, सबना का दर लेखा होए, करनी बाज हो तरे ना कोई, सचो सच बखाने कोई, नानक अग्गे पुछ ना होए पौड़ी, हर का मंदर आखिए काया कोटगढ़, अंदर लाल जवेरी गुरमुख हर नाम पढ़, हर का मंदर शरीर अत सोहना, हर हर नाम देड़, मनमुख आप खुआयन माया मोह नित काढ़, सबना साहिब एक है पूरे भाग पाया जाई। श्लोक महला पहला। ना सत दुखिया ना सत सुखिया, ना सत पानी जंत फिरह, ना सत मूंड मडाई केसी, ना सत पढ़िया देश फिरह, ना सत रुखी बिरखी पत्थर, आप तशाव है दुख सह, ना सत हस्ती बदे संगल, ना सत गाई काहु चरह, जिस हथ सिद्ध देवै जे सोई, जिसनो दे तिसे आए मिले, नानक ताको मिले बढ़ाई, जिस घट भीतर शब्द रवै, सब घट मेरे हो सबना अंदर, जिसे खवाई तिस कौन कह, जिसे दिखाला वाटड़ी किसे पलावे कौन, जिसे पलाई पंध सिर किसे दिखावे कौन। महला पहला। सो गिरही जो निग्रह करे, जप तप संयम भीख्या करे।

है संताप, औ हट पट्टण में है भीख्या करे, सो अवतूती सेवपुर चढ़े, बोले गोरख सत स्वरूप, परम तंत में है रेख न रूप, महला पहला, सो उदासी जे पाले उदास, अर्ध उर्ध करे निरंजन वास, चांद सूरज की पाए गंड, जिस उदासी का पड़े ना कंद, बोले गोपी चंद सत स्वरूप, परम तंत मह रेख न रूप, महला पहला, सो पाखंडी जे काया पखाली, काया की अगन ब्रह्म पर जाली, सुपने बिंद न दे झरना, तिस पाखंडी जरा न मरना, बोले चरपट सत स्वरूप, परम तंत मह रेख न रूप, महला पहला, सो बैरागी जे उल्टे ब्रह्म, गगन मंडल मह रूप थम, अहनस अंतर रह ध्यान, ते बैरागी सत समान।

आई पौड़ी। हर मंदिर सोई आखी है जिथों हर जाता, मानस दे गुरबचनी पाया सब आत्म राम पछाता। बाहर मूल ना खोजी है कर माहे बधाता, मनमुख हर मंदिर की।

मूर्ख के क्या लक्षण है, क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओह जे मुग्ध है अहंकारे मरना, एत कमाण सदा दुख दुख ही मह रहना। अत प्यारा पवे खुहु केहो संयम करना, गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपे आप उधरे ओस पिछे डुब दे पी तरना, नानक जो तिस पावे सो करे जो दे सो सहना। महला पहला नानक आखे रे मना, सुनिए सिख सही लेखा रब मगेसिया, बैठा कड वही तलबा पौसन आकिया, बाकी जिना रही अजराइल फरिश्ता होसी आए तई, आवन जान ना सुजई पीड़ी गली फही, कूड़न खुटे नानका ओड़क सच रही। पौड़ी हर का सब शरीर है, हर रब रहया सब आपे, हर की कीमत ना पवे किस कहन ना जापे, गुर प्रसादी सलाही है हर भगती रापे, सब मन तन हरिया होया अहंकार गुआपे।

इंद्र रो आया, परशुराम रो वह घर आया, अजय सुरो वह भीख्या खाई, ऐसी दरगाह मिले सजाई, रोए राम निकाला पया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया, रोए दह सिर लंक गवाई, जिन सीता आंधी डौरू वाई, रोए है पांडव पये मजूर, जिनकै स्वामी रहत हदूर, रोए जनमेजा खोए गया, एकी कारण पापी पया, रोए है शेख मसाइक पीर, अंतकाल मत लागे पीड़, रोवे है राजे कान पड़ाए, कर कर मांगे है भीख्या जाए, रोवे है किरपन संच है धन जाए, पंडित रोवे है ज्ञान गवाए, बाली रोवे नाहे पतार, नानक दुखिया सब संसार, मन्ने नाओ सोई जन जाए, औरी कर्म ना लेख लाए, महला दूजा जप तप सब किश मन्ने है, अवर कारा सब बाद, नानक मन्या मन्नी है, बुझिए गुर प्रसाद पौड़ी, काया हंस तुर मेल करतै लिख पाया, सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया, गुण गावे गुण उच्चरै गुण माही समाया, सच्ची बाणी सच है सच मेल मलाया, सब किसे आपे आप है आपे दे वड़ियाई, श्लोक महला दूजा, नानक अंधा होए कै रत्ना।

है दूजे भाई बोले, दूजे भाई सदा दुख है नित नीर बरोले, गुरमुख नाम त्याई है मत तत कडोले, अंतर परगास घट चानना हर लद्दा टोले, आपे परम भुलाएगा किछ कहण ना जाई। श्लोक महला दूजा नानक कि

मोहत किस हन्ने, सच पराणा हुवै नाही, सीता कदे ना पाटे, नानक साहिब सचो सच्चा, तिचर जापी जापे महला पहला, सच की काती सच सब सार, घाड़त तिस की अपर अपार, शब्दे सान रखाई लाए, गुण की थे

नानक जो मर जीवया सहला आया सोए महला तीजा, ना किस आसा हथ है क्यों निराशा होए, क्या करे एह बपड़ी जा भलाए सोए पौड़ी। त्रिग जीवन संसार सच्चे नाम बिन, प्रभ दाता दा तार निचल एहो धन, सास सास अराधे निर्मल सोए जन, अंतर जामी अगम रसना एक पन, रव रहे आसरबत नानक बल जाई। श्लोक महला पहला, सरवर हंस तुरे ही मेला, खसमै वै पाणा सरवर अंदर हीरा मोती, सो हंसा का खाना बगला काग ना रही सरवर,

आपे रंग रटिया कुदरत कीम ना पाए अलख ब्रह्मटिया अगम अथाह बेअंत परे परटिया आपे वड पातशाह आप वजीरटिया कोई ना जाने कीम केवड़ मटिया सच्चा साहिब आप गुरमुख प्रगटिया सलोक महला पंजवां सुन सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुरु देहो देखाल हूं तिस देवा मन अपना नित हिरदय रखा संभाल इकस सतगुर बाहरा त्रिग जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मलायुन।

प्रभु सेविया तिस जेवड़ अवर ना कोई पौड़ी देवन हार दतार कित मुख सलाही है जिस रखै कृपा तार रिजक समाही है कोई ना किस ही वस सबना एक तार पाले बालक वांग दे कै आप कर करदा अनद बनोद किशु ना जानिए सर्व धार समरथ हो तिस कुर्बानी है गाइए रात दिनंत गावन जोगिया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगिया श्लोक महला पंजवा भीड़ो मोकलाई कीतियन सब रखे कटंबे नाल कारज आप सवारियन सो प्रभ सदा संभाल।

जाने टिचर रखन गंड जित दिन किछ ना होवै तित दिन बोलन गंद जी की सार ना जाननी मनमुख ज्ञानी अंद कूड़ा गंड ना चलई।

देहो दर्श मन प्यार पौड़ी जिस तू आवह चेता तिसनु सदा सुख जिस तू आवह चेता

हर हर कहावे, वैष्णो नाम कर्म हो जुगता, तोह कुटे क्या फल पावे, हंसां विच बैठा भग न बणी, नित बैठा मच्छी नो तार लावे, जां हंस सभा विचार।

आई अवर से आड़ पछाड़ दे नानक उदरस नाई पौड़ी ना तू आवह वस बहुत कनावणे ना तू आवह वस वेद पढ़ावणे ना तू आवह वस तीरथ नाइय।

मन तन हृदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ उपदेश सुनो तुम गुर सिखो हो सच्चा एह सुआओ जन्म पदार्थ सफल होए मन में है लायो पाओ सुख सहज आनंद घना प्रभ जपत्या दुख जाए नानक नाम जपत सुख उपजे दरगाह पाईए थाऊ महला पंजवा नानक नाम त्याई है गुरपूरा मत दे भाणे जप तप संयमो भाणे ही कड ले भाणे जून पवाई है भाणे बख्श करे भाणे दुख सुख भोगी है भाणे कर्म करे भाणे मिट्टी साज कै भाणे जोत तरे।

जिस भगती लाए नानक विरले पौड़ी वड्याई सच्चे नाम की हो जीवा सुन सुने पशु प्रेत अज्ञान उधारे एक खाने जिनस रहन तेरा नाऊ सदा सद जापी है तृष्णा भुख विकराल नाए तेरे त्रापी है रोग सोग दुख वंजै जिस नाऊ मन वसै तिसह प्राप्त लाल जो गुर शब्दी रसै खंड ब्रह्मांड बेअंत उदाहरण हारिया तेरी शोभा तुद सच्चे मेरे प्यारिया। श्लोक महला पंजवां मित्र प्यारा नानक जी मैं छड गवाया रंग कसुंबै भुली तौ सज्जन की मैं कीम ना पाउंदी हौ तुद बिन अड ना लहंदी। महला पंजवां सस वरायण नानक जीओ ससुरावादी जेठो पौ पौलू है हबे भस पुणेंदे वतन जा मैं सज्जन तू है पौड़ी जिस तू बुठा चित तिस दर्द निवारणो जिस तू बुठा चित तिस कदे ना हारनो जिस मिलिया पूरा गुरु सो सर पर तारनो जिसनो लाए सच तिस सच संभालनो जिस आया हाथ निदान सो रहया पालनो जिसनो एको रंग भगत सो जानो।

दसावर पंदा ताहों सुख सखाली सुती जा गुरमिल सज्जन मैं लद्दा पौड़ी सबे दुख संताप जा तुद्दों भुली है जे की चन लाखे अपाव ता कहीं ना भुली है जिसनो विसरै नाउ सो निर्धन कांडी है जिसनो विसरै नाउ सो जोनी हांडी है जिस खसम ना आवै चेता तिस जम डांड दे जिस खसम ना आवी चेता रोगी से गणे जिस खसम ना आवी चेत सो खरो अहंकारिया सोई दोहेला जाग।

अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किस जान ला सब किस तेरे वस तेरा घर भला तेरे घर आनंद वधाई तुद घर मान महत्ता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर जिसे जत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिनवता। श्लोक महला पंजवा सतड़े बाजार सोहन।

जो नर पीर ने वाजिया तिना अंचना लाग महला पंजवा फरीदा उम्र सुहावड़ी संग सवनड़ी दे बिरले के पाइन जिन्ना प्यारे ने पौड़ी जप तप संयम दया धर्म जिस देहे सो पाई जिस बजाए अग्नि आप सो नाम ते आई अंतर जामी अगम पुरख एक दृष्ट दिखाई साध संगत कै आसरै प्रभ सिउ रंग लाई औगण कट मुख उजला हर नाम तराई जन्म मरण भौ कट्यों फिर जोन ना पाई अंधकूप ते काढ़ियन लाड़े आप फड़ाई नानक बख्श मलायन रखे गल लाई सलोक महला पंजवा महबत जिस खुदाए दी रत्ता रंग चलूल नानक विरले पाई है तिस जन कीम ना मूल महला पंजवा अंदर विद्दा सच नाई बाहर पी सच डिठो नानक रव्या हब थाई वन त्रिण त्रे भवन रोम पौड़ी आपे की तो रचन आपे ही रत्या आपे होयो एक आपे बहु पत्या आपे सबना मंज आपे बाहरा आपे जान है दूर आपे ही जाहरा आपे हो है गुपत आपे प्रगटिय कीमत किसे ना पाए तेरी थटिय गहर गंभीर अथाह अपा

ज्ञान मेलो गुर का शब्द गुण की नरे तृष्णा काम क्रोध मद मत्सर काट काट कस दी नरे कोई है रे संत सहज सुख अंतर जाको जप तप देव दलाली रे एक बूंद भर तन मन देवो जो मद दे कलाली रे रहाउ पवन चतर दस भाठी कीनी ब्रह्म यगन तन जारी रे मुंदरा मदक सहज धुन लागी सुखमन पोचन हारी रे तीरथ बरत नेम सुच संयम रव सस गहन देओ रे सुरत प्याल सुधा रस अमृत एहो महारस प्यो रे निचार धार चोवै अत निर्मल एह रस मनुआ रातो रे कह कबीर सगले मद छूछै एह महारस साचो रे गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर महुआ पौ पाठी मन धारा सुख मन नारी सहज समानी पीवै पीवन हारा औदू मेरा मन मतवारा उन मद चढ़ा मदन रस चाखिया त्रे भवन भया उजियारा रहाउ दोए पुर जोर रसाई पाठी पियो महारस भारी काम क्रोध द्वे किए जलेता छूट गई संसारी प्रगट प्रगास ज्ञान गुर गम्मत सतगुर ते सुध पाई दास कबीर तास मत माता उचक ना कबहू जाई तू मेरो मेर पर्वत स्वामी।

कै कर जानी। हम निर धन ज्यो एहो धन पाया, मरते फूट गमानी। करै गमान चुभै तिस सूला, को काढ़न को नाही। अजै सो चोभ को बिलल बलाते, नरके घोर पचाई। कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा, संतन दो रादे। हम काहू की कान ना कटते, अपने गुर पर सादे। अब तो जाए चढ़े सिंघासन।

भोगी जप तप संयम गुरमुख भोगी रहाव बुद्ध बेभूत चढ़ावो अपनी सिंगी सुरत मलाई कर बैराग फिरो तन नगरी मन की किंगरी।

जग भीतर जन्म कवन फल पाया भावने तरन तारन चिंतामन एक निमुख नायो मन लाया गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन प्रभ जियो पिंड था दिया तिसकी भाऊ भगत नहीं साधी रहा पर तन पर तन परती निंदा पर अपवाद ना छूटै आवागमन होत है फुन फुन एहो प्रसंग ना टूटै जे घर कथा होत हर संतन एक निमख ना कीनो मैं फेरा लंपट चोर दूत मतवारी।

बंधन पाया, मुख तै गुरे अनल बुझाया, जब नक सिख इहो मन चीना, तब अंतर मज्जन कीना, पवन पत उन मन रहन खरा, नहीं मृत ना जन्म जरा रहाउ, उल्टी ले सकत सहारं, पैसी ले गगन मजारं, बेदी अले चक्र पुंगा, पेटी अले रायन संगा, चूकी अले मोह मै आसा, सस कीनो सूर ग्रासा, जब कुंभक पर फुर लीना, तह बाजे अनहद बीना, बकतै बक शब्द सुनाया।

आस मदे परम यले पंच जनास्यों बात बतौआ चीत सो डोरी राखियले मन राम नामा वेदियले जैसे कनक कला चित मांदियले रहाउ आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुमार पुरंदरिये हस्त बनोद विचार करती है चीत सो गागर राखियले मंदर एक द्वार दस जाके गऊ चरावन छाडियले पांच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बछरा राखियले कहत नाम देव सुनो तलोचन बालक पालन पौडियले अंतर बाहर काज विरुद्धि चीत सो बारक राखियले वेद पुराण शास्त्र अनंता गीत कबेतना गावो गो अखंड मंडल निरंकार मह अनहद बीन बजावो गो बैरागी राम गावो गो शब्द अतीत।

घर दूजा बनारसी तप करै उल्ट तीर्थ मरै अग्न दह काया कल्प कीजै असमेध जग कीजै सोना गर्भदान दीजै राम नाम सर तऊ ना पूजै छोड़ छोड़ रे।

जो गोदावर जाइय, कुंभ जो केदार नहाइय, गोमती सहस गऊदान कीजै, कोट जो तीर्थ करै, तन जो हिवाले।

हिरण होए कैसी, जो पारस है ना परस है, देव संसय गांठ ना छूट है, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों मिल लूटे रहाऊ, हम बड कब कलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एह बुद कब है ना नासी, कहो रब दास सब है नहीं समझस,

शब्द अनाहद बाणी तह चंद ना सूरज पौन ना पानी साखी जागी गुरमुख जानी उपजै ज्ञान दुर्मत सीजै अमृत रस गगनंतर पीजै एस कला जो जानै पियो भेटै तास परम गुरुदेव दसम द्वारा अगम अपारा परम पुरख की घाटी ऊपर हाट हाट पर आला आले पीतर खाती जागत रह सो कबहो ना सोवै तीन तलोक समाध पलोवै बीज मंत्र

धारी असुर नदी का बंदे मूल पच्छम फेर चढ़ावे सूर अजर जरे सोन झर झरे जगन्नाथ स्यों गोष्ट करे चौ मुख जीवा ज्योत द्वार पल्लू अनत मूल बिचकार सर्ब कला ले आपे रह मन मानक रत्ना मह गुह मस्तक पदम द्वाले मणि माही निरंजन त्रे पवन धनी पंच शब्द निर्मायल बाजे तुलके चवर संख कान गाजे।

जप एहन सुनाम हरि कोट कोट दुख बहु कीने सब पर हर पास तरी रहाऊ हर हर नाम जपह आराध सेवक भाई खरे किल बिख दुख गए सब नीकर ज्यों पानी मैल हरे खिन खिन नर नारायण गावह मुख बोलह नर नर हरे पंच दुख असाध नगर मह एक खिन पल दूर करे वड भागी हर नाम त्यावह हर के भगत हरे तिनकी संगत देहे प्रभ जाच्यों मैं मूड मुग्ध निस्तरे किरपा किरपा धार जग जीवन रख ले वो सरन परे नानक जन तुमरी सरनाई हर राख हो लाज हरे नट महला चौथा राम जप जन राम नाम रले राम नाम जपियो गुरबचनी हर धारी हर किरपले रहाउ हर हर अगम अगोचर स्वामी जन जप मिल सलल सलले हर के संत मिल राम रस पाया हम जन कै बल बलले पुरखोत्तम हर नाम जन गायु सब दालद दुख दलले विच देही दोख असाध पंच धातु हर किए खिन परले हर के संत मन प्रीत लगाई ज्यों देखै सस कमले उनवै कन कन कन हर गरजै मन बिगसै मोर मुरले हमरे स्वामी लोच हम लाई हम जीवह देख हर मिले जन नानक हर अमल हर लाई हर मेल हो आनंद भले नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सखे गुर प्रसादी हर नाम त्यायु हम सतगुर चरण पखे रहाउ उत्तम जगन्नाथ जगदीश्वर हम पापी सरन रखे तुम वड पुरख दीन दुख भंजन हर दियो नाम मुखे हर गुण ऊच नीच हम गाए गुर सतगुर संग सखे।

प्रभ तारी मत गुरमत नाम बने रहाउ हर जन हर जस हर हर गायु अपदेश गुरु गुर सुने किल बिख पाप नाम हर काटे जिव खेत किरसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानहु हम कह ना सकह हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानहु प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने ज्यों जल कुंचर तंदुए बांधियो हर चेतियो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो हो जुग जुगने तुमरी था पाई नहीं पावे जन नानक के प्रभ वडने नट महला चौथा मेरे मन काल कीर्त हर प्रवणे हर हर दयाल दया प्रभ तारी लग सतगुर हर जपने रहाउ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्यावह हर रुड़ने जिनको तुमरे वड कटाख है ते गुरमुख हर सिमरने इहो प्रपंच किया प्रभ स्वामी सब जग जीवन जुगने ज्यो सललै सलल उठह बहु लहरी मिल सललै सलल समणे जो प्रभ किया सो तुम ही जानो हम नह जानी हर गहने हम बारक कौर दे उस्तत तार हो हम करह प्रभु सिमरणे तुम जल निद हर मान सरोवर जो सेवै सब फलने जन नानक हर हर हर हर बांछ हर देव हो कर कृपणे नट नारायण महला चौथा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुर पग रे नरवाल सब दाल पंज दुख दाल हर हो नदर निहाल रहाउ हर का ग्रह हर आप सवारियु हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हर अपनी कृपा करी आप ग्रह आयु हम हर की गुर की है बसीठी हम हर देखे भई निहाल निहाल निहाल निहाल हर आवते की खबर गुर पाई मन तन आनंद आनंद भय हर आवते सुने मेरे लाल हर लाल जन नानक हर हर मिले भय गलतान हाल निहाल निहाल नट महला चौथा मन मिल संत संगत शुभवंती सुन कथ कथा सुखवंती सब किल बिख पाप लहंती हर हो लिखत लखंती रहाउ हर कीरत कलयुग विच उत्तम मत गुरमत कथा पजंती जिन जन सुनी मन्नी है जिन जन तिस जन कै हो कुर्बानंती हर कथ कथा का जिन रस चाखिया तिस जन सब भूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ति जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावै हर की हर गाल तिस को हो बल बल बाल सो हर जन है पल पाल हर हो मेल निहाल रहाउ हर का मार्ग गुर संत बतायु गुर चाल बिखाई हर चाल अंतर कपट चकाव हो मेरे गुर सिख हो निह कपट कमाव हो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाई जिन्ना हर प्रभ जानियो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नट नारायण।

मन प्यास बहुत दर्शावे रहाउ। सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुचि आवे, कृपा करहु जिस पुरख बधाते सो सदा सदा तुद त्यावे। कवन योग कवन ज्ञान त्या

बुद्ध सियानप जित निमखना प्रभ बिसरावै संत संग लग एहो सुख पायो हर गुण सद ही गावै देखियो अचरज महामंगल रूप किस आन नहीं दिसटावै कहो नानक मोर्चा गुर लाहियो तह गर्भ जोन कह आवै नट नारायण महला पंजवां दुपदे

जम की त्रास मिटी सुख पाया, निकसी हम मैं पीर रहाऊ। तप्त बुझानी अमृत बानी, तृप्ते ज्यो बारक खीर। मात पिता साजन संत मेरे, संत सहाई बीर। खुले ब्रह्म पीत मेरे।

जन कै संग बसियो मन ते नाही बसारियो रहाउ वर्ण चेहन नाही किश पेखियो दास का कुल ना बेचारियो कर कृपा नाम हर दियो सहज सुपाए सुवारियो महा बिखम अग्न का सागर तिस ते पार उतारियो पेख पेख नानक बिगसानो पुनः पुनः बलिहारियो नट महला पंजवा हर हर मन में नाम कहियो कोट अपराध मिट है खिन पीतर ताका दुख न रहियो रहाउ खोजत खोजत भयो बैरागी साधु संग लहियो सगल त्याग एक लिव लागी हर हर चरण गहियो कहत मुकत सुनते निस्तारी जो जो शरण पयो सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना कहो नानक आनंद पयो नट महला पंजवा चरण कमल संग लागी डोरी सुख सागर कर परम गत मोरी रहाउ अंचला गहायो जाने अपने को मन बीतो प्रेम की खोरी जस गावत भगत रास उपजियो माया की जाली तोरी पूर्ण पूर रहे कृपा निद आना पेखो होरी नानक मेल लियो दास अपना।

रेते आठ पहर गुण गायन रहाओ साधु तूर करो नित मज्जन सब किल बिख पाप गवायन पूर्ण पूर रहे कृपा निद घट घट दिष्ट समायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल न लायन दुए कर जोड़ नानक दान मांगै तेरे दासन दास दसायन नट महला पंजवा मेरा सर्बस नाम निदान कर कृपा साधु संग मिलियो।

बिनस्यो मूड अभमान क्या गुण तेरे आख बखाना प्रभ अंतर जामी जान चरण कमल सरन सुख सागर नानक सद कुर्बान।

काल ऊठत बैठत सोवत जागत जी प्राण धन माल दर्शन प्यास बहुत मन मेरे नानक दर्शन हाल

हर हर नाम उरतारी, हर हर कथा बनी अत मीठी, ज्यों गूंगा गटक सम्हारी, रसना साध चखे पाए दूजे, हत फीके लोभ बिकारी, जो गुरमुख साध चखे राम नामा, सब अनरस साध विसारी, गुरमत राम नाम धन पाया।

दहदिस हर मुश्की मुश्क गंधारी तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनी के बचन संहारी गावत गावत हर गुण गाई गुण गावत गुर निस्तारी विवेक गुरु गुरु समदर्शी तिस मिलिय संक उतारी सतगुर मिले परम पद पाया हौ सतगुर कै बलिहारी पाखंड कर कर भरमी लोभ पाखंड जग बुरियारी हलत पलत दुखदाई होवह जम काल खड़ा सिर मारी उगवै दिनस आल जाल संभालै बिख माया के बिस्थारी आई रहन भया सुपनंतर बिक सुपने भी दुख सारी कल्लर खेत लै कूड़ जमाया सब कूड़ै के खलवारी साकत नार सब भूख पुखानी दर ठाढे जम जंदारी मनमुख करज चढ़िया बिख भारी उतरै शब्द विचारी जितने करज करज के मंगिए कर सेवक पग लगवारी जगन्नाथ सब जंतर अपाई नख खीनी सब नथहारी नानक प्रभ खींचे।

हर अमृत सर नावहारे, सतगुर ज्ञान मज्जन है नीको, मिल कलमल पाप उतारी रहाउ, संगत का गुण बहुत अधिकाई, पढ़ सुआगन के उधारी, परसन परस भय कुबिजाको, लै बैकुंठ सधारी,

गुर सरल प्रभु रखवारे, ज्यो कुंचर तंदुए फकर चलायो, कर ऊपर कढ निस्तारे रहाओ। प्रभु के सेवक बहुत अतनीके, मन श्रद्धा कर हर तारे, मेरे प्रभु श्रद्धा भगत मन भावे।

एका नदर निहारी हर प्रभ ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारी आप दयाल दया दान देवे विच पाथर कीरे कारी अंतरवास बहुत मुशकाई भ्रम भूला मिर्ग सिंघारी।

जन माने प्रतख गुरु निस्तारी सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खवारी ज्यों जन चंद्र हास दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना घर लूकी जारी प्रभ को जन अंतर रिद लोचे प्रभ जन के सास निहारे कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए।

आप निस्तारे नाट महला चौथा राम कर कृपा ले हो उभारे जो पकर द्रौपदी दुष्टायानी हर हर लाज निवारे रहाओ कर कृपा जाचक जन तेरे एक मांगो दान प्यारे सतगुर की नित श्रद्धा लागी मोह को हर गुर मेल सवारी साकत कर्म पानी ज्यो मथी है नित पानी झोल चुलारे मिल सत संगत परम पद पाया कड माखन के गटकारे नित नित काया मजन किया नित मल मल दे सवारे मेरे सतगुर के मन बचन ना पाए सब फोकट चार शिंगारे मटक मटक चल सखी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारे गुरमुख सेवा मेरे प्रभ भाई मैं सतगुर अलख लखारे नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मरारे संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारे ग्राम ग्राम नगर सब फिरिया हृदय अंतर हर जन पारे श्रद्धा श्रद्धा अपाई मलाई मोह को हर गुर गुर निस्तारे पवन सूत सब नीका करिया सतगुर शब्द विचारे निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे तौ गुण ईस वर्ण नहीं साको।

मन धीरे नट महला चौथा मेरे मन भज ठाकुर अगम अपारे हम पापी बहु निर्गुण यारे कर कृपा गुर निस्तारे रहाउ साधु पुरख साध जन पाए एक बिनो करो गुर प्यारे राम नाम धन पूंजी देव हो सब तिसना भूख निवारे पचै पतंग मृग प्रिंग कुंचर मीन एक इंद्री पकर संघारे पंच भूत सबल है देहि गुर सतगुर पाप निवारे शास्त्र वेद सोध सोध देखे।

प्रभ केरी, जिव सूरज कमल निहारी, मेर समेर मोर बहु नाचै, जब उनवै कन कन हारी, साकत को अमृत बहु सिंचो, सब डाल फूल बिस्कारी, ज्यो ज्यो निवह साकत नर सेती, छेड़ छेड़ कड्डै बिख खारी, संतन संत साध मिल रही है, गुण बोले है पर उपकारी, संतै संत मिले मन बिगसै, ज्यो जल मिल कमल सवारी, लोभ लहर सब सुवान हलक है, हलकियो सबह बिगारी, मेरे ठाकुर कै दिबान खबर हुई, गुर ज्ञान खड़ग लै मारी, राख राख राख प्रभ मेरे, मैं राखो कृपा तारी, नानक मैं तारे अवर ना काई, मैं सतगुर

प्रसाद अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया हर अगम अगम अगाध बोध अदेश हर प्रबराया रहाउ काम क्रोध लोभ मोह नित झगरते झगराया हम राख राख दीन तेरे हर शरण हर प्रभ आया शरणागति प्रभ पालते हर भगत वचल नाया प्रहलाद जन हर नाख पकरियो

हर ठाकुर हर गुरमति प्रभ पाया हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत भंजन गाया हर हार।

ललाट लिखे पाया गुर साधु गुर बचनी मन तन राता हर प्रभ आए मिले सुख पाया सब किल विख पाप गवाता राम रसायन जिन गुरमत पाया इनकी उत्तम बाता इनकी पंक पाईए बड़भागी जन नानक चरण पराता माली गौड़ा महला चौथा सब सिद्ध साधक मुन जना मन भावनी हर त्यायो अपरंपरो पार ब्रह्म स्वामी हर अलख गुरु लखायो रहाओ हम नीच मध्यम कर्म किए नहीं चेतेओ हर रायो हर आन मेलेओ सतगुरु खिन बंद मुक्त करायो प्रभ मस्त के धुर लिखिया गुरमति हर लिव लायो पंच शब्द दरगाह बाजिया हर मिलेओ मंगल गायो पतत पावन नाम नर हर मंद भागिया नहीं पायो ते गर्भ जोनी गाली है ज्यो लोन जलह गलायो मत देहे हर प्रभ अगम ठाकुर गुर चरण मन मैं लायो।

नदान पतत पावन नाम हरि कोट भगत उदार करी हरदास दासा दीन सरन नानक माथा संत चरण माली गौड़ा महला पंजवा ऐसो सहाई हर को नाम साध संगत भज पूर्ण काम रहाउ बूढ़त कौ जैसे बेड़ी मिलत बूजत दीपक मिलत तिलत जलत अग्नि मिलत नीर जैसे बारक मुख है खीर जैसे रण मह सखा परात जैसे भूखे भोजन मात जैसे किरख है बरस मेघ जैसे पालन सरन सेंग गर्ण मुख नहीं सरपत रास सुआ पिंजर नहीं खाए बिलास जैसो आंडो हिरदे माहे जैसो दानो चकी दराहे बहुत उपमा थोर कही हर अगम अगम अगाध तुही ऊच मूचो बहु अपार सिमरत नानक तरे सार माली गौड़ा महला।

आधार चरण संतन के मेरे हृदय मझार माली गौड़ा महला पंजवा सब कै संगी नाही दूर करन करावन हाजरा हजूर रहाउ सुनत जियो जास नाम दुख बिनसे सुख कियो विश्राम सगल निद हर हर हरे मुन जनता की सेव करे जां कै घर सगले समाहे तिस्ते बिरथा कोए नाहे जी जंतर करे प्रतपाल सदा सदा सेवो कृपाल सदा धर्म जाकै दीवान बे मोहताज नहीं किश कान सब किश करना अपने आप रे मन मेरे तू तां को जाप साध संगत को हो बलिहार जास मिल हुए उधार नाम संग मन तनह रात।

सदा सुख पाईए जीवन का मूल रव रहे सरबत ठाई सुख मोह असथूल आल जाल बिकार तज सब।

ना छोड़स किसन प्रीत ज्यों रे। पंडित संग वसह जन मूरख आगम सास सुने अपना आप तू कबहु ना छोड़स स्वान पूछ ज्यों रे। एक पाखंडी नाम नाराच है एक हर हर चरणी।

का पतत पनीत असंख होहे हर चरनी मन लाग अठसठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक भाग। शब्द सखी सहेली गर्भ गहेली सुन सह की एक बात सहेली जो मैं बेदन सा किसे आखा माई हर बिन जियो न रह कैसे राखा माई रहाओ हौ दुहागन खरी रजानी गया सो जोबन तन पछताणी।

कृपा एही, बिन दर्शन कैसे रहूं सनेही। मारू महला पहला, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाउ सभागा, गुर की बचनी हाट बिकाना। जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतुराई,

दर ढोई झूठा आवण जान साचा नाम सलाही है साचे ते तृप्त होए ज्ञान रतन मन मांझी है बहुड़ न मैला होए जब लग साहिब मन वसै तब लग बिघन न होए नानक।

नाम अजाची एको हाट साहो सबना सिर बनजारी एक भांति दोए सिरे सतगुरु नबेड़े सो बूझै जिस एक लिव लागी जियो रह ले परांती।

पुनवासी गुर बचनी बाहर घर एको नानक भया उदासी राग मारू महला पहला घर पंजवां।

बल कहियत है इंद्री किसते होई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई गुर प्रसादी एक लिव लागी दुबदा तदे बनासी जो तिस पाणा सो।

गुर कै शब्द त्याए तू सच लगी प्यार रहाओ ऐथे नाम भुलिया फिर हाथ कथाऊ ना पाए जोनी सब पवाईयन बिष्टा माहे समाई वड भागी गुर पाया पूर्ब लिखिया माई अन दिन सच्ची भगत कर सच्चा लय मनाई आपे सिष्ट सब साजियन आपे नदर करे नानक नाम वडियाईया जय पावै तैं दे मारू महला तीजा पिछले गुनहा बख्शाए जियो अब तू मार्ग पाए हर की चरणी लाग रहा विचो आप गुआई मेरे मन गुरमुख नाम हर त्याई।

जमपुर चोटा खाए, नानक सब किछ आपे आप है, दूजा नाही कोई, भगत खजाना बख्शियोन, गुरमुखा सुख होए, मारू महला तीजा, सच रते से टोल लहो, से विरले संसार, तिन मिलिया मुख उजला, जप नाम मरार, बाबा साचा साहिब हृदय संभाल, सतगुरे अपना

जप्यो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर सरन परे दालद पंज सुदामे मिलियो भगती पाए तरे भगत वच्छल हर नाम किरतारथ गुरमुख कृपा करे मेरे मन नाम जपत उदरे त्रू प्रहलाद बिदर दासी सोता गुरमुख नाम तरे रहाओ कलयुग नाम प्रधान पदार्थ भगत जना उदरे नामा जय देव कबीर त्रिलोचन सब दुख गए चमरे गुरमुख नाम लगे से उदरे सब किल विख पाप टरे जो जो नाम जपै अपराधी सब तिनके दुख पर हरे बेसवा रवत अजामल उदरियो मुख बोले नारायण नर हरे नाम जपत उगर सैन गत पाई तोड़ बंधन मुक्त करे जन को आप अनुग्रह किया हरि अंगीकार करे सेवक पैज रखै मेरा गोविंद सरल परे उदरे जन नानक हर कृपा तारी उर धरियो नाम हरे मारू महला चौथा सिद्ध समाध जपियो लिवलाई साधिक मुन जपया जति सती संतोखी त्याया मुख इंद्रादिक रविया सरन परे जपियो ते पाई।

गण गंधर बे जपियो रिख बपरै हर गाया शंकर ब्रह्म देवी जपियो मुख हर हर नाम जपिया हर हर नाम जिन्ना मन पीना ते गुरमुख पार पया कोट कोट ते तीस त्यायो हर जपत्या अंत ना पाया वेद पुराण सिमरत हर जपया मुख पंडित हर गाया नाम रसाल जिन्ना मन वसिया ते गुरमुख पार पया अनंत तरंगी नाम जिन जपया मैं गणत ना कर सकिया गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया।

मैं हर हर कथा मन पाणी, हर हर कथा नित सदा कर, गुरमुख अकत कहानी रहाउ। मैं मन तन खोज टंडोलिया, क्यों पाईए कथ कहानी, संत जना मिल पाया, सुन अकथ कथा मन पाणी। मेरे मन तन नाम आधार हर, मैं मेले पुरख सुजानी, गुरपुरख पुरख मलाए प्रभ, मिल सुरती सुरत समाणी। बड़ भागी गुर सेविया, हर पाया सुगड़ सुजानी।

गुण सुजानी जन नानक शरणागती कर कृपा नाम सुमानी। मारू महला चौथा हर भाव लगा बैरागिया वडभागी हर मन राख मिल संगत शरदायु पुजै गुर शब्दी हर रस चाख सब मन तन हरिया होया।

आगु हर हर भगत परे पंडहारा गुरमुख राम करे निसतारा जिसनो कृपा करे मेरा स्वामी सो हर के गुण गावे जियो हर हर कृपा करे बनवाली हर हृदय सदा सदा संभाली हर हर नाम जपो मेरे जियड़े।

तेरी सब किलविख काटे हर तेरी हर तन राखो हर तन संचो हर चल दया नाल सिखाई जियो जिसनो कृपा करे सो त्यावे नित हर जप जापै जप हर सुख पावे गुर प्रसादी हर रस आवे जप हर हर पा

कर हर का मन मानिया सो सेवक चौहो जुग चौहो कुंट जानिया जे उसका बुरा कह कोई पापी तिस जम कंकर खाई जियो सब मह एक निरंजन करता सब कर कर वेख अपने चलता जिस हर राख है तिस कौन मारे जिस करता आप छाई जियो हम अन दिन नाम लई करतारी जिन सेवक भग

बात सुनी सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गुर मिल गाए गुनी रहाओ देह धार अर देवा दर्पह सिद्ध साधक डर मोया लख चौरासी ही मर मर जन्मे फिर जो नी जोया राजस सातक तामस डरपह केते रूप उपाया छल बपरी ये कौला डरपै अत डरपै धर्म राया सगल समगरी डरह ब्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सोह है दरबारा मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ ध्रुव बारक हर सिमरत अमरे अटारी पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बदारी मेरे ठाकुर केते अगणत उधारी मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो सरद द्वारी रहाओ वाल्मीक सुपचारो तरयो बदक तरे बेचारी एक निमख मन माहे अरादेव गजपत पार उतारी कीनी रखिया भगत प्रहलाद हरनाखस नखह बेदारी विदर दासी सुत भयो पनीता।

ले मान्यो भयो कृपाल ठाकुर सेवक कौ सबरे हलत पलाता धन सेवक सफल ओहो आया जिन नानक खसम पछाता।

नानक जस गावे ठाकुर का रैन दिन सलिब लाई मारू महला पंजवा जो समरथ सर्ब गुण नायक तिसको कभू ना।

भ्रम छूटा ज्यों प्रभु भय सहाई मारू महला पंजवा अंतर जामी सब बिद जाने तिस ते कहां दुलारियो हस्त पाम चरे खिन पीतर अगन संग ले जा रियो मूड़े तै मन ते राम बसारियो लून खाई करह हराम खोरी पेखत नैन बिदारियो रहाओ असाद रोग उपजियो तन पीतर।

बावर दलब जन्म अकारथ रे नर ऐसी करह अनथ तज सारंग हर भ्रम तू भूला मोहे लपट्यो दासी संग सानथ रहाओ धरनी तर त्याग नीच कुल सेवह हौ हौ करत बिहावथ हो कट कर्म करह अज्ञानी मन मुख अंध कहावथ सत होता असत कर मानिया जो बिन सत सो निह चल जानथ पर की कहो अपनी कर पकरी ऐसे भूल फलानथ खतरी।

ससी मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी अलिपाई स्वभावत जैसे बैसंतर अलिप्त सदा निर्मलाई जिस कर्म खुलिया तिस लहिया पड़दा जिन गुर पह

परम गुरु खोया ता हर महली महल पाया था। मारू महला पंजवा जिस है साज निवाजिया।

आओ तपसी कर कह देही सादी मनवा दह दिस ताना ब्रह्मचार ब्रह्मचज कीना हृदय भया गुमाना सन्यासी होए कह तीर्थ भ्रम्यो उस मह क्रोध बिगाना कुंगर बांध पए राम।

मुख राग अलापे मन नहीं हर हर गावा हर कसोग लोभ मोह रहत है निर्मल हर के संता तिन

सब किस जाने मेरे जी का प्रीतम बिसर गए बकबाया रहा दूजा मारू महला पंजवा कोट लाख सर्ब को राजा जिस हृदय नाम तुम्हारा जाको नाम ना दिया मेरे सतगुर से मर जन्म है गावारा मेरे सतगुर ही पत राख चीत आवह तब ही पत पूरी बिसरत रलिए खाक रहाऊ रूप रंग खुशियां मन

माया रंग बिरंग खिन मह ज्यो बादर की छाया से लाल पये गूड़े रंग राते जिन गुर मेल हर हर गाया ऊच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा नामो वड़े आई सुबा नानक खसम प्यारा मार

पात गर्भ में जिन प्रित पारिया जियो पिंड दे साज सवारिया सोई बधाता खिन खिन जपिया जिस सिमरत अवगुण सब ढकी है।

जो सिमरै तिसका निस्तारा रहाउ मिथ्या वस्त सत करमानी हित लायो सठ मूड अज्ञानी काम क्रोध लोभ मद माता कौडी बदलै जन्म गवाता अपना छोड़ पराया राता माया मद मन तन संग जाता त्रिशन ना बूझै करत कलोला ऊनी आस मिथ्या सब बोला आवत अकेला जात अकेला हम तुम संग झूठे सब बोला पाए ठगौरी आप पलायो नानक किरत न जाए मटायो पास पंखी भूत अर प्रेता बहु विद जोनी फिरत अनेता जह जानो तह रहन न पावे थान बिहून उठ उठ फिर तावे मन तन बासना बहुत बिस्थारा अहम में मूठो बेचारा अनक दोख अर बहुत सजाई ता की कीमत कहन ना जाई प्रभ बिसरत नरक में पाया तह मात ना बंद ना मीत ना जाया जिस को होत कृपाल स्वामी सो जन नानक पार ग्रामी प्रमत प्रमत प्रभ सरनी आया दीना नाथ जगत पित माया प्रभ दयाल दुख दर्द बदारन जिस पावे तिस ही निस्तारन अंधकूप ते काड नहारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन तारिया महा अग्न ते आप उबारिया।

मोहन अलख अपारा दान पावों संता संग नानक रेन दसारा मारू महला पंजवा त्रिप्त अगाए संता गुर जाने जिन मंता ताकी किछ कहन ना जाई जाको नाम बढ़ाई लाल अमोला लालो अगह अतोला नामो रहाउ अवगत सिंह मानिया मानो गुरमुख तत ज्ञानो पेखत सगल त्यानो तजियो मन ते अभमानो निश्चल तिनका ठाणा गुर ते महल पछाणा अन दिन गुर मिल जागी हर की सेवा लागी पूरन त्रिपत अगाई सहज समाध सुपहाई हर भंडार हाथ

चेत मन मह हर हर निदाना एह निर्मल रीत रहाउ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै तिस सीध नवल नवतन चतर सुंदर मन नान।

भज संग साधु भव सागर उतर है पार। मेरे मन नाम हृदय धार, कर प्रीत मन तन लाए हर सिउ, अवर सगल विसार रहाउ। जियो मन तन प्राण प्रभ के, तू अपने आप निवार। गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे, नानक।

देख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक मारू महला पंजवा पतत पावन नाम जाको अनाथ को है नाथ महा भोजन माहे तुलहो जाको लिखियो माथ डूबे नाम बिन घन साथ करन कारण चेतना आवे देकर राखे हाथ रहाऊ साध।

करै पछताए, छूटत नाहिन भाग्यो, एह चिंता उपजी घट मह, जब गुर चरणन अनुराग्यो, सफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभ जस मह पाग्यो, मारू अष्टपदियां।

तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए ले पर हर दुख भारी रहाओ हर पढ़िया हर बुझिया गुरमति नाम उदारा गुरपुरे पूरी मत है पूरे शब्द विचारा।

ना गुरमति दद मती है अमृत पाईए नाम निदाना मन मुख तत ना जाननी पशु माहे समाना हौ मैं मेरा मरी मर

मारू महला पहला शब्द मरे ता मार मर भागो किस पह जाऊं जिस कह डर पै भागी है।

कोह काश नहीं गुरपुरे पूरी मत कीन रहाओ अवगण सुपार गुण नहीं बिन गुण क्यों कर जाओ सहज शब्द सुख उपजे बिन भागा तन नाही जिनके नाम ना मन वसै

मनो विसारी है नित देव चढ़ै सुआया जियो पिंड सब तिसदा साहु तिन्ह विच पाया जां कृपा करे ता सेवी सेव सच समाया लाला सो जीवत मरे मर विचों आप गवाए बंधन टूटै मुक्त होए तृष्णा अग्न बुझाए सब मह नाम निदान है।

नानक नाम रखे से निर्मले साक्या रहे समाई मारू महला पहला हुक्म पया रहना नहीं तुर फाटे चीर एहो मन अवगण बांधिया सहो दे शरीर पूरे गुर बख्शाई है सब गुनहा फकीर क्यों रही है उठ चलना बुझ शब्द बिचारा जिस तू मिल है सो मिला।

चलना मुखे अमृत नाम। मेरे ठाकुर हथ वडियाइया मेल है मन चाओ, कीता क्या सलाही है कर देख सोई, जिनकी आसो मन वसै मैं अवर ना कोई। सो साचा सलाही है साची पत होई, पंडित पढ़ना पहुंचई बहुआल जंजाला, पाप पुन दोए संग में खुदिया जम।

खार समुंदर कंडो लिए एक मनिया पावे दोए दिन चार सुहावना माटी तिस खावे गुरसागर सत

थीऐ पारस संग पीजै वन्नी साचे लाल की किन कीमत कीजै पेखी हाथ न लभई तीरथ नहीं दाने पूछो वेद पढ़ंतिया मूठी बिन माने नानक कीमत

बेपूत चढ़ाई माया का मग जो है अंतर बाहर एक ना जाने साच कहे तेशो है पाठ पढ़े मुख झूठो बोले निगुरे की मत ओ है ना।

अभमाना मनुआ डोले दह दिस तावे बिन रात आत्म ज्ञाना अमृत छोड़ महाबिख पीवे माया का देवाना कीर्तना मिटई हुक्म ना बूझे पशुआ माहे समाना हाथ कमंडल कापड़िया मन तृष्णा उपजी पारी स्त्री तज कर काम व्यापिया चेतन।

गगन पताली जनता जोत तुम्हारी सब सुख मुकत नाम धुन बाणी सच नाम उरतारी।

योग उपाय रकत बिंद मिल पिंड करे अंतर गर्भ उर्द लिव लागी सो प्रभ सारे दात करे संसार पवजल क्यों तरे गुरमुख नाम निरंजन पाई है।

देव दृष्ट जागे परम चुकाई, गुर प्रसाद परम पद पाई, सो जोगी एह जुगत पछाणे, गुर कै शब्द

सोई सतगुर मिले मरे मंदा होवे ज्ञान बिचारी जियो। एहो शब्द सार जिसनो लाए गुरमुख कृष्णा भुख गवाए। आपन लिया किशु ना पाईए कर कृपा कल तारी जियो। अगम निगम सतगुरु दिखाया कर कृपा अपने घर आया। अंजन माहि निरंजन जाता जिनको नदर तुम्हारी जियो। गुरमुख होवे सो तत पाए अपना आप विचो गवाए। सतगुर बाजो सब धंद कमावे वेखो मन विचारी जियो। एक भ्रम भूले फिरे अहंकारी

या अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद लाख चौरासी भ्रमते द्रब जन्म अब पायो रे मुड़े तू हो छह रस लपटायो अमृत संग बस्त है तेरे बिख्या स्यो उरजायो रहाओ रत्न जवे हर बन जन आयो कानर लाद चलायो जे कर्म है तुद रहना बसना सो कर कीत न आयो अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमुख नहीं तुझ गायो जहां जाना सो थान वसारियो एक निमुख नहीं मन लायो उत्तर कलत्तर ग्रह देख समग्री इस ही मैं उर जायो जित को लायो तित ही लागा तैसे कर्म कमायो जो पयो कृपाल ता साध संग पाया जन नानक ब्रह्म ते आयो मारु महला पंजवा कर अनग्रह राख लीनो पयो साधु संग हर नाम

अगम अगाह सिद्ध साधक देव मुन जान वेद करह ओचार सिमर स्वामी सुख सहज पुंचह नहीं अंत पारावार अनक परासत मिटह खिन मह हृदय जप भगवान पाम नाते महापावन कोट दान इशनान बाल बुद्ध शुद्ध पुराण सर्व।

महासागर नह व्यापै खिनह उतरियो तीर चंदन अगर कपूर लेपन तिस संगे नहीं प्रीता।

मित्र सद्धरना कछु जान सर्ब जी समत कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार बनास पवित्र अपवित्र है किरण लागी मन

कामान सुपाए अपाए जो निकट आवे सीत ता का जाए आप पर का कस न जाने सदा सहज सुपाई चरण सरन सनाथ इहु मन रंग राते लाल गोपाल गुण नित गाऊ नानक पए प्रभ कृपाल मारू महला पंजवां घर चौथा अष्टपदियां।

का हर जस गुर ते मांगना जागना जागन नीका हर कीर्तन मह जागना लागना लागन नीका गुर चरणी मन लागना एह बिदत सह प्राप्ति जा कह मस्तक भागना कहो नानक तिस सब किश।

हर जस श्रवन सुनावना रहाउ तुदे आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना संत कृपा ते हृदय वासै दूजा पाओ मिटावना भगत दया ते बुद्ध परगासै दुर्मत दुख तजावना दर्शन भेट तो होत पनीता पुनरप गर्भ ना पावना नौ निद रिद सिद्ध पाई।

ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिर परमंता, दुहु व्यवस्था तेजो मुक्ता, सोई सोहेला पाली है, ग्रह राज मह नरक उदास करोदा, बहु विद वेद पाठ सब सोदा, देही मैं जो रह अलिपता, जिस जन की पूर्ण काली है, जागत सूता परम भगूता, बिन गुर मुक्त न होइए मीता, साध संग टुट है हो बंधन, एको एक निहाली है, कर्म करे ता बंदा, नह करे ता निंदा, मोह मगन मन व्यापिया चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख सम जाने।

सोई पल मानै, बुझ हुक्मै दुरमत जाली है। जित जित लाव है तित तित लगना, कर कर वेखै अपनी जचना।

सब जनते इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे हस्त अधोत पया उठ चले ज्यो ज्यो औध बिहानिया पाप करेंदड़ सर पर मुठे अजराइल फड़े फड़ कुठे दोजक पाए सिर जनहार लेखा मंगे बाणिया संग न कोई भैया बेबा माल जोबन तन छोड़ वंजेसा करन करीम ना जातो करता तिल पीड़े ज्यो कहानिया खुश खुश लेंदा वस्त पराई वेखै सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लभ पया खाते अंदर अगले

अनाह ध्यान देन कट कट शब्द रजाई हे। आपे रतन अनूप अमोलो आपे परखे पूरा तोलो आपे किस ही कस

जल पड़कारी मनमुख तके कुंडा चारी बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाई है साचे हाथ वडाई हे काम क्रोध अहंकार निवारी तस्कर पंच शब्द संघारी ज्ञान खड़ग लै मन स्यों लूजै मनसा मन है समाई हे माँ की रकत पिता बिद धारा मूरत

ब्राह्मण मरना, गुरते समझ पड़ी क्या डरना। तू दयाल दया कर देख है, दुख दर्द शरीर हो जाई है। निज कर बैस रहे पहु खाया, तावत राखे ठाक रहाया। कमल विगास हरे सरस भर आ।

कह राती, हर प्रभ संगी पहो ना प्रांति, श्रवण स्रोत रज्जे गुरबाणी, ज्योति ज्योत मलाई है, रख रख पैर तरे पहु तरना।

साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई त्रेतै धर्म कला एक चूकी तीन चरण एक दुबदा सूकी गुरमुख हो सो साच पछाण मनमुख पचै अवाई हे मनमुख कदे ना दरगाह सीजै बिन शब्द क्यों अंतर रीजै बांधे आवह बांधे जावह सोजी बूझ ना काई हे दया दुआ पर अद्धि होई गुरमुख विरला चीन कोई दोए पग धर्म धरे तर

तारी गुरमुख कोट असंख्य उधारी सर्ब जिया जग जीवन दाता निरपहु मैल ना काई हे सगली जाचह गुर पंडारी आप निरंजन अलख अपारी।

शब्द मलाई जांत से पाना सहज समाए त्रे पवन जोत तरी परमेश्वर अवर न दूजा पाई है जिसके चाकर तिसकी सेवा शब्द पति जय अलख अपेवा भगतां का गुण।

गुरमुख सुरत समाई है, कूड़ मुट्ठी ठगी ठगवाड़ी, ज्यो वाड़ी ओजाड़ उजाड़ी, नाम बिना किस साधना लागे, हर बिसरे दुख पाई है, भोजन साच मिले।

तन अर्प मिलै जग जीवन, हर स्यों बणत बनाई। प्रभु की गत मित कोई ना पावै, जे को वड्डा कहाए वडाई खावै। साके साहेब तोट ना दाती।

प्राणी हर जप जप हृदय त्याई हे। छोड़ो हो प्राणी कूड़ कबाड़ा, कूड़ मारे काल उशाहाड़ा। साकत कूड़ पचह मन हउमै, दोह मार्ग पचै पचाई हे। छोड़ो हो निंदा तात पराई, पड़ पड़ दज है शांत न आई। मिल सत संगत नाम सलाहो, आत्म राम सखाई हे। छोड़ हो काम क्रोध बुरियाई, हो मैं तंद छोड़ हो लंपटाई। सतगुर सरन पर हो ता उबर हो, यों तरिये पव जल पाई हे। आगे बिमल नदी अगन बिख चेला, तिथे अवर न

एकहु कर नंदर विघ्न नाही गुरमुख तर तारी इउ पव जल पार लंघाई है। देही अंदर नाम नवासी आपे करता है अबनासी ना जियो मरे ना मारिया जाई कर देखै शब्द रजाई है। ओह निर्मल है नाही अंधियारा ओह आपे तख्त बह सचियारा साकत कूड़े बंद पवाई है मर जन्म है आई जाई है। गुर के सेवक सत गुर प्यारे वही वैसह तखत सो शब्द विचारे तत लह।

ओरड़ करवास न पाई, पेयड़ सिर माराही, खाजै पैंजै रली करीजै, बिन अब भगती बाद मरीजै।

शब्द कर जाण किसे ही मंदा आख न चले सच खरा सचियारा ही साच बिना दर सिजे न कोई साच शब्द पेंजह पत होई आपे बख्श लए किस पावे हौ मैं गर्भ निवाराई गुर कृपा ते हुक्म पछाणै।

अमृत रस पाई जम जगात नाही कर लागे जिस अग्न बुझी ठर सीनाई काया हंस प्रीत बहुतारी ओह जोगी पुरख ओह सुंदर नारी अहनस भोगै चोज बिनोदी उठ चलतै मता ना की नाही श्रिष्ट उपाय रहे प्रभ साजै पौन पानी बह संतर गाजै मनुआ डोलै दूत संगत मिल सो पाए जो किछ की नाही नाम विसार दोख दुख सही है हुक्म भया चलना क्यों रही है नरक कूप में गोते खावे ज्यों जलते बाहर मीना है चौरासी ही नरक साकत पोगाई है जैसा की कहते सो पाई है सतगुर बाजो मुक्त ना हुई किरत बांधा ग्रस दीना है खंडे तार गली अत पीड़ी लेखा लीजै तिल ज्यों पीड़ी मात पिता कलत्तर सुत बेली नाही बिन हर रस मुक्त ना की नाही मीत सखे केते जग माही बिन गुर परमेश्वर।

फल पावहु साच बखर के वपारी बिरले लै लाहा सौदा की नाही हर हर नाम बखर लै चलो दर्शन पावहु सहज महलो गुरमुख खोज लह जन पूरे इं समदरसी की नाही प्रभ बेअंत गुरमत को पावह गुर कै शब्द मन कौ समझावह सतगुर की बाणी सत सत कर मन हो इं आत्म रामै लीना है नारद सारद सेवक तेरे

नाही। एक दर सेव है दर्द बुझाई, कोई दरगाह पैंदे सतगुरु छडाई। हौ मैं बंधन सतगुर तोड़े, चित चंचल चलन ना दीना है। सतगुर मिलो चीनो बिदसाई, जित प्रभ पावो गणत ना काई। हौ मैं मार करो गुर सेवा, जन नानक हर रंग पीना है। मारू महला पहला, असुर संघारण राम हमारा।

शरण तुम्हारी, कर कृपा प्रभ पार उतारी। अगन पानी सागर अत गहरा, गुर सतगुर पार उतारा ही। मन मुख अंदले सो जी नाही, आवह जाहे मरह मर जाही। पूर्व लिखिया लेख न मिटई, जम दारे अंध खुआरा ही। एक आवह जावह कर वास न पावह, किरत के बांधे पाप कमावह। अंदले सोजी बूझ न काई, लोभ बुरा अहंकारा ही। फिर बिन क्या तिस धन शिंगारा, पर फिर राती खसम बसारा। ज्यो बेसवा पूत बाप को कही है, त्यों फोकट कार विकारा ही। प्रेत पिंजर मह दुख कनेरे, नरक पचह।

अगन बेख चाला अपत पशु मन मुख बेताला आसा मनसा कूड़ कमावह रोग बुरा पुर आ राही मस्तक पहार कलर सिर पहारा क्यों कर पवजल लंगस पारा।

मन मुख दाजे पढ़ पढ़ पाही अमृत नाम गुरु वद दाना नाम जपो सुख साराही सतगुरु तुठा सच दृढ़ाई सब दुख मेटे मार्ग पाई कंडा पाई न गढ़ई मूले जिस सतगुर राखन हाराही खेहू खेहे रले तन सीजै मन मुख पाथर सैल न पीजै करन पलाव करे बहुतेरे नरक सुरग अवताराही माया बिख पोय अंगम नाले इन दुबदा कर बहुते गाले सतगुर बाजो हो प्रीत ना उपजै भगत रत्ते पतिया राही साकत माया कौ बहुतावह नाम वसार कहां सुख पावह त्रेहो गुण अंत।

राम जपहु अंतरगत ध्यानी, लालच छोड़ रचहु अपरंपर। यूं पावहु मुक्त द्वारा ही, जिस बिसरै जम जोहन लागै। सब सुख जाहे दुखां पुन आगै, राम नाम जप गुरमुख जी अड़ी।

जिस को सतगुर मेल मलाई तिस चूका जम पै पारा ही पंच तत् मिल काया कीनी तिस महराम रतन लै चीनी आत्म राम राम है आत्म हर पाइये शब्द विचाराई सत संतोख रहो जन पाई।

गर्भजोनी नरक मजारा ही साकत जम की कान ना चूकै जम का डंड ना कबहू मूकै बाकी धर्म राय की लीजै सिर अफरे हो पार अफारा ही बिन गुर साकत कहो को तरिया हम मैं करता पवजल परिया बिन गुर पार ना पावे कोई।

गुप्त रहता ही। चार नदी ही अग्नि असराला, कोई गुरमुख बूझै शब्द नराला। साकत दुर्मत डूबह ताजह, गुर राखे हर लिवराता ही। अप तेज वाए पृथ्वी आकाशा, दिन मह पंच तत् घर वासा। सतगुर शब्द रह रंग राता, तज माया हूं मैं प्रांता ही। इह मन पीजै शब्द पतीजै, बिन नावै क्या टेक टकीजै। अंतर चोर मुह घर मंदर, इन साकत दूत ना जाता ही। दुंदर दूत पूत पिहाले, खिंचो तान करह बेताले। शब्द सुरत बिन आवै जावै,

जम वस किया अंध दुहेला, राम नाम बिन मुक्त ना सूजै, आज काल पच जाता ही, सतगुर बाज ना बेली कोई, ऐथे उथे राखा प्रभ सोई, राम नाम देवै कर कृपा, यूं सनलै सनल मलाता ही, भूले सिख गुरु समझाई, उजड़ जांदे मार्ग पाई, इस गुर सेव सदा दिन राती, दुख भंजन संग

बैरागी मन मनसा मार समाता ही सतगुर सेवह से परदाना तिन घट घट अंतर ब्रह्म पछाना नानक हर जस हर जन की संगत दीजै जिन सतगुर हर प्रभ जाता ही मारू महला पहला साचे साहेब सिरजनहारी जिन तार चक्कर।

अंत ना जानी जाको अलख लखाई आपी अकथ कथा बुद्धता हाई जन्मे को वाजह वाधाई सोहे लड़े अज्ञानी गाई जो जन्म है तिस सर पर मरना किरत पया सिर सहाई संजोग वजोग मेरे प्रभ किए।

रावण जान नहीं जम तारा, डाल छोड़ तत मूल पराता, मन साचा ओ माहाही, हर के लोग नहीं जम मारे, ना दुख देख है पंथ करारे, राम नाम काटे अंतर पूजा, अवर ना दूजा काहा ही, ओढ़ना कथन है सिफ्त सजाई, ज्यों तुद भाव है रह रजाई, दरगाह पहंदी जान सुहेले, हुक्म सच्चे पातशाही, क्या कहिए गुण कथ है कनेरे, अंत ना पाव है बड़े बड़ेरे, नानक साच मिले पत राख हो, तू सिर शाह पातशाही, मारू महला पहला दखनी, काया नगर नगर गाड़े अंदर।

वह वस्त संभाले वज्र कपाट जड़े जड़ जाने गुर शब्दी खोलाईंदा पीतर कोट गुफा कर जाई।

बाल्दी जल निवरै किरपाती आपे जल निध पाएंदा तरत उपाए तरी धर्मशाला उत्पत परलो आप नराला पवन खेल किया सब थाई कला खिंच टहाएंदा भार अठारह मालन तेरी चौर टुलै पवन लै फेरी चंद सूरज दुए दीपक राखी सस कर सूर समाएंदा पंखी पंच उडर नहीं धावे।

अनहद वाजै ब्रह्म पौ भाजै सगल व्याप रहया प्रभ साजै सब तेरी तू गुरमुख जाता दरसो है गुण गाएं दा आद निरंजन निर्मल सो।

आपन भाणे लख चौरासी जी अपाई भाणे सहा लवाईंदा जो तिस पावे सो निश्चो होवे मनमुख आप गणाई रोवे।

कोई, गुर बिन सो जी किना ना होई, साच मिले सो साचे पाई, ना विछड़ दुख पाईंदा, तुरो विछुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन्म है मोहलत पुन्ने, जिस

तुझते उपजह तुझ माहे समावह। नानक साच कह बेनंती मिल साचे सुख पाएंदा। मारू महला पहला अरबद नरबद तुंदू कारा। तरना गगना हुक्म अपारा ना दिन रहन ना चंद ना सूरज। सुन समाद लगाएंदा खानी ना बाणी पौन ना पानी।

जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी जोगी जंगम भेख ना कोई ना को नाथ कहाईंदा जप तप संयम ना व्रत पूजा।

सचो सौदा पाएंदा, सच्चा सौदा विरला को पाई, पूरा सतगुर मिले मलाई, गुरमुख होए सो हुक्म पछाणे, माने हुक्म समाएंदा, हुक्मे आया हुक्म समाया।

दुख पाया, जिसनो कृपा करे हर गुरमुख, गुण चौथा मुक्त कराईंदा। सुनो उपजे दास अवतारा, शिष्ट उपाय किया पासारा, देव दानव गण गंधर्व साजी, सब लिखिया कर्म कमाईंदा। गुरमुख समझे रोग ना होई, ये गुर की पौड़ी जाने जन कोई, जुगा जगंतर मुक्त परायण, सो मुक्त भया पत पाईंदा। पंच तत् सुनो परगासा, देह संजोगी कर्म अभ्यासा, बुरा भला दोए मस्तक लिखे, पाप पुन भी जाएंदा। उत्तम सतगुर पुरख निराले, शब्द रत्ते हर रस मत वाले, रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाईए, पूरे भाग मलाएंदा। इस मन माया को नेहो कनेरा,

निवास निरंतर आवण जान चुकाया ना मन चले ना पौन उड़ावे जोगी शब्द अनाह दबावे पंच शब्द चुनकार नरालम प्रभ आपे वाहे।

जन राया दुख भय भंजन प्रभ अविनाशी रोग कटे काटी जम फासी नानक हर प्रभ सो पौ भंजन।

को पछाण सब तिसका चोज सबाया आपे साहो आपे वणजारा आपे परखे परखणहारा आपे कस कस वट्टी लाए आपे कीमत पाया आप दयाल दया प्रभ तारी घट घट रब रहया बनवारी।

उन निरंजन गाया हूं मैं अमित शब्द सुख हुई आप विचारे ज्ञानी सोई नानक हर जस हर गुण लाहा सत संगत सच फल पाया मारू महला पहला सच कहो सच्चे कर रहना जीवत मरहो भवजल जग तरना गुर बोहित गुर बेड़ी तुलहा मन हर जप पार लंघाया हूं मैं ममता लोभ बनासन नौ दर मुक्ते दसवै आसन ऊपर परे परे अपरंपर जिने आपे आपे उपाया गुरमत लेव हर लिव तरिय अकल गाए जमते क्या डरिय।

सरना सच गुर शब्द जितै लग तरना कथ कथै देखै अपरंपर हुन गर्भ ना जोनी जाया सच बिन सत संतोख ना पावै बिन गुर मुक्त न आवै जावै मूल मंत्र हर नाम रसायन कहो नानक पूरा पाया सच बिन भव जल जाए ना तरिया यो समुंद अथाह महाबिख भरिया।

तुराई बिलम न लागे आवे जाई नाम विसार चले अभमानी उपजह बिन सुख पाया उपजह बिन सह बंधन बंदे हम मैं माया के गल फंदे जिस राम नाम नाही मत गुरमत सो जमपुर बंद चलाया गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाईए बिन गुर राम नाम क्यों त्याईए गुरमत ले हो तरो भाव दुत्तर मुक्त पये सुख पाया गुरमत कृष्ण गवर धन तारे गुरमत शायर पाहन तारे गुरमत ले हो परम पद पाईए नानक गुर परम चुकाया।

गुरमुख बूजै शब्द पतीजै उस्तत निंदा किस की कीजै तीनो आप जपो जगदीसर हर जगन्नाथ मन पाया जो ब्रह्मांड खंड सो जानो गुरमुख बूजो शब्द पछाणो कट कट भोगे भोगण हारा रह अतीत सबाया गुरमत बोलो हर जस सूचा गुरमत आखी देखो ऊचा सरवणी नाम सुने हर बाणी नानक हर रंग रंगाया मारू महला पहला काम क्रोध पर हर पर निंदा लभ लोभ तज हो निचिंदा भ्रम का संगल तोड़ नराला हर अंतर हर रस पाया निस दामन ज्यों

नानक गुरमत सो पाया अंतर की गत सत गुर जाने सो निरभउ गुर शब्द पछाने अंतर देख निरंतर बूझे अनत ना मन डोलाया निरपो सो आबे अंतर वसिया अहनस नाम निरंजन रसिया नानक हर जस संगत पाई है।

आपे सिर सिर हुक्म चलाया, हुक्म चलाए रहया पर पूरे, किस नेड़े किस आखा दूरे, गुपत प्रगट हर कट कट देखो, वरतै ताक सुबाया, जिसको मेले सुरत समाए, गुर शब्दी हर नाम ते आए, आनंद रूप अनूप अगोचर, गुर मिले है परम जाया, मन तन तन ते नाम प्यारा, अंत सखाए चलन वारा, मोह पसार नहीं संग बेली, बिन हर गुर किन सुख पाया, जिसको नदर करे गुर पूरा, शब्द मलाए गुरमत सूरा, नानक गुर के चरण सरेव हो, जिन पूला मार्ग पाया, संत जना हर तन जस प्यारा, गुरमत पाया नाम तुम्हारा, जाचक सेव करे दर हर कै, हर दरगाह जस गाया, सतगुर मिले त महल बुलाई, साची दरगाह गत पत पाई, साकत ठोर नाही हर मंदर, जन्म मरे दुख पाया, सेवहु सतगुर समुंद अथाहा, पावहु नाम रतन तन लाहा, बिखिया मल जाए अमृत सर नावहु, गुर सर संतोख पाया, सतगुर सेवहु संक ना कीजै,

साचे भावै तिस वडियाए, कौन सो दूजा तिस समझाए। हर गुरु मूरत एका वरतै, नानक हर गुर पाया। वाचह पुस्तक वेद पुराना, एक बह सुनह सुनावह काना। अजगर कपट कहो क्यों खुलै, बिन सतगुर तत ना पाया। करह विभूत लगावह पसमै, अंतर क्रोध चंडाल सो हौमै। पाखंड कीने जोग ना पाईऐ, बिन सतगुर अलख ना पाया। तीर्थ वर्त नेम करह उदयाना, जत सत संजम कतह ज्ञाना। राम नाम बिन क्यों सुख पाईऐ, बिन सतगुर परम ना जाया। न्योली कर्म पुयंगम पाठी, रेचक कुंभक पूरक मनहाठी। पाखंड धर्म प्रीत नहीं हर सौ, गुर शब्द महारस पाया। कुदरत देख रहे मन मानिया, गुर शब्दी सब ब्रह्म पछानिया। नानक आत्म राम सबाया, गुर सतगुर अलख लखाया। मारू सोलहे महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हुक्मी सहजे सृष्टि उपाई,

नाम रतन पाया। मनसा मार मन माहि समाया, आपे खेल करे सब करता, आपे दे बजाई है।

सोई बूझै पौ परम शरीरों जाई हे। आपे गुरमुख आपे देवै सच्चै शब्द सतगुर सेवै जरा जम तिस जोहे ना साकै साचे स्यों बन आई हे। तृष्णा अग्न जलै संसारा जल जल खपै बहुत विकारा मन मुख ठौर न पाए कबहू सतगुर बूझ बुझाई हे। सतगुर सेवन से वड भागी साचै नाम सदा निभलागी अंतर नाम रव्या निह केवल तृष्णा शब्द बुझाई हे। सच्चा शब्द सच्ची है बाणी गुरमुख विरलै किनै पछाणी सच्चै शब्द रत्ते बैरागी आवण जान रहाई हे। शब्द बुझै सो मैल चुकाई निर्मल नाम वसै मन आई सतगुर अपना सद ही सेवह हमै विचों जाई हे। गुरते बूझै तां दर सूझै नाम मिहूणा कथ कथ लूझै सतगुर सेवे की वडियाई तृष्णा भूख गवाई हे। आपे आप मिलै तां बूझै ज्ञान मिहूणा किशु ना सूझै गुर की दात सदा मन अंतर बाणी शब्द बजाई हे। जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया कोई ना मेटै तुर फुरमाया सत संगत मह तिन्ही वासा जिनको तुर लिख पाई।

बार तृष्णा अग्न निवारी शब्द चीन सुख होई है। काया कटांब मोह ना बूझै गुरमुख होवै ता आखी सूझै। अन दिन नाम रवै दिन राती मिल प्रीतम सुख होई है। मनमुख तात दूजे है लागा जनमत की नाम वो अभागा।

हंस बैरागी निज कर ताड़ी लाई हे। शब्द मरे सोई जन पूरा सतगुर आख सुनाए सूरा। काया अंदर अमृत सर साचा मन पीवे पाए सुपाई हे। पढ़ पंडित अवरा समझाए घर जलते की खबर ना पाए। बिन सतगुर सेवे नाम ना पाईए पढ़ था के शांत ना आई हे। एक भस्म लगाए फिर भेख तारी बिन शब्द होमै किन मारी। अन दिन जलत रह दिन राती परम भेख परमाई हे। एक ग्रह कटम मह सदा उदासी शब्द मोए हर नाम निवासी। हर दिन सदा रह रंग राती पै पाए भगत चित लाई हे। मनमुख निंदा कर कर विगुत्ता अंतर लोभ भौंकै जिस कुत्ता।

पावे कोई, बिन सतगुरु को नाव ना पाए, रब ऐसी बणत बनाई है। एक सिद्ध साधक बहुत विचारी, एक अहनस नाम रते नंकारी, जिसनो आप मलाए सो बूझे, भगत पाए पहु जाई है। इस्नान दान करह नहीं बूझे।

जन साची मनमुख सेव न जान न काची आपे करता कर कर वेख ज्यो पावे त्यो लाई हे जुग जुग साचा एको दाता पूरे भाग गुर शब्द पछाता शब्द मिले से विछड़े नाही नदरी सहज मलाई हे हूं मैं माया मैल कमाया मर मर जमह दूजा पाया बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई मन देखो निवलाई हे जोत सुभावे सोई करसी आपो हो आना किस होसी।

को जासी दूजे भाए बहदा जम फासी सतगुर राखे से जन उबरे साचे साच समाई आपे करता कर कर वेख जिसनो नदर करे सोई जन लेख गुरमुख ज्ञान तिस सब किस सूजे अज्ञानी अंध कमाई हे मनमुख सहसा बूझ ना पाई मर मर जम्मै जन्म गवाई गुरमुख नाम रते सुख पाया सहजे साच समाई हे धंदे धावत मन भया मनूरा फिर होए कंचन भेटे गुरपूरा आपे बख्श लए सुख पाए पूरे शब्द मलाई हे दुर्मत झूठी बुरी बुरियार औगण यारी औगण यार कच्ची मत फीका मुख बोले दुर्मत नाम ना पाई हे औगण यारी कंत ना पावे मन की झूठी झूठ कमावे फिर का साहू ना जाने मूरख बिन गुर बूझ ना पाई हे दुर्मत खोटी खोट कमावे शिंगार करे फिर खसम ना पावे

लाई, गुरमुख लिव साखी सहज समाई, आपे मेलै आपे कर वेखै, बिन सतगुर बूझ ना पाई। एक शब्द विचार सदा जन जागे, एक माया मोहे सोए रहे अपागे, आपे करे कराए आपे, होर करना किछु ना जाई। है काल मार गुर शब्द निवारे, हर का नाम रखै उर तारे, सतगुर सेवा ते सुख पाया, हर कै नाम समाई। है दूजे पाए फिरै देवानी, माया मोहे दुख माहे समानी, बहुते पेख करै नह पाए, बिन सतगुर सुख ना पाई। है किसनो कहिए जा आप कराए, जित पावै तित राहे चलाए, आपे मेहरवान सुखदाता, जो

बिनस तहत न लागे बारा कंचन काया गुरमुख बूझे जिस अंतर नाम नवासी है सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम भोजन सच आधारा सदा त्रिपत पवित्र है पावन जित घट हर नाम नवासी है हों तिन बलिहारी जो साच लागे हर गुण गावे अन दिन जागे साचा सूख सदा तिन अंतर रसना।

सब सच दिखाया सच्चै नाम निवासी हे ब्रह्म ब्रह्म जोनी फिर आया आप भूला जा खसम भुलाया हर जियो मिलै ता गुरमुख बूजै चीनै शब्द अबनासी हे काम क्रोध भरे हम अपराधी क्या मुँह लै बोल है ना हम गुण ना सेवा सादी डुबदे पा

ਤੀਜੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਐ ਸੋ ਪਤ ਪਾਏ ਇਕਤ ਨਾਮ ਨਵਾਸੀ ਅੰਤਰ ਹਰ ਧਨ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਈ।

माया सूते अपना घर ना संभाल है अंत बगूते पर निंदा करह बहु चिंता जल दुखे दुख नवासी आपे करत कार कराई आपे गुरमुख दे बुझाई नानक नाम रते मन निर्मल।

एहो मन पीजै ही। माया लहर शब्द निवारी, एहो मन निर्मल हो मैं मारी। सहजे गुण गावे रंग राता।

सुख पाया ना ही साक्याय अमृत पी जाए तिल बिख दुख निवारण हारा गुरमुख सेवया शब्द विचारा सब किसे आपे आप वरतै गुरमुख तन मन पी जाए माया अग्न जलै संसारी गुरमुख निवारै शब्द विचारी अंतर शांत सदा सुख पाया गुरमति नाम ली जाए इंद्र इंद्रासन बैठे जम का पहु पाव है जम ना छोड़ै बहु कर्म कमाव है सतगुर भेटै ता मुक्त पाई हर हर रसना पी जाए मन मुख अंतर भगत ना होई गुरमुख भगत।

विष्ण महेश विचारी त्रै गुण बधक मुक्त निरारी गुरमुख ज्ञान एको है जाता अन दिन नाम रवीजहि वेद पढ़ै हर नाम ना बूझहि माया कारण पढ़ पढ़ लूझहि अंतर मैल अज्ञानी अंधा क्यों कर दुत्तर त्रीजहि वेद बाद सब आख बखाण है ना अंतर पीजै ना शब्द पछाण है पुन पाप सब वेद दृढ़ाया गुरमुख अमृत पीजै ही आपे साचा एको सोई तिस बिन दूजा अवर ना कोई नानक नाम रते मन साचा सचो सच रवीजै ही मारू महला तीजा सच्चा सच्चा तख्त रचाया निज कर वस्या तिथै मोह न माया सद ही साच वस्या घट

सच कमावे साची करनी सारी हे कार कमाई जो मेरे प्रभ भाई हम मैं तृष्णा शब्द बुझाई गुरमत सद ही अंतर शीतल हम मैं मार निवारी हे सच लगे तिन सब किछ पावे सच्चे शब्द सच सुहावे एथे साचे ते दर साचे नदरी नदर सवारी हे बिन साचे जो दूजे लाया माया मोह दुख सबाया बिन गुर दुख सुख जापे नाही माया मोह दुख भारी हे साचा शब्द जिन्ना मन पाया पूरब लिखिया तिनी कमाया सचो सेव है सच त्याव है सच रते विचारी है गुर की सेवा मीठी लागी अन दिन सूख सहज समाधि हर हर करत्या मन निर्मल होआ।

जन उबरे होर माया मोह खुआरी। गुरमुख साचा शब्द पछाता ना तिस कटंब ना तिस माता। एको एक रव्या सब अंतर सबना जिया काया धारी। हम मैं मेरा दूजा पाया किसना चल तुर खसम लिख पाया।

जीवन जिन अपनायाप पछाता ही जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाई सिर सिर तंदे आपे लाई जिस पावे

लह तोल ज्यों भावै त्यों राखह रहना गुरमुख एको जाता ही जात पाणा ता सच्ची कारे लाई अवगण छोड़ गुण माही समाई गुण मह एको निर्मल साचा गुर कै शब्द पछाता ही जह देखा तह एको सोई दूजी दुर्मत शब्द खोई एक समह प्रभ एक समाना अपने रंग सद राता ही काया कमल है कुमलाना मनमुख शब्द ना बुझे एयाना गुर प्रसादी काया खोजे पाए जग जीवन दाता ही कोट गही के पाप निवारे सदा हर जीओ राखे उर तारी।

कोई। गुरमुख ज्ञान सदा सहलाही, जुग जुगे को जाता ही। मनमुख कार करे सब दुख सबाई, अंतर शब्द नाही क्यों दर जाई। गुरमुख शब्द वसै मन साचा,

रत्न अमोलक अग में अपारा, कीमत कवन करे विचारा, गुर कै शब्दे तोल तलाई, अंतर शब्द पछाताई, सिमरत शास्त्र बहुत बिस्थारा, माया मोह पसरिया पासारा, मूर्ख पढ़े शब्द ना बूझे, गुरमुख विरले जाता ही, आपे करता करे कराई, सच्ची वाणी सच दृढ़ाई, नानक नाम मिले वड्याई, जुग जुग एको जाता ही, मारू महला तीजा, सो सच सेवे हो सिरजनहारा, शब्दे दुख निवारण हारा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, आपे अगम अथाहाई, आपे सच्चा सच वरताई।

मलाई सच्ची भगती आपे लाई साची बाणी सदा गुण गावे इस जन्म में काला हाही गुरमुख वणज करह पर आप पछाण है एक सबिन को अवर ना जान है सच्चा साहु सच्चे वणजारी पूंजी नाम वसाही आपे साजे सिष्ट अपाई बिरले को गुर शब्द बुझाई सतगुर सेव है से जन साची काते जम का पाही पन्ने कड़े सवारे साजी माया मोहे दूजे जंत पाजी मन मुख फिर है सदा अंध कमाव है जम का जेवड़ा गल पाही आपे बख्शे गुर सेवा लाई।

सच्चा सच्ची नाई, गुरमुख देवै मन वसाई, जिन मन वसया से जन सो है, तिन सिर चूका काहाई, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, गुर प्रसादी मन वसाई, सदा शब्द सलाही गुणदाता, लेखा कोई न मंगै ताहाई, ब्रह्मा विष्णु रुद्र तिसकी सेवा, अंत न पावह अलाखे अपेवा, जिनको नदर करह तू अपनी, गुरमुख

अपारा मनमुख हुक्म न जाने सारा हुक्मे मन्ने हुक्मे वड़ियाई हुक्मे वे परवाहाई गुर प्रसादी हुक्म पछाण तावत राखै इकत कर आण नामे राता सदा बैरागी नाम रतन मन ताहाई सब जग मह वरतै इको सोई गुर प्रसादी प्रगट होई शब्द सलाह है से जन निर्मल निज करवासा ताहाई सदा भगत तेरी सरनाई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई ज्यों तुद भाव है त्यों त्यों राख है गुरमुख नाम त्याहाई सदा सदा तेरे गुण गावा सच्चे साहिब तेरे मन पावा नानक साच कह बेनंती सच देव हो सच समाहाई मारू महला तीजा सतगुर सेवन से वडभागी अन दिन साच नाम लिवलागी सदा सुखदाता रव्या काटे अंतर शब्द सच्चै ओ माहाई नदर करे ता गुरु मलाई हर का नाम मन वसाई हर मन वसिया सदा सुखदाता शब्दे मन ओ माहाई कृपा करे ता मेल मलाई हौ मैं ममता शब्द जलाई सदा मुकत रह इक रंगी नाही किसे नाल काहाई बिन सतगुर सेवे कोर अंधारा बिन शब्द कोई ना पावे पारा जो शब्द राते महा बैरागी सो सच शब्दे लाहाई दुख सुख करतै तुर लिख पाया दूजा भाव आप वरताया गुरमुख होवै सो अलिप तो वरतै मनमुख का क्या विसाहाई से मनमुख जो शब्द ना पछाण है गुर के पै की सार ना जान है पै बिन क्यों निरभउ सच पाई है

गुरु पूरा शब्द सुनाई, अन दिन भगत करहो लिवलाई। हर गुण गावे है सद ही निर्मल, निर्मल गुण पातशाही। गुण का दाता सच्चा सोई, गुरमुख विरला बूझे कोई। नानक जन नाम

पूरै सतगुर बूझ बुझाया, हुक्मे ही सब जगते पाया, हुक्म मन्ने सोई सुख पाए, हुक्म सिर चाह पात चाहाई, सच्चा सतगुर शब्द अपारा।

आई, कूट मदे किसे बुझाई, गुर कै शब्द रत्ती रंग लाई, हर सलाह है सदा सुखदाता, हर बख्शे भगत सलाहाई, सतगुर सेव है से जन साची, जो मर जम है काचन काची, अगम अगोचर वे परवाह, भगत वच्छल आथाहाई, सतगुर पूरा साच दृढ़ाई, सच्चे शब्द सदा गुण गाई, गुणदाता वरतै सब अंतर सिर।

मन हर रविया काट अंतर, मन पीनै भगत सलाहाए। मेरा प्रभ साचा असुर संघारण, गुर कै शब्द भगत निस्तारण। मेरा प्रभ साचा सद ही साचा, सिर शाह पातशाहाए। से भगत सच्चे तेरे मन पाए, दर कीर्तन करह गुर शब्द सुहाए।

शब्द निवारै, सतगुर सेव सदा सुख पाई, सील संतोख सब ताहाई, हम मैं मोह उपजै संसारा, सब जग बिन सै नाम वसारा, बिन सतगुर सेवे नाम ना पाई, नाम सच्चा जग लाहाई, सच्चा अमर शब्द सुहाया, पंच शब्द मिलवा जावाया, सदा कार्य सच नाम सुहेला, बिन शब्द है कार्य के हाही, खिन मह हसै खिन मह रोवै।

पिंड वधाई भीख करे गुर शब्द ना कमाई अंतर रोग महा दुख पारी बिस्ता माहि समाहाई वेद पढ़े पढ़ बाद बखान है काट मह ब्रह्म तिस शब्द ना पछाण है गुरमुख होवे सो तत् बलोवे रसना हर रस ताहाई तर वत छोड़े है बाहर तावे है मन मुखे अंधे साधना पावे है अन रस राती रसना फीकी बोले हर रस मूल ना ताहाई मन मुख देही परम पतारू दुर्मत मरे।

ए बैरागी निज करवा सा पाएंदा गुर की साखी अमृत पाखी सच्चा शब्दे सच सुपाखी सदा सच रंग राता मन मेरा सच्चे सच सुमाएंदा गुरमुख मन निर्मल सत सर नावे मैल न लागे सच सुमावे सचो सच कमावे सद ही सच्ची भगत दिरड़ाएंदा गुरमुख सच बैणी गुरमुख सच नैणी गुरमुख सच कमावे करनी सद ही सच कह दिन राती अवरा सच कहाएंदा गुरमुख सच्ची उत्तम बाणी गुरमुख सचो सच वखाणी सच्च।

करता आपे मन वसाईंदा निर्मल भगत है निराली मन तन धोवे है शब्द विचारी अन दिन सदा रह रंगराता कर कृपा भगत कराईंदा इस मन मंदिर मह मनुआ तावे सुख पलर त्याग महा दुख पावे बिन सतगुर भेटे ठौर ना पावे आपे खेल कराईंदा आप अपरंपरे

आदि जगाद दया पत दाता पूरे गुर कै शब्द पछाता तुदनो सेवह से तुझह संभावह तू आपे मेल मलाएंदा अगम अगोचर कीमत नहीं पा।

अंतर परम गया पहु पागा सदा आनंद सच्चे गुण गावे सच बाणी बोलाएंदा जिन तू जाता कर्म विधाता पूरा भाग गुर शब्द पछाता जात पात सच सच्चा सच सोई हम मैं मार मलाएंदा मन कठोर दूजे पाए लागा परमे भूला फिरे अभागा कर्म होवे ता सतगुर सेवे सहजे ही सुख पाएंदा लख चौरासी आप उपाई मानस जन्म गुर भगत दृढ़ाई बिन भगती बिस्तर।

करता, ज्यो भावे तिवे चलाईंदा। सिमरत सास्ते अंत न जाने, मूर्ख अंधा तत न पछाणे। आपे करे कराए करता, आपे परम पलाईंदा।

पाई सब खेल तमाशा तेरी वड्याई आपे वेक करे सब साचा आपे पन कढ़ाएंदा बाजी गर इक बाजी पाई पूरे गुर ते नदरी आई सदा अलिपत रह गुर शब्दी साचे सिंह चित लाएंदा बाजे बाजे धुन अकारा आप बजाए बजावन हारा कट कट पौन वह इक रंगी मिल पवन सब बजाएंदा करता करे सो निश्चौ होवे गुर कै शब्दे हो मैं खोवे गुर प्रसादी किसे दे वड्याई नामो नाम त्याएंदा।

ना सेवह क्यों सुख पाइय बिन नावह दुख पाइंदा आप करे न आप कराई गुर प्रसादी किसे बुझाई

गुर कै पाणे चलै दिन राती नाम चेत सुख पाएंदा आप सिरंदा सच्चा सोई आप अपाए खपाए सोई गुरमुख होवै सो सदा सलाही।

सतगुर सेवे सहज अनंदा फिर आए बुठा गोविंदा सहजे भगत करे दिन राती आपे भगत कराएंदा सतगुर ते विछड़े तिन्नी दुख पाया अन दिन मारिए दुख सबाया मत्ते काले महल ना पावे दुख ही विच दुख पाएंदा सतगुर सेव है सेवद भागी सहज पाए सच्ची लिव लागी सचो सच कमावे सद ही सच्चै मेल मलाएंदा जिसनो सच्चा दे सो पाए अंतर साच भरम चुकाए सच सच्चै का

पाई, सच्चे सच मलाईंदा, नाम विसार मन तन दुख पाया, माया मोह सब रोग कमाया, बिन नावे मन तन है कुष्टि, नरके वासा पाईंदा, नाम रते तिन निर्मल देहा, निर्मल हंसा सदा सुख नेहा, नाम सलाहे सदा सुख पाया, निज कर

वा पारा निश्चलवा सा पाईला अंतर कार बंके थान सुहाया गुरमुख विरलै किने थान पाया इत साथ निभ है सलाही सच्ची हर सच्चा।

अनदिन हर सेवे ओ सच्ची बाणी हर जियो शब्द मलाएंदा हर चेत है तिन बलिहार जाऊं गुर कै शब्द तिन मेल मलाऊ तिनकी धूर लाई मुख मस्तक सत संगत बह गुण गाएंदा हर के गुण गावां जे हर प्रभ पावां अंतर हर नाम शब्द सुहावा गुरबाणी चहो कुंडी सुनिए साचे नाम समाएंदा सो जन साचा जे अंतर पाले गुर कै शब्द हर नदर निहाले ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी नदनी नदर मलाएंदा वड्डे भाग इहो शरीर पाया मानस जन्म शब्द चित लाया बिन शब्द है सब अंध अंधेरा गुरमुख किसै बुझाएंदा एक कित आए जन्म गवाए मनमुख लागे दूजे पाए एह वेला फिर हाथ ना आवे पग खिस

गणत गुर शब्द निवारी हर जियो हृदय रखो उरतारी गुर कै शब्द सदा सलाई मिल साचे सुख पाईंदा सो चेते जिस आप चिताई गुर कै शब्द वसै मन आई आपे वेखै आपे बूजै आपै आप समाईंदा जिन मन विच वत्त।

दूजै पाए परम पलाया, हर ना चेतै सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएंदा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर सच्चै जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएंदा, बिन भागा गुर सेविया न जाए, मन मुख भूले मोए बिल लाए, जिन को नदर होवै।

वस्त संभाले, हर का नाम त्याए दिन राती, उत्तम पदवी पाएंदा, आपे सच्चा है सुखदाता, पूरे गुर कै शब्द पछाता, नानक नाम सलाहे साचा, पूरे भाग को पाएंदा, मारू महला तीजा।

त्रै गुण परसूत जमाया, चारी वेद ब्रह्मे नु फरमाया, वरे महावार तिथि कर, इस जग मह सोजी पाएंदा, गुर सेवा ते करनी सार, राम नाम राखो उरतार, गुरबाणी वर्ती जागे अंतर, इस बाणी ते हर नाम पाएंदा, वेद पढ़े अनदिन वाद समाली, नाम ना चेतै बद्दा जम काली, दूजे पाए सदा दुख पाए, त्रै गुण परम पलाईंदा, गुरमुख एक कस स्यों लिवलाए, त्रिविध मनसा

नींदा। मनमुख बहुत करे अभमान, दरगाह कब ही ना पावे मान। दूजे लागे जन्म गवाया, बिन बूझे दुख पाएंदा। मेरे प्रभ अंदर आप नकाया, गुर प्रसादी हर मिले मलाया।

गुरमुख वणज सदा सुख पाई, सहजी सहज मलाएंदा, सच्चा महल सच्चे पंडारा, आपे देवे देवनहारा, गुरमुख सा लाहे सुखदाती, मन मेले कीमत पाएंदा, काया विच वसत कीमत नहीं पाई, गुरमुख आपे दे वड्याई, जिसदा हट सोई वत जाने, गुरमुख दे ना पछोताएंदा, हर जियो सब मैं रहे आसमाई, गुर प्रसादी पाया जाई, आपे मेल मलाए आपे।

रसना हर रस पाया, शब्द मरह से मरन सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल हर चरणी लागी।

कर्म त्याया जात सत संजम जे सच कमावे एह मन निर्मल जे हर गुण गावे इस भिख में अमृत प्राप्त होवे हर जीओ मेरे पाया जिसनो बजाए सोई बूझे हर गुण गावे अंदर सूझे हम मैं मेरा ठाक रहाई सहजे ही सच पाया बिन कर्मा होर फिरे कनेरी मर मर जम्मे चुके ना फेरी बिख का राता बिख कमावे सुख ना कबू पाया बहुते भेख करे भेख तारी बिन शब्द हूं मैं किने ना मारी जीवत मरे ता मुक्त पाई सच्चा ना ए समाया अज्ञान तृष्णा इस तनह जलाई तिस दी बूझे जे गुर शब्द कमाई।

हे गुरु पूरा अंतर अज्ञान शब्द बजाए सतगुर ते सुख पाया मन मुखे अंधा अंध कमाई बहु संकट जोनी परमाई जम का जेवड़ा कदे ना काटे अंते बहु दुख पाया आवन जाना शब्द निवारे सच नाम रखे उरतारी गुर कै शब्द मरे मन मारी हो मैं जाहि समाया आवन जाने परज विगोई बिन सतगुर थिर कोई ना होई अंतर जोत शब्द सुख वसिया।

मुक्त होवे। पंच दूत वस आया, बाज गुरु है मोह गुबारा, फिर डुबे वारू वारा। सतगुर भेटे सच दृढ़ाई, सच नाम मन पाया, साचा दर साचा दरबारा, सच्चे सेवह शब्द प्यारा, सच्ची धुन सच्चे गुण गावा, सच्चे माही समाया, घर अंदर को घर पाई, गुर कै शब्द सहज सुपाई, उथे सोग वजोग न व्यापे, सहजे सहज समाया, दूजे पाए दुष्टा का वासा, पौंदे फिर बहु मोह प्यासा, कुसंगत बह सदा दुख पाव है, दुखो दुख कमाया, सतगुर बाजो संगत ना हुई, बिन

राम रतन धन पाया सतगुर की सेवा पाई बिन सतगुर जो दूजे लागे आवह जाहे भ्रम मरह अभागी नानक तिनकी फिर गत हुए।

आई अमृत रास सतगुरु चवाया दसवें द्वार प्रगट होए आया तह अनहद शब्द बजह धुन बाणी सहज सहज समाई है जिनको करतै तुर लिख पाई अन दिन गुर गुर करत विहाई बिन सतगुर को सीजै नाही गुर चरणी चित लाई है जिस भावै

रखन मन परगट भया नाम पदार्थ सहजे लया एह वडे आई गुरते पाई सतगुर कहो सद बल जाई हे प्रगटया सूर निस मिटया अंधियारा अज्ञान मिटया गुर रतन अपारा सतगुर ज्ञान रतन अत भारी।

सोवे गुरमुख नाम समाए समावे नानक नाम त्याई है भगता मुख अमृत है बाणी गुरमुख हर नाम आखव काणी हर हर करत सदा मन बिगसै हर चरणी मन लाई है हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किस नाही सतगुर ते समझ पड़ी मन माही हो दयाल कृपा कर हर जीव सतगुर की सेवा लाई है जिन सतगुर जाता तिनेक पछाता सर्वे राव रहया सुख दाता आत्म चीन परम पद पाया सेवा सुरत समाई है जिनको आद मिली वड्याई सतगुर मन वस्या निभलाई आप मिलिया जग जीवन दाता नानक अंक समाई है। मारू महला चौथा हर अगम अगोचर सदा अबनासी सर्वे रव रहया कटवासी तिस बिन अवर ना कोई दाता हर तिस

समाही सूके ते फुल हरिया कीतन हर त्यावो हो चोज वडाणी हे जो जिया की वेदन जाने तिस साहिब कै हो कुर्बान तिस आगे जन कर बेनंती जो सर्व सुखा का दानी हे जो जिया की सार ना जाने किस स्यों किस ना कहिए अजाने मूर्ख स्यों नह लूज पराणी हर जपिए पद निर्वाणी हे ना कर चिंत चिंता है करते हर देवे जल थल जनता सब तै अचिंत दान दे प्रभ मेरा विच पाथर कीट पखानी हे ना कर आस मीत सुत पाई ना कर आस किसे सा व्यवहार की पराई बिन हर नावे को बेली नाही हर जपिए सारंग पानी हे अन दिन नाम जप हो बनवारी

तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। जो शरण परै तिसकी पत राखै, जाए पूछो वेद पुराणी हे। जिस हर सेवा लाए सोई जन लागै, गुर कै शब्द परम भउ भागै। विचे ग्रह सदा रह उदासी, ज्यों कमल रह।

तुझै तह करते हरियन देन नाम बखानी है। किस ही जोर अहंकार बोलन का किस ही जोर देवान माया का मैं हर बिन टेक तारे अवन ना काई तू करते राख मैं निमाणी है। निमाणे मान करह तुद पावे होर केती चक चक आवे जावे।

चिंता गणत मटाई है, हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग धन ताहा, ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना, दूत मारे कर ताई है, हर का जाप जपो जप जपने, जीत आव हो वस हो घर अपने, लख चौरासी नरक ना देखो, रसक रसक गुण गाई है, खंड ब्रह्मांड उधार नहारा, ऊच अथाह अगम अपारा, जिसनो कृपा करे प्रभे अपनी, सो जन तिसह त्याई है, बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर कृपा कीने कर बोले, अनहद रुण चुन कार सहज धुन, साकी कार कमाई है, मन प्रतीत बनी प्रभ तेरी, बिनस गई हूं मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग मह सोभ सुहाई है, जय जयकार जपो जगदीसै, बल बल जाई प्रभ अपने ईसै, किस बिन दूजा अवर न दिसै, एका जगत सबाई है, सत सत सत प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन राता, सिमर सिमर जीवह जन तेरे, एक अंकार समाई है, भगत जना का प्रीतम प्यारा, सब उदाहरण खसम हमारा, सिमर नाम पुन्नी सब इच्छा, जन नानक पैज रखाई है, मारू सोले महला पंजवा।

ऐसा वणिज करहु ग्रह पीतर जित उतरे भूख प्यासा ही सगले कर्म धर्म जुग साधा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पई कृपा नानक सत संगे तौ धन फिर आनंद उलासा ही तन अंधी फिर चपल सियाना पंच तत् कारच नरचाना जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासाई धन कह तू वस मैं नाली प्रिय सुखवासी बाल गोपाली तुझे बिना हौ कित ही ना लिख है वचन देह छोड़ ना जासाही फिर कहे आहो हुक्मी बंदा ओ भारू ठाकुर जिस कान ना छंदा जिचर राखै तिचर तुम संग रहना जा सदे ता ऊठ सदा साहे जो प्रिय बचन कहे तन साचे तन कशु ना समझै चंचल काचे बहोर बहोर फिर ही संग मांगे ओह बात जानै कर हासा ही आई आग्या पिरहु बुलाया ना तन पुछी ना मता पकाया ऊठ सदायो छूटर माती देख नानक मिथन मुहासा ही रे मन लोभी सुन मन मेरे सतगुर सेव दिन रात सदेरे बिन सतगुर पचमुए साकत नगुरे गल जम फासा ही मनमुख आवे मनमुख जावे मनमुख फिर चोटा खावे जितने नरक से मनमुख भोगे गुरमुख लेप ना मासा ही गुरमुख सोए जे हर जियो पाया तिस कौन मिटावे जे प्रभ पहराया सदा आनंद करे आनंदी जिस सिर पाओ

ऐसा प्रभ मिलिया सुखदाता, विचरना कत ही जासाही, गुण निधान किस कीम ना पाई, कट कट पूर रहो सब ठाई, नानक सरन दीन दुख भंजन, हौ रेण तेरे जो दासाही, मारू सोलह महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, करे आनंद आनंदी मेरा, कट कट पूरन सिर सिर नबेरा, सिर साहा कै सच्चा साहिब, अवर नाही को दूजा हे, हरकवंत आनंत दयाला, प्रगट रहो प्रभ सर्ब उजाला, रूप करे कर वेख बिगसै, आपे ही आप पूजा हे, आपे कुदरत करे विचारा, आपे ही सच करे पसारा, आपे खेल खलावे दिन राती, आपे सुन सुन पीजाही, साचा तखत सच्ची पातशाही, सच खजीना साचा साही, आपे सच तारियो सब साचा, सच्चे सच वरती जाही, सच

तू है बड राजा, हुक्म सच्ची कह पूरे काजा, अंतर बाहर सब किस जाने, आपे ही आप पति जाहे, तू बड रस

जिस चीते आवह तिस भौ केहा हवर कहा किस की जाहे। तृष्णा बूझी अंतर ठंडा गुरपूरे ले टूटा गंडा। सुरत शब्द हृदय अंतर जागी हमें चोल चोल पी जाए। मरे नाही सद सद ही जीवे अमर भया बनासी थीवे। ना को आवे ना को जावे गुर दूर किया परमी जाए। पूरे गुर की पूरी बाणी पूरे लागा पूरे माहे समाणी। चढ़े सवाया नित नित रंगा कटे नाही तोली जाहे। बारह कंचन शुद्ध कराया नदर सराफ बन्नी सचड़ाया। परख खजाना पाया सराफी।

महा सुख पाया देख दर्शन एहो मन पी जाहे मारू महला पंजवा सोले एक ओंकार

सिमरत घट कर्मा गुर पवित्र अस्थान नाही। गुर सिमरत सब किल विख नास है, गुर सिमरत जम संग ना फास है। गुर सिमरत मन निर्मल होवै, गुर काटे अपमान नाही। गुर का सेवक नरक ना जाई, गुर का सेवक पार ब्रह्म त्याई। गुर का सेवक साध संग पाई, गुर करता नित जी दाना है। गुरुद्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर भेट हर जस मुख भणिए। कल कलेश मटाए सतगुर, हर दरगाह देवै माना है। अगम अगोचर गुरु दिखाया, भूला मार्ग सतगुर पाया। गुर सेवक को बिघन ना भगती, हर पूर दरड़ाया ज्ञाना है। गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहया गोसाई। ऊंच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहज ध्याना है। गुर मिले सब तृष्ण बुझाई, गुर मिले नह जो है माई। सत संतोख दिया गुर पूरे, नाम अमृत पी पाना है। गुर की बाणी सब माहे समाणी, आप सुनी ते आप बखानी। जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे, तिन पाया निचल थाना है। सतगुर की महिमा सतगुर जाने, जो किस करे सो आपन पाने। साधु तूर जाचे हैं जान तेरे, नानक सद कुर्बाना है। मारू सोले महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आद निरंजन प्रव निरंकारा, सब मह वरतै आप नरारा। वर्ण जात चिन्ह नहीं कोई, सब हुक्मे सृत उपाएंदा। लख चौरासी जोन सबाई, मानस को प्रभ दी वड़ियाई। इस पौड़ी ते जो

दार्थ लहिए, जिसे आप भुलाए सोई भूले, सो बूझे जिसे बुझाएंदा, हर कसोग का नगर एहो किया, से उभरे जो सतगुर सरणिया, त्रिहा गुणा ते रह निरारा, सो गुरमुख सो बापाएंदा, अनक कर्म किए बहुत।

है स्वामी तुम मना। मारू महला पंजवा प्रभ समरथ सर्व सुख दाना, सिमरो नाम हो मेरवाना। हर दाता जी जंत पेखारी, जन बांच जा चंगना। मांगो जन तूर परम गत पावो, जन्म जन्म की मैल मिटावो। दीर्घ रोग मिट है हर औखद,

परम पद पावो जिस प्राप्त सो पावेगा, जिनको कृपा करी सुख दाती, तिन साधु चरण लै हृदय पराती, सगल नाम निधान तिन पाया, अनहद शब्द मन वाजंगा, कीर्तम नाम कथे तेरे जिहवा, सत नाम तेरा परा पूर्वला, कहो नानक भगत पये सरनाई, देहो दर्श मन रंग लगा, तेरी गत मित तू है जान है, तू आपे कथ है तै आप बखान है, नानक दास दासन को करियो, हर भाव है दासा राख संगा, मारू महला पंजवा, अल्लाह अगम खुदाई बंदे, छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे, हुए पै खाक फकीर मुसाफर, एह दरवेश कबूल दरा, सच निवाज यकीन मसल्ला, मनसा बार निवार हुआसा, देह मसीत मन मौलाना, कलम खदाई पाक खरा, सरासरयत लेख मावहु, तरीकत तर्क खोज टलावहु, मारपत मन मारहु अबदाला, मिलहु हकीकत जित फिर न मरा, करान कतेब दिल माहे कमाही, दस औरात रखो बदराही, पंच मर्द सिदकले बंद हो, खैर सबूरी कबूल परा, मक्का मेहर रोजा पै खाका, पिसत पीर लफज कमाए अंदाजा, पूर नूर मुस्क खुदाया, बंदगी अल्लह आला हुजरा, सच कमावे सोई काजी, जो दिल सोदे सोई हाजी, सो मुल्ला मलऊन निवारे, सो दरवेश जिस सिफत तरा, सबे वक्त सबे कर वेला, खालक याद दिले महमौला, तस्बी याद करहु दस मर्दन, सुन्नत सील बंधान बरा, दिल मह जानहु सब फिलहाला, खिलखाना बिरादर हमू जंजाला, मीर मलक उमरे फानाया, एक मकाम खुदाए दरा, अवल सिफत दूजी साबूरी, तीजै हलेमी चौथै खैरी, पंजवै पंजे इकत मकामे, एह पांज वक्त तेरे अपर परा, सगली जान करो मौदीफा, बद अमल छोड़ करो हाथ पूजा, खुदाए एक बुझ देव हो बांगा, बुरगु बर खुरदार खरा, हक हलाल बखोर हो खाना, दिल दरे आओ तो वो मैं लाना, पीर पछाण पिस्ती सोई, अजराइल ना दोज ठरा, काया किरदार औरत यकीना, रंग तमाशे मान हकीना, नपाक पाक कर हदूर हदीसा, साबत सूरत दस्तार सिरा, मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर की मल दिल ते धोवे, दुनिया रंग ना आवे नेड़े, ज्यो कुसम पाट घ्यो पाक हरा, जा को मेहर मेहर मेहरवाना, सोई मर्द मर्द मर्दाना, सोई सेख मसाए कहाजी, सो बंदा जिस नजर नरा, कुदरत कादर करन करीमा, सिफत महबत अथाह रहीमा, हक हुकम सच खुदाया, बुझ नानक बंद खलास तरा, मारू महला पंजवा, पार ब्रह्म सब ऊच बराजी, आपे थापे थापे साजे, प्रब की शरण गहत सुख पाई है, किस भौ न व्यापै बालका, गर्भ अगन मह जिन्ह उभारिया, रक्त किरम मह नहीं संघारिया, अपना सिमरन दे प्रतपालिया, ओहो सगल कटा का मालका, चरण कमल सरन आई आया, साध संग है हर जस गाया, जन्म मरण सब दुख नवारे, जप हर हर भौ नहीं काल का, समर्थ अकथ अगोचर देवा, जी जंत सब तां की सेवा, अंडज जेरज सेतज उत्पुज, बहु परकारी पालका, किसह प्राप्त।

आदि अंत मद प्रभ सोई, आपे करता करे सो होई। ब्रह्म पो मिटिया साध संगते, दालत ना कोई काल का। उत्तम बाणी गाओ गोपाला, साध संगत की मंगो होर वाला। बासन मेट न बासन होई है, कल मल सगले जाल का। संतां की एह रीत नराली, पार ब्रह्म कर देख नाली। सास सास आराधन हर हर, क्यों सिमरत की जयाल का। जह देखा तह अंतर जामी, निमख न विसरहो प्रभ मेरे स्वामी। सिमर सिमर जीव है तेरे दासा, बन जाल पूर्ण थाल का। तत्ती वाओ ना ताको लागे, सिमरत नाम अन दिन जागे। आनंद बनोद करे हर सिमरन, तिस माया संग ना ताल का। रोग सोग दुख तिस नाही, साध संग हर कीर्तन गाही। अपना नाम देहे प्रभ प्रीतम, सुन बेनंती खाल का। नाम रतन तेरा है प्यारी, रंग रते तेरा।

जिन विसरह नाही काहू बेरा, तिनकै संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दरड़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार जाए, किस जन को उपदेश निर्माल का, तुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हों बलिहारी सतगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रभ बिसरै नाही, आठ पहर हर हर को त्याई, नानक संत तेरै रंग राती, तू समरथ वडाल का, मारू महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, चरण कमल हृदय नित तारी, गुरपूरा खिन खिन नमचकारी, तन मन अर्प धरी सब आगे, जग मह नाम सुहावना, सो ठाकर क्यों मनो वसारी, जियो पिंड दे साज सवारी, सास ग्रास संभाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पहर हर रख मन माही, साध संग पाजे चुत स्वामी, दरगाह सोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निद।

पदार्थ जीत पराणी, काम क्रोध निंदा पर हरिय, हर रसना नानक गावना, जिस रूप ना रेखिया कुन नहीं जाती, पूर्ण पूर रहे दिन राती, जो जो जपै सोई बड़ भागी, बहुड़ना जोनी पावना, जिसनो बिसरै पुरख बधाता, जलता फिरै रह नित ताता, किरत कणै को रखै ना कोई, नरक कोर मह पावना, जियो प्राण तन धन जिन साजिया, मात गर्भ मह राख निवाजिया।

कह नेरे हाथ हमारे कछु है नाही जिस जनाई है किसे जनावना जा कै मस्तक तुर लिख पाया तिस ही पुरख ना व्यापे माया नानक दास सदा सरनाई दूसर लवे ना लावना आगया दुख सुख सब कीने अमृत।

सोई पूर्ण पुरख बधाता बाल सहाय सोई तेरा जो तेरे मन पावना मृत दुख सुख लिख पाए तिल नहीं बदह कटह न कटाए सोई होए जे करते पावे कह कह आप मनावना अंध कूप ते से ही काडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कृपा तार रखे करे अपने मिल साधु गोविंद त्यावना।

गुण सहगु जाय, गुण का गाहक जे मिले तौ गुण लाख बकाई, गुण ते गुण मिल पाई है जे सतगुर माहि समाय, मोल अमोल ना पाई है बन जना लीजै हाथ, नानक पूरा तोल है

एक बांधे एक टीलिया एक सुखिए हर प्रीता नानक सच्चा मन ले सच करनी सच रीत पौड़ी गुरते ज्ञान पाया अत खड़ग करारा दूजा भ्रम गढ़ कटिया मोह लोभ अहंकारा हर का नाम मन वसिया गुर शब्द विचारा सच संजम मत उत्तम हर लगा प्यारा सब सचो सच वर्तदा सच सिरजनहारा सलोक महला तीजा केदारा रागा विच जानिए पाई शब्दे करे प्यार सत संगत सियो मिल दूर है सच्चे तरे प्यार विचों मल कटे अपनी कुला का करे उदार गुणा की रास संग्रह अवगण कड्डे वडार नानक मिलिया सो

सहज बनस्पत फुल फल पवर वसै पह खंड नानक तरवर एक है एको फुल पे रंग पौड़ी जो जन लूजह मने सिउ से सूरे परदाना हर सेती सदा मिल रहे जिन्नी आप पुछाना ज्ञानिया का एहो महत है मन माहे समाना हर जियो का महल पाया सच लाए त्याना जिन गुर प्रसादी मन जीतया जग तिनह जिताना सलोक महला तीजा जोगी होवा जग पवा कर कर भीख्या लेओ दरगाह लेखा मंगी है किस किस उत्तर देओ भिख्या नाम संतोख मड़ी सदा सच है नाल भेखी हाथ ना लदिया सब बद्दी जमकाल नानक गल्ला झूठिया सच्चा नाम समाल महला तीजा जित दर लेखा मंगी है सो दर सेवे हो ना कोई ऐसा सतगुर लोड़ लहो जिस जे वड़े अवर ना कोय किस सरनाई छूती है लेखा मंगे ना कोई सच दृढ़ाए सच दृढ़ सच्चा ओह शब्द दे हृदय जिस दै सच है तन मन भी सच्चा होय नानक सच्चा हुक्म मन्ने है सच्ची वड्याई दे सच्चे माहे समावसी जिसनो नदर करे पौड़ी सूरे एह ना आखी है अहंकार मर है दुख पाव है अंधे आप ना पछाणनी दूजे पच जावे है हत क्रोध स्यों लूज दे।

अमृत कारा से आया मन वसया नाहू। सलोक महला पहला हौ मैं करी ता तू नाही, तू हो है हौ नाही। बूझो ज्ञानी बूझना ए अकथ कथा मन माहे। बिन गुर तत न पाईए अलख वसै सब माहे। सतगुर मिलै ता जानिए जां शब्द वसै मन माहे। आप गया भ्रम पहु गया जन्म मरण दुख जाहे। गुरमत अलख लखाईए उत्तम मत तराहे। नानक सोहं हंसा जप जप हो त्रे भवन तिसै समाहे। महला तीजा मन माणक जिन परखिया गुर शब्दी विचार। से जन विरले जानिए है कल युग विच संसार। आपै नो आप मिल रहिया हौ मैं दुबदा मार। नानक नाम रते दुत्तर तरे भौजन बिकम संसार पौड़ी। मनमुखे अंदर ना भालनी मुठे अहमते चारे कुंडा भव थके। अंदर तिख तत्ते सिमरत सास्त ना सोधनी मनमुख वे गुत्ते। बिन गुर किनै ना पायो हर नाम हर सत्ते। तत् ज्ञान विचारिया हर जप हर गते। सलोक महला दूजा आपे जाने करे आप आपे आने रास। किसै अगे नानका खले की कै अरदास। महला पहला जिन किया तिन देखिया आपे जाने सोए। किसनो कहिए नानका जा घर वरतै सब कोए। पौड़ी सबे थोक वसार इको मित कर। मन तन होए निहाल पापा दह हर। आवन जाना चुकै जन्म ना जाहे मर। सच नाम आधार सोग ना मोहे जर। नानक नाम निदान मन मह सांझ धर। सलोक महला पंजवां माया मनो ना विसरै मांगै दम्मा दम। सो प्रभ चेतना आवई नानक नहीं करम। महला पंजवां माया साथ ना चलै क्या लपटावह अंध। गुर के चरण त्याए तू टूटह माया बंद। पौड़ी भाणै हुक्म मनायुन भाणै सुख पाया। भाणै सतगुर मेलियुन भाणै सच त्याया। भाणे जेवड़ होर दात नाही सच आख सुनाया। जिनको पूर्व लिखिया तिन सच कमाया। नानक तिस शरणागती जिन जगते उपाया। सलोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं भै की नाही बिंद। नानक मुया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद। महला तीजा मन की पत्री वाचनी सुखी हूं सुख सार। सो ब्राह्मण भला आखिए जे बूझ ब्रह्म विचार। हर सलाहे हर पढ़े गुर कै शब्द विचार। आया ओ परवान है जे कुल का करे उधार। अगे जात ना पुछिए करनी शब्द है सार। होर कूड़ पढ़ना कूड़ कमावना विख्या नाल प्यार। अंदर सुख ना होवे मन मुख जन्म खुआर। नानक नाम रते से उबरे गुर कै हेत अपार। पौड़ी आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा। जो हुक्म ना बूझै खसम का सोई नर कच्चा। जित पावै तित लाएंदा गुरमुख हर सच्चा। सबना का साहिब एक है गुर शब्दी रचा। गुरमुख सदा सलाही है सब तिस दे जच्चा। ज्यो नानक आप नचाएंदा ते वही को नचा शुद्ध। मारू वार महला पंजवां दखणे महला पंजवां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू चौ सज्जन मैंडिया देई से उतार। नैण मिंजे तरस दे